मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 जून सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 36 सेकंड हुए हैं। अब आरंभ हो रही है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह की सुनहरी किरणों के साथ हम लेकर आए हैं एक नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारा मनोरंजन। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। नमस्ते लखनऊ की इस खुशनुमा सुबह में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। श्रोताओं सुबह का ये समय केवल एक नए दिन की शुरुआत नहीं होता, बल्कि ये अपने सपनों को फिर से जगाने और उन्हें जीवन में नई उमंग भरने का संदेश भी देता है। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं ताजगी और हर जरूरी जानकारी के साथ। सुबह के 6 बजने को है और अब समय है रुख करने का देश और दुनिया की खबरों की ओर। समाचारों के लिए आइए आपको लिए चलते हैं अपने दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में

0: हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए, जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि चर्चा। श्रोताओं, अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसान

0: भाइयों को कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर रोज देते हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ हो सके। इसी क्रम में आज सुनिए ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। इस विषय पर डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में धान उत्पादन करना चाहते हैं तो कई नई तकनीक आ गई है और उन्हीं में ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई भी है। ये ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विज्ञान केंद्र सेकेंड कटिया सीतापुर से वैज्ञानिक सचिन प्रताप तोमर साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। तोमर साहब, ये बताएं कि ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई तकनीक के बारे में किसान भाइयों बहनों से क्या कहना चाहेंगे?
2: नमस्कार किसान भाइयों, सभी अन्नदाताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आज का जो हमारा विषय है ड्रम सीडर द्वारा धान की सीधी बुआई। ड्रम सीडर क्या है? ड्रम सीडर एक छोटा सा यंत्र है जो मानव चलित यंत्र होता है। उसमें 3 से 4 तक ड्रम लग रहते हैं, जैसे डमरू के आकार के बॉक्स बने होते हैं। उसमें हमारे किसान भाई सीधा डायरेक्ट बुवाई करके बीज भर के सीधा बुवाई कर सकते हैं। जिन किसान भाई जो नर्सरी में थोड़ा लेट हो जाते हैं, और उनके लिए ड्रम सीडर बहुत अच्छी विधि है।
1: इसका बुवाई का सबसे उपयुक्त समय क्या है?
2: यदि हम ड्रम सीडर की बुवाई के समय की बात करें, जैसे अभी मानसून में हमारी थोड़ा देरी भी है, मानसून से 10 से 15 दिन पहले तक हम इसकी बुवाई डायरेक्ट ड्रम सीडर द्वारा कर सकते हैं। और जो हमारा सही समय चल रहा है जून के लास्ट में, इस समय हम ड्रम सीडर द्वारा धान की सीधी बुवाई कर सकते हैं।
1: तो इसके लिए बीज का चुनाव और उसकी तैयारी भी महत्वपूर्ण है
2: जी। जो किसान भाई जैसे अभी बीज किसानों का चयन अपने क्षेत्र के अनुसार चयन कर सकते हैं। मेन बात इसमें ध्यान रखना होता है डॉक्टर साहब कि जो हमारे किसान भाई हैं, जैसे बीज आपके पास है, पहले बीज को 10 से 12 घंटे तक जैसे सिंचाई शाम को पानी में डाल दिया,
1: हाँ।
2: सुबह उसको पानी से निकालते हैं,
1: यानी भिगोना है।
2: भिगोने हैं, पानी में जो डालते हैं, मतलब इसमें जो जर्मिनेशन जो जमा किसान भाई नर्सरी डालने के बीज तैयार करते हैं, इसमें हल्का सा अंकुरण होना चाहिए खाली,
1: यानी अखुआ निकले।
2: अखुआ निकले और अखुआ निकलने के बाद हमको थोड़ा बुवाई करने से पहले 1 से 2 घंटे पहले उसको थोड़ा छांव में सुखाना रहता है। उसकी में जो नमी होती है थोड़ी सी, वो नमी हमको उसमें खत्म करना है। जब हम ड्रम सीडर में उसको भरते हैं,
1: हाँ हाँ,
2: तो जिससे कि वो ड्रम में जो बॉक्स हमारे ड्रम बने हुए इसमें वो बीज चिपके ना, नमी
1: यानी भरका लेना है
2: जी,
1: छाए में। तो डॉक्टर साहब, बीज की मात्रा जितनी धान की नर्सरी पड़ती उतनी ही या कम अधिक?
2: सर, उससे थोड़ा कम रहता है डॉक्टर साहब। जैसे कि डायरेक्ट किसान जब रोपाई करता है तो उसमें 40 किलो तक बीज डालता है, इसमें 30 से 35 किलो में आपका 1 एकड़ खेत हो जाता है।
1: 25 से 30 किलो में
2: जी, तो इसमें बीज भी किसान 4 से 5 किलो कम कर लेता है। और हाइब्रिड की बात करें तो 6 से 7 किलो बीज में भी किसान भाई कर सकते हैं
1: प्रति एकड़।
2: एकड़ में सर,
1: तो इसमें बारीकी क्या है डॉक्टर साहब?
2: इसमें जो हमारा जो ड्रम सीडर से जब डॉक्टर साहब बुवाई करते हैं हमारे किसान भाई, तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि किसानों के पास समय बचता है सर। समय की बात बचत होगी, पानी की बचत होगी, और जैसे कि हमारे जो खेती में लागत की आज हम बात करते हैं, तो उसमें भी हमारे श्रम जो श्रमिक रोपाई के समय लगते हैं उसमें भी हम अपनी लागत को कम कर सकते।
1: ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई करते समय कुछ खास सावधानियां भी रखनी होगी
2: जी, जी,
1: अंतरण क्या होगा?
2: जो आपकी आइसोलेशन डिस्टेंस जो हमारे धान की दूरी बताई गई है 15-20 सेंटीमीटर, वो ड्रम सीडर में जो ड्रम के डमरू बने हुए हैं उसमें छेद बने हुए हैं बराबर दूरी पे, वो दूरी लाइन से लाइन की दूरी पौधे से दूरी बराबर होती है। सावधानी किसान जो खेत तैयार करता है उसके समय हमको रखना है डॉक्टर।
1: क्या?
2: जैसे खेत जब रोपाई करता है किसान तो खेत में पानी ज्यादा होता है,
1: मतलब कंदेल करता
2: कंदेल
1: है,
2: कंदेल करता है, जो पडलिंग करता है, लेव लगाता
1: करता है
2: जी जी जी, जो रोपाई से पहले करता है। और जब हम ड्रम सीडर से बुवाई किसान हमारे करें तो उसमें सावधानी रखें 2 से 2.5 इंच तक पानी रहे, उससे ज्यादा पानी ना हो।
1: अच्छा,
2: क्योंकि ड्रम सीडर की जो ड्रम है यदि वो पानी के संपर्क में आएंगे तो जब ड्रम में पानी चला जाएगा तो बीज उसका बाहर नहीं आता
1: जी।
2: दूसरा सावधानी इसमें ये रखनी है, जो ड्रम हमारा है उसको 2/3 तक उसमें सीड भरना है
1: बीज,
2: हाँ, क्योंकि पूरा भरेंगे तो बीज बराबर दूरी पर नहीं गिरता। और जब बुवाई करते हैं तो 2 लेबर इसमें होना चाहिए, जो श्रमिक की हम बात करते हैं, एक ड्रम उसको खींचता है मशीन से, दूसरा उसमें देखिए कि कोई छेद ब्लॉक तो नहीं हो गया बीज,
1: उसको भी खोलना है,
2: उसको भी खोलना होगा।
1: तोमर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विज्ञान केंद्र आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें
2: जी। बिल्कुल, मैं मृदा वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में स्थित है, और मेरा जो नंबर है 75-990-59-6506। समय से बुवाई करें, खरपतवार का

0: प्रबंधन बहुत जरूरी है। समय से निकाई गुड़ाई करें और जो उर्वरक का प्रयोग करें उसका सही समय पर करें, सही मात्रा में करें।
1: सचिन प्रताप तोमर साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कृषि चर्चा में अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर सचिन प्रताप तोमर से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता। बातचीत का विषय था ड्रम सीडर से धान की सीधी बुआई। कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। समय है सुविचार का। आज का विषय है राम की महिमा।
3: राम पूर्वतापिन्युपनिषद, यह उपनिषद अथर्ववेदीय परंपरा से संबद्ध है। भगवान राम का तात्विक स्वरूप व्यक्त करने वाली है।

चिन्मये अस्मिन् महाविष्णौ जाते दशरथे हरौ रघोकुले अखिलं राति राजते यो मही स्थितः सराम इति लोकेषु विद्वद्भिः प्रकटीकृतः राक्षसायेन मरणं यान्ति स्वोद्रेकतोऽथवा रामनाम भुवि ख्यातभ रामेण वा पुनः राक्षसान्मर्त्यरूपेण राहुर्मनसिजं यथा प्रभाहीनास्तथां कृत्वा राज्यार्हाणां महीभृतां धर्ममार्गं चरित्रेण ज्ञानमार्गं च नामतः तथा ध्यानेन वैराग्यम् ऐश्वर्यं स्वस्य पूजनात् तथा रात्यस्य रामाख्या भुवि स्यादथ तत्त्वतः रमन्ते योगिनो अनन्ते नित्यानन्दे चिदात्मनिः इति रामपदेनासौ परब्रह्माभिधीयते। महाराज दशरथ के यहाँ सच्चिदानंद महाविष्णु श्रीहरि ने धरती पर अति प्रसिद्ध रघुवंश में जन्म लिया। विद्वानों द्वारा उनका नाम राम रखा गया, जिनके द्वारा राक्षस अपने पाप कृत्यों से मरण को प्राप्त होते हैं वे राम हैं, अथवा अपनी ही उन्नति से इस भूमंडल पर वे राम राम से प्रसिद्ध हुए तथा कुछ ने अभिराम होने से उन्हें राम स्वीकार किया। राहु के द्वारा चंद्रमा को कांतिहीन कर देने के समान ही राक्षसों को मानव रूप द्वारा कांतिहीन करने से वे राम हैं। कुछ के मतानुसार शासन प्राप्ति के पात्र राजाओं को अपने आदर्श चरित्र का प्रस्तुतिकरण करके वे धर्ममय पथ दर्शाते हैं, नाम का उच्चारण करने वालों को ज्ञान पथ की प्राप्ति कराते हैं, ध्यान से वैराग्य प्राप्ति तथा अपनी मूर्ति के पूजन से वैभव संपदा प्रदान करते हैं। इसी से इस भूमंडल पर राम नाम से इनकी ख्याति रही होगी। वस्तुतः यथार्थ वही है कि जिस अनंत नित्यानंद रूप चिद रूप परमात्मा में

0: योगी जन रमण करते हैं वे परब्रह्म परमेश्वर ही राम पद से जाने जाते हैं।
1: राम की महिमा। अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर था बजरंगी तिवारी का। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा कार्यक्रम आराधना।

श्रोताओं सुप्रभात। जब जब जीवन में कोई संकट आता है तो हृदय पर सबसे पहला नाम संकट मोचन का ही आता है। तो आइए सुबह सवेरे हम भी कार्यक्रम आराधना का आरंभ करें, अपने हृदय में अटूट विश्वास और भक्ति जगाकर। सुनते हैं पवन पुत्र हनुमान जी का ये दिव्य पावन भजन, जो हमारे मन को शक्ति और असीम शांति से भर देगा।

संकट मोचन भगवान हनुमान को हम सब का शत शत नमन है। श्रोताओं, जहाँ हनुमान जी हैं वहाँ राम है, और जहाँ राम है वहाँ हनुमान तो है ही। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का नाम केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग है, जिनके नाम मात्र से ही मन के सारे संताप मिट जाते हैं। आइए उन्हीं रघुकुल नंदन के चरणों में अपनी हाजिरी लगाते हैं, आनंद उठाइए प्रभु श्री राम के इस परम सुखदाई और मधुर भजन का।

राम भजन कर मन। जी हाँ श्रोताओं, राम का नाम छोटा जरूर है लेकिन इसमें शक्ति अपार है। श्रोताओं, कैलाश के वासी, गले में सर्प की माला धारण करने वाले और भक्तों के दुखों को पल भर में हरने वाले देवों के देव महादेव का नाम भी कल्याणकारी है। तो आइए आराधना में आगे बढ़ते हुए पूरी श्रद्धा के साथ खुद को शिव जी की भक्ति में विलीन करते हैं और सुनते हैं भगवान भोलेनाथ का ये अलौकिक भजन और मन को शांत और पवित्र करते हैं।

जी हाँ श्रोताओ, भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर खुद को और उस परम पिता परमेश्वर को भूल जाते हैं। लेकिन सच तो यही है कि इस दुनिया में केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है, इसीलिए हरि नाम का जाप तो करते ही रहना चाहिए। इस संसार का एक और शाश्वत नियम है कि यहाँ जो आया है उसे एक दिन जाना ही है। यहाँ का धन दौलत, रिश्ते नाते सब यहीं रह जाने हैं। इस परम सत्य को बताता आइए सुने ये पावन भजन।

जीवन का यही सत्य है श्रोताओं। कहते हैं कि ईश्वर निराकार हैं, उनका नाम उनकी भक्ति किसी सीमा में नहीं बंधती। उनकी भक्ति और कृपा के बिना जीवन का एक पल भी काटना असंभव है, ये भी परम सत्य है।

हम सभी प्राणियों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ अब आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, भक्तिमय इस पावन बेला में नमस्ते लखनऊ में आइए, अब आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित मानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनिए भाग 204। आज का प्रसंग है भारद्वाज ऋषि से आशीर्वाद प्राप्त कर भरत का अयोध्या वासियों के साथ चित्रकूट प्रस्थान का वर्णन।

भरद्वाज ऋषि से आशीर्वाद और आज्ञा प्राप्त कर भरत जी दल बल समेत चित्रकूट की दिशा में चल पड़े हैं। राह में असंख्य जड़ चेतन जीव जिन्हें पहले श्री राम के दर्शन हुए थे अब भरत का साक्षात्कार पाकर मानो परम पद प्राप्त कर रहे हैं। किंतु भरत का प्रभाव देख देवराज इंद्र ये सोचने लगते हैं कि कहीं भ्रातृप्रेम के वशीभूत श्री राम अयोध्या न लौट जाए और इस तरह बनी बनाई बात बिगड़ न जाए। उनकी चिंता देख देवगुरु बृहस्पति उन्हें सीख देते हैं कि श्री राम की भक्त वत्सलता और उदारता की महिमा को ध्यान में रखकर मन से इस प्रकार की कुटिलता निकाल देनी चाहिए। जो भी श्री राम के भक्तों का अपराध करता है वो उनकी क्रोधाग्नि में भस्म हो जाता है, और इस बात को दुर्वासा से अधिक और कौन जान सकता है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रातः के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एआई का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्स्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिकरूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विकसमाह्वानेषु विचारविनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रोंवर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रियसमाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प्, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतॄणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीयपरिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखरसम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांसदेशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेण्ड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्थामन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। श्रोताओं, कार्यक्रम में आज नीना सोनकर जानकारी दे रही हैं अनारदाना के विषय में। सुनिए, अनारदाना स्वाद भी औषधि भी।
3: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ना तो कोई नई खोज है, ना ही कोई विदेशी खाद्य पदार्थ, बल्कि वो एक ऐसा देसी खजाना है जो हमारे मसालों के डिब्बे में अक्सर चुपचाप रखा रहता है, लेकिन उसके गुण बहुमूल्य होते हैं। आज हम बात करेंगे अनारदाने की, एक ऐसा तत्व जो स्वाद में खट्टा मीठा है लेकिन सेहत में बेहद उपयोगी। अनारदाना दरअसल अनार के सूखे बीज होते हैं। जब अनार के दानों को सुखा दिया जाता है तो उनमें एक

0: खास तरह की तीव्रता और खट्टापन रह जाता है जो भारतीय व्यंजनों को एक अलग ही तरह का स्वाद देता है। लेकिन ये केवल स्वाद तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे पाचन, त्वचा, रक्त और कई आंतरिक क्रियाओं में सुधार लाने वाला एक प्राकृतिक उपाय भी है। आयुर्वेद में इसे एक रक्त शुद्धि देने वाला तत्व माना गया है और ये शरीर की पाचन अग्नि को जागृत करने वाला माना जाता है। पाचन की बात करें तो अनारदाना पेट की कई समस्याओं में मददगार होता है। जिन लोगों को बार बार गैस, अपच, पेट में भारीपन या भूख न लगने की शिकायत होती है उनके लिए अनारदाना रामबाण उपाय साबित हो सकता है। इसे भून कर पीस कर चूर्ण के रूप में लिया जाए या चटनी में मिलाकर खाया जाए तो ये तुरंत आराम देने वाला असर करता है। बहुत बार हमने देखा है कि देसी घरों में खट्टी मीठी चटनी में इसका उपयोग होता है। ये न केवल स्वाद बढ़ाता है बल्कि भोजन को पचाने में भी सहायक होता है। इसके अलावा अनारदाना में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है। ये दोनों तत्व शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। जब मौसम बदल रहा हो या संक्रमण का खतरा अधिक हो तब अनारदाना जैसे मसाले शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाते हैं। ये विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है जिसका पाचन तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर होता है। एक और रोचक पहलू ये है कि अनारदाना महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना गया है। खासतौर पर मासिक धर्म की अनियमितता या कमजोरी जैसी स्थितियों में ये शरीर को मजबूती प्रदान करता है और खून की कमी को दूर करता है। आयरन की उपस्थिति इसे एक अच्छा रक्तवर्धक भी बनाती है। जिन लोगों को बार बार चक्कर आते हैं या थकावट महसूस होती है उनके लिए अनारदाना और गुड़ का मिश्रण एक पुराना लेकिन असरदार घरेलू उपाय है। अगर स्वाद की बात करें तो भारतीय रसोई में अनारदाना का उपयोग कई तरीकों से किया जाता है, चाहे आलू टिक्की हो, चाट हो, पुलाव हो या दाल। इसकी थोड़ी सी मात्रा किसी भी व्यंजन को विशेष बना देती है। यहाँ तक कि कई पंजाबी व्यंजनों में इसे कसूरी मेथी या सूखे मसालों के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है जिससे खाने का स्वाद गाढ़ा और यादगार हो जाता है। गर्मी के मौसम में जब भूख कम लगती है तब अनारदाने की चटनी या पाउडर भोजन में स्वाद लाकर इसे रुचिकर बना देता है। शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने के लिए भी ये एक अच्छा विकल्प है। जब गर्मियों में लू का प्रकोप बढ़ जाता है और प्यास बुझने का नाम नहीं लेती तब अनार से बने पेय और अनारदाने की चटनी शरीर को राहत प्रदान करती है। ये पेट को ठंडा रखती है और साथ ही शरीर को तरोताजा बनाए रखती है। बच्चे कई बार बाजार की खट्टी मीठी टॉफियों की ओर भागते हैं लेकिन यदि उन्हें अनारदाने की गोलियां या घर में बनी अनारदाने की चटनी दी जाए तो ये न केवल स्वादपूर्ण विकल्प होगा बल्कि सेहतमंद भी। एक महत्वपूर्ण बात ये है कि अनारदाना हानि रहित होता है यानी इसके कोई विशेष दुष्प्रभाव नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे हर चीज में संतुलन जरूरी होता है वैसे ही अनारदाने का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। विशेषकर पेट में अल्सर या अत्यधिक अम्लता की समस्या हो तो इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है। श्रोताओं, हमें ये समझना जरूरी है कि हमारी देसी रसोई में छुपे हुए हैं मसाले, बीज और फल महज स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि शरीर को पोषण देने और बीमारियों से बचाने की छुपी हुई शक्तियां भी रखते हैं। अनारदाना उन्हीं में से एक है जो खाने का स्वाद बढ़ाए, पाचन सुधारे, शरीर को ठंडक दे और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाए। तो अगली बार जब आप रसोई में कोई चटपटा या स्वादिष्ट व्यंजन बनाएं या जब आपको लगे कि भूख कम हो रही है, पेट भारी सा लग रहा है तो अनारदाने को एक बार जरूर आजमाएं। ये छोटा सा मसाला आपके स्वाद के साथ साथ आपकी सेहत की देखभाल भी बड़ी खूबसूरती से करेगा। आज की स्वास्थ्य चर्चा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और देसी औषधि या मसाले के साथ जो आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में आपकी मदद कर सके। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: अनारदाना स्वाद भी औषधि भी। आज की स्वास्थ्य चर्चा में नीना सोनकर से सुन रहे थे आप ये महत्वपूर्ण जानकारी। हमें उम्मीद है हमारे श्रोताओं को ये जानकारी पसंद आई होगी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए आज दिन भर हमारे केंद्र से

प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोताओं, आज रात्रि 11:10 से आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला। आज का विषय होगा आतंकवाद। ये कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रातः 9:15 पर जिले की हलचल में आज सुनिएगा मेरठ और शामली जिलों की खबरें। 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के तहत समात फरमाइएगा गुफ्तगू। मौजू होगा हजरत इमाम हुसैन और पैगामे इंसानियत। शरीके गुफ्तगू होंगे मोबिन हसन, सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे आभी। मनोरंजन और जानकारियों का खजाना लेकर आएगा कार्यक्रम आज सुबह प्रातः 7:31 पर। अब से थोड़ी देर में यानी प्रातः 7:10 पर सुनिएगा कार्यक्रम विविधा। आज का विषय होगा स्वाध्याय, विवेकशील जीवन का पर्याय। लोकरंग और लोकमाधुरी कार्यक्रम में आज आपको सुनवाएंगे विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधी लोकगीत। लोक रंग कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 9:50 पर और लोकमाधुरी कार्यक्रम का आनंद उठाइएगा दिन में 2:45 पर। बहनें सुनेंगी अपना मनपसंद कार्यक्रम अपराजिता दिन में 1:15 से। 2:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन। वार्ताकार होंगे डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव। भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी 5:00 से। युवा श्रोता सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवा तरंग 5:10 से। 5:45 पर कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा नई उड़ान। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम लोकायतन। आज इस कार्यक्रम में सुनिएगा राकेश कुमार सिंह की वार्ता। विषय होगा सशक्त श्रमिक समर्थ भारत। 6:50 पर कार्यक्रम होगा खेती किसानी। कार्यक्रम में आज डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंट वार्ता सुनिएगा। बातचीत का विषय रहेगा खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन। रात्रि 8:00 हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत आज खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय पर सुनिएगा डॉक्टर अशोक कुमार कैथल की वार्ता। रात्रि 8:10 पर आनंद लीजिएगा सुगम संगीत का। आज इस कार्यक्रम में आपको सुनवाएंगे किशोर चतुर्वेदी के स्वर में भजन। रात्रि 10:00 से राज्य स्तरीय प्रसारण में आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति में सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। और रात्रि 10:30 से शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आनंद लीजिएगा उस्ताद विलायत हुसैन खान के ख्याल गायन का। इसके साथ ही समय समय पर श्रोता फिल्म संगीत और प्रायोजित कार्यक्रम भी सुन सकेंगे। ये थी संक्षिप्त जानकारी हमारे आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं कार्यक्रम विविधा के आज के खूबसूरत और शानदार सफर में। दोस्तों, क्या कभी आकाश में उड़ते पक्षी को देखकर आपके मन में ये प्रश्न उठा है कि

फिर उसे दिशा कौन देता है? और जीवन में उतार चढ़ाव, दुविधाओं और अनगिनत विकल्पों के बीच हम मनुष्यों को सही मार्ग चुनने की प्रेरणा आखिर कहां से मिलती है? क्या केवल शिक्षा हमें सही निर्णय लेना सिखा देती है? क्या बहुत सारी जानकारी होना ही बुद्धिमानी की निशानी है? या फिर कोई ऐसी शक्ति भी है जो ज्ञान को समझ में और समझ को विवेक में बदल देती है? श्रोताओं, ये शक्ति है स्वाध्याय की। स्वाध्याय यानी स्वयं का अध्ययन, स्वयं से संवाद और ज्ञान के प्रकाश में अपने जीवन को परखने की प्रक्रिया। स्वाध्याय केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपने विचारों, व्यवहार और अनुभवों को समझने की एक सतत यात्रा भी है। तो आइए जाने कि किस प्रकार स्वाध्याय हमारे विचारों को गहराई देता है, निर्णयों को संतुलन प्रदान करता है और हमें एक बेहतर इंसान बनने की दिशा दिखाता है। आज की विविधा में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय की जो व्यक्ति के ज्ञान को गहराई देता है, विचारों को परिष्कृत करता है और जीवन को विवेकपूर्ण बनाता है। आज हम बात करेंगे स्वाध्याय, विवेकशील जीवन का पर्याय विषय की। यूं तो शब्दों के रूप में देखें तो स्वाध्याय का सामान्य अर्थ है स्वयं अध्ययन करना, लेकिन वास्तव में इसका अर्थ इससे कहीं अधिक व्यापक है। स्वाध्याय केवल पुस्तकों के पन्ने पलटना नहीं है, बल्कि ज्ञान को आत्मसात करना, अपने विचारों को परखना और स्वयं को बेहतर बनाने का सतत प्रयास करना भी है। दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जो व्यक्ति को बाहरी संसार के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया से भी परिचित कराती है। आज का युग सूचना का युग है। ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है। जी हाँ, मोबाइल, इंटरनेट, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं सभी तो हमारे सामने हैं, लेकिन जानकारी का भंडार होना और विवेकशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। याद रखिए, जानकारी हमें तथ्य देती है, जबकि स्वाध्याय उन तथ्यों को समझने और जीवन में उतारने की क्षमता प्रदान करता है, और यही क्षमता आगे चलकर विवेक का रूप ले लेती है। दोस्तों, स्वाध्याय व्यक्ति को सोचने की आदत देता है। जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं या किसी विचार पर मनन करते हैं, तब हमारे भीतर प्रश्न भी जन्म लेते हैं। यही प्रश्न जिज्ञासा को जन्म देते हैं और जिज्ञासा ज्ञान की नई राहें खोलती है। आप जानते ही हैं कि जिस व्यक्ति के भीतर प्रश्न करने की क्षमता जीवित रहती है, उसका मानसिक विकास कभी नहीं रुकता। स्वाध्याय एक महत्वपूर्ण पक्ष आत्मचिंतन भी है। दिन भर के कार्यों पर विचार करना, अपनी गलतियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना भी स्वाध्याय का ही स्वरूप है। जब हम स्वयं का अध्ययन करने लगते हैं, तब हमें अपनी शक्तियों और सीमाओं दोनों का ही ज्ञान हो जाता है। दोस्तों, विवेकशील व्यक्ति परिस्थितियों को केवल ऊपर ऊपर से नहीं देखता, बल्कि वो हर विषय के सभी पहलुओं को समझने का प्रयास भी करता है। और जानते हैं, ये दृष्टि उसे स्वाध्याय से ही प्राप्त होती है। आज समाज में कई प्रकार की सूचनाएं और विचार हमारे सामने आते हैं। कई बार सही और गलत में अंतर करना तक कठिन हो जाता है। ऐसे समय में स्वाध्याय हमें तथ्यों की जांच करना, विचारों का मूल्यांकन करना और तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचना सिखाता है। यही विवेकशील जीवन की पहचान है। याद रखिए, स्वाध्याय केवल विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है, बल्कि ये हम सभी के जीवन में प्रत्येक चरण पर आवश्यक है। स्वाध्याय का सबसे बड़ा लाभ ये भी है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाता है। ये वो हर छोटी बड़ी बात सीखता है, समझता है और उसका आत्मविश्वास भी इस तरह से मजबूत होता है। दोस्तों, अगर हम हर दिन

समय स्वाध्याय के लिए निकालें, चाहे वो किसी पुस्तक का अध्ययन हो, किसी प्रेरणादायक विचार पर चिंतन हो या फिर स्वयं के व्यवहार का विश्लेषण ही हो, तो धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं। यही परिवर्तन हमें ज्यादा सजग और कहीं ज्यादा समझदार, साथ ही विवेकशील भी बनाते हैं। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि स्वाध्याय केवल ज्ञान अर्जित करने का माध्यम नहीं, बल्कि स्वयं को पहचानने और जीवन को सही दिशा देने का मार्ग भी है। जिस व्यक्ति के जीवन में स्वाध्याय है, उसके निर्णयों में संतुलन, विचारों में गहराई और व्यवहार में परिपक्वता दिखाई देती है। याद रखिए, स्वाध्याय से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से समझ और समझ से विवेक। इसलिए जो व्यक्ति सीखना नहीं छोड़ता, वो आगे बढ़ना भी नहीं छोड़ता। अब इन्हीं शब्दों के साथ मुझे यानी अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को दीजिए अनुमति, फिर मिलने का है वादा। तब तक स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे गोरखपुर केंद्र से।

0: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, श्वास लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान, नागर विमानन मंत्री किंजारपुर राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जाँच के लिए गठित विशेष जाँच दल SIT पहुँची अयोध्या, जाँच शुरू। अब समाचार विस्तार से। गौतम बुद्ध नगर जिले के

0: अकबर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें कल से शुरू हो गईं। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने उद्घाटन समारोह में कहा कि ये एयरपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देशभर में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के विजन का नतीजा है। श्री नायडू ने कहा कि ये एयरपोर्ट घरेलू संचालन का हब बनेगा। उन्होंने बताया कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी।
1: ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए हब बनेगा और खास तौर पे यहाँ एरोट्रॉपलिस

0: होगा, बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, एग्रीकल्चर हो, कार्गो हो, ऐसे मल्टीपल सेक्टर्स हैं जो डिपेंडेंट रहेंगे ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
1: नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से शुरू हुई पहली उड़ान से हवाई अड्डे के लिए जमीन देने वाले 170 किसान स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के साथ कल लखनऊ पहुंचे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद करते हुए कहा कि सरकार अन्नदाताओं को समुचित हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ में आयोजित डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शामिल हुए। इस अवसर पर सोशल मीडिया क्रिएटर्स से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना एक विजन है, देश के प्रति सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे समाज के सभी पक्षों को जोड़ते हुए एक जन आंदोलन बनाकर ही सफल बनाया जा सकता है। सम्मेलन में 10 से अधिक राज्यों के 100 से अधिक डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर्स शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इस सिलसिले में आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
3: पिछले 12 वर्षों में अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिक करण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे यह पूरे देश में ट्रेन चले।
3: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। आयुष मंत्रालय ने कल नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि इस साल योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।

0: प्रदेश की राजधानी लखनऊ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्जापुर और बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों सहित समाज सेवियों द्वारा प्रोटोकॉल के तहत योग कर योग सप्ताह की शुरुआत की गई। वाराणसी में इस अवसर पर आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में राज्य में योग, आयुष और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की जा रही हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी ने कल से अपनी जांच शुरू कर दी। एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन इसमें सदस्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि एसआईटी के सभी सदस्य कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने आयुक्त और अयोध्या के डीएम के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। एसआईटी को 7 दिनों में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिनों के भीतर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश हैं। अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। श्रीराम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने कल वहां मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मंदिर निर्माण में लगी सभी एजेंसियां 15 जुलाई तक काम पूरा कर लेंगी।
2: मुख्य रूप से निर्माण का जो कार्य अब अंतिम चरण में है, क्योंकि सभी एजेंसी जुलाई 15 तक वापस हो जाएंगी। हम आश्वस्त हैं कि यदि यह प्रगति रही तो दिसंबर 2026 तक श्रद्धालुओं को म्यूजियम भी देखने का पूरा पूरा अवसर मिलेगा।
1: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2023 के तहत उत्तर प्रदेश नवीन अनुपूरक पुष्टाहार योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बीते 14 जून को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से इसका शुभारंभ किया। गोरखपुर के जिला कार्यक्रम अधिकारी अभिनव मिश्र ने बताया कि इस योजना के तहत 7 श्रेणी के लाभार्थियों को 10 प्रकार की रेसिपी उपलब्ध कराई जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू हुई वाणिज्यिक उड़ान। नागर विमानन मंत्री किंजारपु राममोहन नायडू ने कहा, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर को मिलेगा बढ़ावा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों से किया संवाद, कहा अन्नदाताओं को हक दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। आयुष मंत्रालय ने नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का किया शुभारंभ। 21 जून तक चलने वाले योग सप्ताह के तहत प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी विविध कार्यक्रमों की हुई शुरुआत। और अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान और कीमती सामान के कथित गबन के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल एसआईटी पहुंची अयोध्या, जांच शुरू। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
5: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। नमस्ते लखनऊ में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। प्रस्तुत है कार्यक्रम आज सुबह

0: सुबह का ये खुशनुमा वक्त लेकर आया है एक नई शुरुआत, एक नए विचार और नई संभावनाओं के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह। अगर जी तो आप शायद अभी मेरा इशारा समझी नहीं कि ये मिठाई दिवस है आज।
1: जी हाँ भाई, मिठाई
0: चाय से काम चलाएंगे?
1: नहीं भाई, आपको मिठाई भी खिलानी पड़ेगी हमको।
0: जी तो देखिए, मीठा खाइए, मीठा बोलिए और सबके साथ मीठे रिश्तों में रखिए, क्योंकि भाई यही तो जीवन का आनंद है
1: और हमारी जमा पूंजी भी है।
0: जी हाँ, रिश्तों की मिठास बनी रहे ये बहुत जरूरी है। और रिश्तों की मिठास पता है कब बनी रहेगी? जब जबान में मिठास होगी।
1: जी हाँ, तो कहते ना कि अगर हम भले ही कम बोले लेकिन अच्छा बोले।
0: जी हाँ, तो एक इसी प्यारी सी बात के साथ में कुछ और भी जानकारियां अपने श्रोताओं को देते हैं।
1: जी हाँ, आज का इतिहास क्या कहता है रिंकी?
0: आज का इतिहास बहुत खास है और ये बताता है कि 1858 में आज ही के दिन यानी 16 जून से प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, जिसे हम 1857 की क्रांति भी कहते हैं, के दौरान मोरार की लड़ाई लड़ी गई थी।
1: जी हाँ, और पता है कि आज एक इतिहास में बहुत ही अच्छा सा दिन दर्ज है। आज 16 जून यानी 1963 में सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी।
0: शत शत नमन है, प्रणाम है, क्योंकि आप जैसी महिलाओं को देखकर ही हमारे लिए एक अचीवमेंट तय होता है कि हाँ, आपका ये अचीवमेंट है और हम भी कुछ आगे कर सकते हैं। महिलाएं किसी चीज में पीछे नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: अपने श्रोताओं को हम बता दें, 1903 में अमेरिका में पहली बार फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना 16 जून को ही हुई थी और सन था 1903।
1: और आज ही के दिन सन 1911 में न्यूयॉर्क में IBM कंपनी की स्थापना हुई थी। पहले इसका नाम कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी था।
0: जी, IBM के बारे में, जी कंप्यूटिंग ट्यूबलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी। और इसके साथ ही अपने श्रोताओं को बता दें कि 2010 में भूटान ने तंबाकू विरोधी कानूनों को और ज़्यादा सख्त बनाया था। वहाँ तंबाकू विरोधी कानून बनाए गए थे कि आप तंबाकू या उससे बने पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो इतनी ढेर सारी जानकारियों के बाद अब रुख करते हैं
1: आज के मौसम का।
0: जी तो मौसम क्या कहता है ये भी जान लेते हैं। और मौसम की जानकारी देने के लिए हर रोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ते हैं IMD के सीनियर साइंटिस्ट मोहम्मद दानिश जी। आइए उनसे जान लेते हैं मौसम का हाल कैसा रहने वाला है।
2: नमस्ते सर।
3: नमस्ते
2: सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम आज सुबह में। सर हमारे श्रोताओं को, जी गुड मॉर्निंग सर, सर हमारे श्रोताओं को बताइए कि आज का मौसम कैसा रहेगा।
3: जी मौसम की बात करें तो मौसम साफ रहेगा, हालांकि हल्की फुल्की बीच में बादलों की आवाजाही होगा, लेकिन तापमान में धीरे धीरे इधर आने वाले अगले 3-4 दिन थोड़ा इजाफा ही रहेगा, थोड़ा गर्मी का सबब बना रहेगा। बाकी उसके बाद फिर से जैसा कि 18 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर से 18-19 तारीख के बाद थोड़ा सा तापमान में गिरावट आएगी और कहीं ना कहीं जो गर्मी इधर बढ़ेगी तापमान, उससे थोड़ी राहत मिलने की संभावना।
2: जी यानी कि अब थोड़े दिनों बाद इस गर्मी से हमें राहत मिलेगी, लेकिन अभी गर्मी का प्रकोप बना रहेगा।
3: जी
2: सर, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते सर।
3: ओके, धन्यवाद
1: भाई रिंकी, इतनी सारी जानकारी हमने अपने श्रोताओं को दे दी है। अब समय है खूबसूरत से गीत का।

0: कुमार सानू की आवाज़ में आप सुन रहे थे फिल्म दीवाना का ये गीत। और श्रद्धा, इस गीत को सुनकर आपको ऐसा नहीं लगा कि हम कहीं थोड़ा सा पीछे पहुंच गए?
1: बिल्कुल भाई, कुछ यादें होती है ना, कितना अच्छा लगता है भाई। खूबसूरत यादें जरूर बनानी चाहिए,
0: ताकि और मीठी मीठी सी
1: यादें, हाँ, ताकि जब भी हम उनके बारे में सोचे तो हम सिर्फ मुस्कुराएं।
0: जी, और 90s के गीतों का तो दौर ही ऐसा था कि चाहे जितना समय मुझे लगता है निकल जाए, अगर वो आपके आसपास कहीं बज रहे तो आप गुनगुनाए बिना नहीं रह सकते, आपके कानों में
1: मिठास में खो जाते हैं।
0: जी, एक बार अगर वो धुन आपके कानों में गई तो आप उसमें कहीं खो जाते हैं, फिर चाहे वो सुबह का समय हो या फिर दोपहर या शाम या फिर रात की।
1: इस संगीत का जो भी जादू है ना, वो हर समय चल जाता है
0: जी, और दिल खुश हो जाता है। और यही हमारा मकसद है कि हम अपने श्रोताओं को खुश रखें, उन्हें सुबह की ऐसी शानदार शुरुआत दें कि आने वाला जो दिन है वो वक्त बहुत अच्छा गुजरे, सकारात्मक गुजरे।
1: जी हाँ, मुस्कुराते हुए।
0: और देखिए, मौसम में बदलाव भी शुरू हो चुका है और अब हमें बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। बारिश का भी समय आने वाला है श्रद्धा, तो बहुत ज़रूरी है कि हम बारिश का जो पानी है उसको संचयित करने का प्रयास करें, उसे इकट्ठा करने का प्रयास करें, क्योंकि जल है तो कल है।
1: बिल्कुल, और पानी का संरक्षण तो जरूरी है ही, साथ में हम जितना प्रयास कर सकें कि पेड़ पौधे लगाएं, उनकी देखभाल करें, है ना रिंकी, ताकि गर्मी जो है ना वो सुखद रहे।
0: जी, और जब पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, सुरक्षित रहेगा, तो हम सब भी स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे।
1: जी हाँ।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दामिनी फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत कुमार सानू और साधना सरगम के स्वर में। और दोस्तों, अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि इसी गीत के साथ अब हमें लेनी होगी आपसे अनुमति, लेकिन वादा है फिर किसी रोज़ होगी आपसे जल्द ही मुलाकात। तब तक रखिए अपना खूब ख्याल
1: और दीजिए श्रद्धा और
0: रिंकी को आज के कार्यक्रम से अनुमति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज सुबह। श्रोताओं, इसी कार्यक्रम के साथ अब नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। दीजिए अनुमति। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 8 बजने को है। थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार प्रभात हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुर दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है, और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में

0: 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियो फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यार्स का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की 0 सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को

0: नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
1: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इलीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
4: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट UG पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1,000 रिक्तियों के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में

0: वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर, ट्रंप ने नाकेबंदी खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया, अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मॉनसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा, टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे। To also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force Base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister

0: मोदी की शक्ल दी है। ब्रेटिस्लावा में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के उनके हमनसब रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के बाद फरीकैन ने अहम शोबों में बाहमी ताउन को तौसी देने की गरज से 11 माहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें लेबर माइग्रेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और दिफा शामिल हैं। एक मुश्तरक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ताल्लुकात का फरोग मुश्तरक अकायद, तरजीहात और मुस्तकबिल की अलामत है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: जनाब मोदी ने कहा कि दोनों मुल्कों ने दिफाई शोबों में एक लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत किए हैं।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
0: इस मौके पर खिताब करते हुए स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फीको ने भारत की तेज रफ्तार इकतसादी तरक्की को सराहा। उन्होंने कहा कि भारत ने अहम शोबों में कई तरक्की याफ्ता मुल्कों को पीछे छोड़ दिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वज़ीर आज़म के दौरे ब्रातिस्लावा के दौरान कई तारीखी फैसले किए गए, जिनमें भारत और स्लोवाकिया के ताल्लुकात को नुमायां तौर पर मजबूत करने की सलाहियत मौजूद है। वज़ीर आज़म जनाब मोदी के दौरे के दौरान कुल 11 अहम मुफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए। इन मुआहदों में दिफा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, सियाहत, क्वांटम कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत समेत जदीद टेक्नोलॉजी और आला तालीम जैसे शोबों में ताउन बढ़ने की तवक्को है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के वज़ीर आज़म रॉबर्ट फीको के दरमियान बातचीत के दौरान दोनों फरीकों ने दहशतगर्दी का मुकाबला करने में ताउन को मजबूत बनाने के लिए एक मुश्तरक वर्किंग ग्रुप कायम करने का भी फैसला किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज ब्रातिस्लावा से रवाना होंगे और G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए फ्रांस जाएंगे। ब्रातिस्लावा से स्मृति एम पुलुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दो मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में दो रोज़ा दौरे पर आज फ्रांस के शहर एवियन पहुंचेंगे, जहां वो G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की आमद पर फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों उनका बाज़ाब्ता इस्तकबाल करेंगे। इसके बाद वज़ीर आज़म सरबराह कॉन्फ्रेंस के एक वर्किंग सेशन में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू नई शराकत दारियों का क़याम और बैन अल-अक़वामी इत्तेहाद की अज़र नौ तश्कील है। इस इजलास में G7 ममालिक के रहनुमा, शराकत दार ममालिक के नुमाइंदे, नीस आलमी बैंक और अफ्रीकी तरक्याती बैंक के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोदी की कनाडा के वज़ीर आज़म मार्क कार्नी, बरतानिया के वज़ीर आज़म कियर स्टारमर और मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के साथ दोतरफा मीटिंगें भी मुतवक्की हैं। इसके बाद वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फ्रांस के सदर एमैनुअल मैक्रों की दावत पर फ्रांस के उस शहर का दौरा कर रहे हैं, जिसे एक नहायत अहम, नतीजा खेज और हमाजहत दौरा करार दिया जा रहा है। काबिले ज़िक्र बात यह है कि G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में ये भारत की 13वीं शिरकत होगी, जबकि वज़ीर आज़म मोदी मुसलसल 7वीं मरतबा इस इजलास में शरीक हो रहे हैं। G7 सरबराह कॉन्फ्रेंसों में भारत की मुसलसल शिरकत आलमी उमूर में मुल्क के बढ़ते हुए रोल और अहमियत की अक्कासी करती है। यह आलमी सतह पर अमन, सलामती, तरक्की और माहौलियाती पायदारी से मुतालिक चैलेंजों से निमटने में भारत के रोल और खिदमात के एतराफ़ की अक्कासी भी करती है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: G7 मुल्कों के लिए भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत अब ठोस इकतसादी और तकनीकी शराकत दारियों की सूरत में मजीद नुमाया हो रही है। इसका सबूत हाल ही में तय पाने वाला भारत यूरोपीय यूनियन तजारती मुआहदा है, जबकि नीस में मुनक़िदा भारत इनोवेट प्रोग्राम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत का सरकारी AI पार्टनर मुल्क के तौर पर इंतखाब भी इसी सिलसिले की अहम

0: गिरने के बाद हंगामी टीमें जायवकू पर पहुंची। फिजाई फुटेज में बेस के रनवे के करीब सेहरा से काले धुएं के गुबार उठते दिखाई दिए। इसके बाद एयरफील्ड को बंद कर दिया गया। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में केप वर्डे में स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। केप वर्डे के 40 साल गोलकीपर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। इससे पहले ग्रुप जी के इफ्तिताही मैच में बेल्जियम और मिस्र का मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी तरह आज सुबह अमेरिका के मियामी स्टेडियम में ग्रुप एच के मुकाबले में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच भी 1-1 गोल से बराबरी पर खत्म हुआ। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया फैजल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वज़ीर आज़म के स्लोवाकिया दौरे की खबर को अवलियत के साथ शाया किया है। रोज़नामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और स्लोवाकिया में दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक, नरेंद्र मोदी और रॉबर्ट फीको की मुलाकात, दिफा मसनू जहानत, तजारत और सकाफती रवाबित को नई समझ देने का ऐलान। रोज़नामा प्रताप ने अपने सफ़े अव्वल पर एक अहम खबर को शाया करते हुए पहली सुर्खी बनाई है, ईरान और अमेरिका के दरमियान तारीखी अमन माहदा स्विट्ज़रलैंड में 19 जून को बाज़ाब्ता दस्तखत होंगे। अमेरिका ईरान मुफाहमत नामे का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खैर मकदम किया। अखबारात की कुछ अहम सुर्खियां इस तरह हैं, जेवर एयरपोर्ट का इफ्तिताह, किसानों को पहली परवाज का तोहफा, मुल्क भर के 45 शहरों के लिए यहां से परवाजें दस्तयाब होंगी।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। स्लोवाकिया ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपना आला तरीन एजाज़ ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास अता किया है। वज़ीर आज़म मोदी आज फ्रांस के शहर एवियन में मुनाक़िदा G7 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। इस दौरान वो कनाडा और बरतानिया के वज़ीर आज़म और मुत्तहदा अरब अमारात के सदर के साथ दोतरफा मीटिंगें भी करेंगे। हुकूमत ने डीजल और हवाई जहाज़ के ईंधन पर बरामदी महसूल में इजाफा कर दिया है, जबकि पेट्रोल पर बरामदी महसूल में कोई तब्दीली नहीं की गई है। 62,370 मैट्रिक टन LNG लाने वाला भारतीय जहाज़ दिशा बाहिफाजत आबनए हुरमुज से गुजर गया है। जनूबी कैलिफोर्निया में वाकई अमरीकी फिजाइया के अड्डे पर B-52 बम्बार तैयारा गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। और फुटबॉल में फीफा वर्ल्ड कप में केप वर्डे ने स्पेन को बगैर किसी गोल के बराबरी पर रोक दिया। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी मेल आपके गीत। लफ्ज जब दिल से निकलते हैं तो सफर तय करते हैं। लफ्ज जब दिल से निकलते हैं तो सफर तय करते हैं। कुछ गीत बन जाते हैं, कुछ संदेश बनकर बिखरते हैं। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम जिसका नाम है आपके मेल आपके गीत। एक ऐसा कार्यक्रम जहां आपके संदेशों की खुशबू और आपके पसंदीदा गीतों की मिठास साथ साथ चलती है। आपकी बातें, आपकी यादें, आपकी फरमाइशें और उन फरमाइशों के साथ सजे हुए सुरीले नगमे, यही है हमारे इस खूबसूरत सफर की पहचान। और आज के सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा। तो चलिए अगले आधे घंटे तक सजाते हैं हम और आप मिलकर गीत संगीत और संदेशों की इस खूबसूरत सी महफिल को। अगर आप भी

अपनी पसंद का कोई गीत सुनना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा पता है आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं फिल्म पारस के एक खूबसूरत गीत के साथ। इस गीत में आवाजें हैं मुकेश और लता मंगेशकर की। गीत को संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने। और श्रोताओं ये भी बता दें कि गीत की फरमाइश किसने की है, तो इस गीत की फरमाइश की है किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजयपाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋचा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव, राजेश कुमार व विजय पांडे ने। श्रोताओं हमारे पास एक और मेल शेख मूसा मोहसिन की आई है सनावद से, और इन्होंने भी एक गीत सुनाने की फरमाइश की है। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदस्सिर साबरी, मुजक्किर साबरी और जरीफ अंसारी का भी मेल हमारे पास आ चुका है। ग्राम पंजौनिया जिला जालौन से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया भी मेल कर रहे हैं। तो आप सभी को सुबह का नमस्कार, और ये खूबसूरत सा नगमा पहुँच रहा है आपकी फरमाइश का आपके पास तक आपके रेडियो सेट पर।

दोस्तों, रेडियो की दुनिया में श्रोताओं के संदेश किसी अनमोल उपहार से कम नहीं होते। हर संदेश अपने साथ एक कहानी और एक मुस्कान लेकर आता है। आइए इसी मुस्कान के साथ पढ़ते हैं आज का अगला मेल और देखते हैं ये मेल हमें किसने भेजा है। तो मेल आई है हमारे रेगुलर श्रोता हैं ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली ज़िला बरेली से शाहरुल नूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान जी लिख रहे हैं। गीत सुनाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेल भेजने के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। एक मेल हमारे पास आया है देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, डॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया का, और इनका पोता भी मेल कर रहा है। अच्छा, उसका नाम भी इन्होंने शामिल किया है अल कबीर। ये मेल डोंडी लोहरा बालोद छत्तीसगढ़ से हमारे पास आई है। एक मेल गुजरात गांधीग्राम से आई है प्रवीण सोनी और जगदीश जौहरी की। आपको मेल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा कॉलोनी झांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू भी मेल कर रहे हैं। तो आप सभी को सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में खूबसूरत सा नगमा फिल्म फ़र्ज़ से।

दोस्तों, कुछ लोग गीत सुनते हैं, कुछ गीतों में अपनी यादें ढूंढ लेते हैं। ऐसी ही कुछ यादें ढूंढने चलेंगे एक नए सफर पर, लेकिन इस छोटे से अंतराल के उस पार।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkouniv.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: हमारी जनगणना हमारा विकास।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। दोस्तों, आपके मेल इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी ताकत है। इन्हीं के सहारे ये कारवां आगे बढ़ता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे एक नए मेल के साथ, जो हमें भेजा है कंवर कॉलोनी बड़वाह से, जिला खरगोन MP से प्रवीण श्रीमाली और मीना श्रीमाली ने। एक मेल हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का। ग्राम व पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से रामेश्वर कठेरिया, उमा कांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया और निशा कठेरिया भी मेल कर रहे हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से TD मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप ने मेल किया है। और कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का भी मेल हम तक पहुंच चुका है। वहीं जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहित

ऋतिक और बलवीर सिंह का भी मेल हमारे पास आ चुका है और आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश है कि हमें जब प्यार किसी से होता है, जो पुरानी पिक्चर थी उसका एक गीत सुनवा दीजिए। तो ये खूबसूरत सा नगमा आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और अपना प्यार ईमेल के माध्यम से ऐसे ही बनाए रखें, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे आपकी पसंद के खूबसूरत से नगमे।

इस आग में जलते हो, चेहरे से बयां हो जाता है। हर बात पे आहें भरते हो, हर बात पे दिल भर जाता है।

वक्त है कार्यक्रम में आगे बढ़ने का और जल्दी से पढ़ते हैं कि अगला मेल हमें किसने भेजा है। तो मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बड़ोना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप का मेल हमारे पास आ चुका है। एक मेल रघुनाथपुरा जिला श्री गंगा नगर राजस्थान से आया है, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी का। काई मऊ कुआरियापुर सैंडी हरदोई से एक मेल आई है, भेजा है मुदित, विजेंद्र, अनवी, सुनीता, शोभा, दीपा, रामफेर, कपिल, प्रांजल और रमा राजपूत, इनके साथ अनया राजपूत और कृष्णा राजपूत भी हैं। आप में से ही एक श्रोता की फरमाइश है कि हमें सुहाग फिल्म का गीत सुनवाइए। इस गीत में आवाज़ें शैलेंद्र सिंह, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की हैं। तो लीजिए, आप तक पहुंच रहा है आपकी फरमाइश का ये गीत और बाकी श्रोता भी इस गीत को एंजॉय करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है।

श्रोताओं, आपके हर मेल में छुपी होती है आपकी पसंद, आपकी भावनाएं और आपका अपनापन, और यकीन मानिए ये हमारे लिए बहुत खास है। कार्यक्रम में अगला मेल पढ़ने का समय है और ये मेल हमें भेजा है मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोडे, रेखा बंसोडे, अदिति बंसोडे और वैभव शिंदे ने। हिल स्टेशन खंडाला से भी मेल आई है आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे की। श्रोताओं, एक मेल हमारे पास आई है सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके यशोधरा रामटेके श्रव्या रामटेके की, और हमारे पास सुनीता सिंह, प्रीति सिंह, ऋतु सिंह, अशोक सिंह का भी मेल आया है जबलपुर मध्य प्रदेश से। एक मेल हमारे पास आई है पाकिजा रेडियो श्रोता संघ से वैष्णो कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अलतमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री की। सहेली रेडियो श्रोता संघ से आज़ाद रोड सनावत से बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, नवासी जिक्रा और

मोहम्मद सगड़ खत्री भी मेल कर रही हैं। तो आप में से एक श्रोता की फरमाइश है, तेरे नाम का एक गीत सुनवा दीजिए। तो ये रहा आपकी पसंद का गीत आपके रेडियो सेट पर, उदित नारायण और अलका याग्निक के युगल स्वरों में।

0: श्रोताओं, तेरे नाम फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रिंकी शर्मा को। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए मेरठ और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं मेरठ जिले की हलचल। आलेख और स्वर है संगीता श्रीवास्तव का।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में मेरठ में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने छावनी क्षेत्र के माल रोड पर 150 पौधों का रोपण किया। वृक्षारोपण अभियान में छावनी परिषद की संयुक्त मुख्य अधिशासी अधिकारी हर्षिता चमाड़िया ने छावनी परिषद के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ वृक्षारोपण किया और बताया कि छावनी परिषद द्वारा छावनी क्षेत्र में 12,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उन्होंने 1001 पौधे लगाने का संकल्प लिया है। इसके तहत अभी 150 पौधे लगाए गए हैं, जबकि 500 पौधे कैंट क्षेत्र में लगाए जाएंगे। इस स्थान को उपवन नाम दिया जाएगा। इसकी देखरेख के लिए एक संस्था को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बचे हुए पौधे कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे, जिन्हें वे अपने आसपास घर, मंदिर या पार्क में लगाकर उनकी देखभाल करेंगे। उन्होंने कहा कि माल रोड उनके बचपन में ठंडी सड़क के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि यहाँ घने पेड़ हुआ करते थे। समय के साथ सड़क के एक हिस्से से पेड़ कम हो गए, इसलिए कैंटोनमेंट बोर्ड के सहयोग से यहाँ फिर से हरियाली बढ़ाने की पहल की जा रही है। मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय पहुँचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने हॉर्टिकल्चर ब्लॉक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट लैब का निरीक्षण किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने भाजपा सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देश की जनता यह जान चुकी है कि उसका हित प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही सुरक्षित है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है।

0: क्षेत्र से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में यूरिया की कोई कमी नहीं है, किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार यूरिया के दुरुपयोग को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी और इसकी निगरानी लगातार की जा रही है। कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय और कृषि सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने की प्रतिबद्धता भी जताई। उन्होंने कहा कि कृषि अनुसंधान, नई तकनीक और किसानों तक वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाने के लिए विश्वविद्यालय की भूमिका महत्वपूर्ण है तथा सरकार इसके विकास के लिए हर संभव सहयोग प्रदान करेगी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ स्थित अटल सभागार में वर्ष 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप 10 में अपना स्थान बनाने वाले छात्र छात्राओं को उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, लोकसभा सांसद अरुण गोविल, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल द्वारा जनपद के 19 मेधावी छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र मेडल के साथ 21,000 रूपए की धनराशि का चेक देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी देखा गया। हाई स्कूल में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अबीदा, इंटरमीडियम में जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा वंशिका उपाध्याय समेत 19 मेधावियों को सम्मानित किया गया। मेरठ में 119 किलोमीटर की सफाई अब आधुनिक मशीनों से होगी। इस योजना का मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत आहलूवालिया, एमएलए अमित अग्रवाल, महानगर और नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने हरी झंडी दिखाकर किया। इस योजना के तहत सफाई पर एक महीने में करीब 1,23,00,000 रुपए खर्च होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी को सुबह और शाम दोनों शिफ्ट में मुख्य मार्गों की सफाई करनी होगी, जिनकी लंबाई 119 किलोमीटर बैठती है। सांसद अरुण गोविल का कहना है कि उनकी कोशिश है मेरठ को इंदौर की तर्ज पर नंबर 1 बनाना, जबकि महापौर हरिकांत अहलूवालिया का कहना है कि इंदौर और सूरत की तर्ज पर मेरठ की सफाई व्यवस्था करने की हर कोशिश की जा रही है और ये उसी का एक बड़ा प्रयास है। मेरठ में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने सर्किट हाउस में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी महिलाओं से संवाद कर उन्हें केंद्रीय योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही विकास भवन सभागार में महिला आयोग आपके द्वार कार्यक्रम में महिलाओं से संबंधित मामलों की जन सुनवाई की। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजय रहाटकर ने लाभार्थी महिलाओं से संवाद के माध्यम से योजनाओं की सफलता की कहानी सुनी और महिलाओं को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजय रहाटकर ने बताया,
1: एम्पावर्ड जो महिलाएं हैं जिन्होंने योजनाओं के साथ चलते हुए खुद को बहुत अच्छे तरीके से समर्थ बनाया है, काम करने के बाद के जीवन में क्या बदलाव आया है और ये बदलाव मुझे बहुत पॉजिटिव लगा है। महिलाओं का जिस तरीके से कॉन्फिडेंस बढ़ा है, घर में उनकी निर्णय प्रक्रिया में की सहभागिता बढ़ी है, समाज में भी अभी आज उनको सम्मान मिल रहा है, ये देखते हुए बहुत अच्छा लगता है।
2: मेरठ जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
3: शामली जिले में उर्वरकों की कालाबाजारी और तस्करी रोकने के लिए अब हर गाड़ी पर जीपीएस का पहरा रहेगा। केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के वाहन स्थान ट्रैकिंग सिस्टम VLTS के तहत बिना सुरक्षित ओटीपी के यूरिया की अनलोडिंग मुमकिन नहीं होगी। शामली में इस हाईटेक व्यवस्था का सफल ट्रायल कर इसकी शुरुआत कर दी गई है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत रैक पॉइंट से बफर गोदामों और सहकारी समितियों तक खाद ले जाने वाले सभी व्यावसायिक वाहनों में जीपीएस अनिवार्य कर दिया गया है। इसकी लाइव मॉनिटरिंग कंपनियों के मुख्यालय समेत जिला कृषि अधिकारी करेंगे। यदि कोई वाहन तय रूट से भटकता है तो तुरंत अलर्ट जनरेट हो जाएगा। हाल ही में KFL कंपनी की 1068 मीट्रिक टन यूरिया इसी तकनीक से सुरक्षित पहुंचाई गई। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया,
4: रैक पॉइंट से जाने वाले सभी ट्रक GPS OTP वेस्ट माध्यम से भेजे जा रहे हैं और जिस स्थान पर पहुंच रहे हैं उस स्थान पर OTP डालने के बाद ही उतरने की व्यवस्था कराई गई है तथा वाहन जो उर्वरक लेकर जा रहे हैं उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग कराई जा सके।
3: शामली जिले में मानसून की आहट के साथ ही जिले में खरीफ सीजन 2026-27 की तैयारियां तेज हो गई है। कृषि विभाग ने इस बार 22,000 हेक्टेयर में बुआई का लक्ष्य रखा है। इसमें अकेले 18,000 हेक्टेयर में धान की खेती की जाएगी। कृषि विभाग ने किसानों को राहत देते हुए प्रमाणित बीजों पर 50% तक का अनुदान और पात्रता के अनुसार निःशुल्क मिनी किट देने की घोषणा की है। इसके लिए विभागीय एग्री दर्शन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि सभी विकास खंडों के गोदामों पर धान, उड़द, मूंग और मोटे अनाजों का पर्याप्त स्टॉक पहुंचा दिया गया है। 15 जून से मुख्य बुआई शुरू होने की संभावना को देखते हुए किसान खेतों को तैयार करने और धान की पौध लगाने में जुट गए हैं। विभाग ने किसानों से जल्द बुकिंग कर योजना का लाभ उठाने की अपील की है। शामली जिले में यूरिया के अंधाधुंध प्रयोग से उपजाऊ

मिट्टी बंजर होने के कगार पर है, जिससे कैंसर और ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। गिरती सेहत और बिगड़ते पर्यावरण को बचाने के लिए सरकार ने जून माह में विशेष खेत बचाओ अभियान शुरू किया है, ताकि किसानों को जहर मुक्त और संतुलित खेती के प्रति जागरूक किया जा सके। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में खाद की किल्लत नहीं है, बल्कि अति प्रयोग समस्या है, जिसे सुधारने के लिए सरकार जहर मुक्त और जागरूक खेती पर जोर दे रही है। शामली में अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी के लिए सरकार 20,000 की आर्थिक सहायता देगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना का लाभ लेने के लिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के आवेदकों की वार्षिक आय 1,00,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार की अधिकतम 2 पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन

0: कल्याण अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि इस योजना में पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर लाभ दिया जाएगा। हालांकि पति की मृत्यु के बाद निराश्रित हुई महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को वरीयता दी जाएगी। योजना के तहत एक परिवार के अधिकतम दो पुत्रियों की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य होगा। बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि से 90 दिन पहले या 90 दिन बाद तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदक विभागीय वेबसाइट पर जाकर जन सेवा केंद्र, लोकवाणी केंद्र या निजी इंटरनेट के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी संबंधित उपजिलाधिकारी या खंड विकास अधिकारी कार्यालय में जमा करानी होगी। शामली जिले के उपभोक्ताओं और किसानों को जल्द ही लो वोल्टेज अघोषित कटौती से मुक्ति मिलेगी। ऊर्जा निगम ने क्षेत्र के 6 प्रमुख बिजली उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाने के लिए 12 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना के तहत टिटोली, बनत, जलालाबाद, थाना भवन टाउन, कमालपुर और देवी मंदिर कैराना विद्युत उपकेंद्रों का क्षमता विस्तार कर नवीन पावर ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। मुख्य अभियंता विनोद कुमार ने बताया, टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही धरातल पर काम शुरू होगा, जिससे गर्मियों में ओवरलोड और ट्रिपिंग से राहत मिलेगी। शामली जिले को वेस्ट यूपी का नया मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए योगी सरकार ने कांधला में मिनी उद्योग क्षेत्र की स्थापना के तहत 11 भूखंडों और एक सेट के आवंटन की इन नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। उद्योग निदेशालय की इस बड़ी पहल से जिले में भारी निवेश आएगा और बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कांधला बुढ़ाना मार्ग पर स्थित इस उद्योग क्षेत्र में भूखंडों को 99 वर्ष की लीज पर विनिर्माण इकाइयों को आवंटित किया जा रहा है। कांधला और कैराना के बीच बन रहा पीएसी कैंप उद्यमियों को मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। पारदर्शी ई ऑक्शन से होने वाला यह कास जिले के राजस्व और व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
2: जिले की हलचल में आज आपने सुनी मेरठ और शामली जिलों की हलचल। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशगान।

0: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अपने श्रोताओं को हम बता दें, NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।
1: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, प्रस्तुत है उर्दू प्रोग्राम।
4: तमीन आपका खैर मकदम है आज के उर्दू प्रोग्राम में। रामपुर रेडियो मरकज से आयशा राहत का आदाब। सामीन बज़्म, ये इस्लामी साल जो अब हमसे रुखसत होने वाला है और नए साल का आगाज है, यानी सबको पता है कि मुहर्रमुल हराम से ये नया साल शुरू होता है। ये साल नौ का वो मुतबर्रिक माह है जो अपने दामन में गम और रंजो अलम की दास्तानें समोए हुए है, जो जुल्म और सितम का बयान है जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। इसलिए कि ये माह हमें याद दिलाता है उस अजीम कुर्बानी की जो नवासे रसूल और जिगरगोशा अली बतूल सैयदना हुसैन इब्न अली और शोदाए करबला ने दी। ये जुर्रात, शुजात और तस्लीम और रजा और बातिल के सामने सीना सुपर होने का वो पैयाम है जिसकी अहमियत कभी कम ना होगी, बल्कि रहती दुनिया तक ये याद किया जाए। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया दीन हक के लिए और जाम शहादत नोश फरमाया। समीन, इस खास मौजू को ही आज हमने प्रोग्राम में शामिल किया है, हज़रत इमाम हुसैन और पैगाम इंसानियत। ये गुफ्तगु लेकर आज हम हाजिर हैं। इस गुफ्तगु में हमने मधु किया है अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानान को, जिनके अस्माए ग्रामी इस तरह हैं: जनाब मौलाना मोबीन हसन, जनाब सरबत हुसैन जैदी और मोहतरमा उम्मे अबीहा। आइए समाअत फरमाएं ये गुफ्तगू।
5: तारीख मिसाल ऐसी कोई ढूंढ के लाए, सर तन से जुदा भी हो मगर मौत ना आए। सोचूं जो मैं जरा सब्र रजा के कोई मानी, एक नाम हुसैन इब्ने अली जहन में आए। इमाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिसके लिए किसी कौम, किसी मजहब, किसी इंसान या किसी कबीले की बंदिश नहीं है। दुनिया में हजार हा जंगें हुई, होती रहेंगी और आगे भी रहेंगी, लेकिन इमाम हुसैन का नाम आज तक लोग याद करते हैं। उसकी बिना यही है कि इमाम हुसैन ने हक और इंसानियत के लिए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जहां वो चाहते तो यजीद की बैत करके अपने घर के लिए बेहतरीन और अच्छी जिंदगी जीते रहते, लेकिन उन्होंने उससे बढ़कर हजार हा तकलीफ सहकर, हद है कि 6 महीने के बच्चे से लेके और 70-72 साल के बुजुर्गों तक की कुर्बानी को देकर, करबला में भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करके वो पैगाम इंसानियत दिया है जिसकी मिसाल इस दुनिया में अभी तक कोई ना पाई गई है और ना आने वाले वक्त में पाई गई। इसके लिए अगर 4 लाइनें कहूँ तो यही है कि जुल्मत की शब को जिसने सवेरा बना दिया, सरवर ने जमीन

0: क्या क्या बना दिया, उस खाक को जो असर से पहले थी सिर्फ खाक, सजदा किया तो अर्श मौला बना दिया। इमाम हुसैन चाहते तो यजीद की बैत से अपने आप को इस तरह बचा कर ले जाते कि दुनिया में बड़े आराम से उनकी जिंदगी बेहतरीन आसाइश के साथ चलती रहती, लेकिन उन्होंने 1400 साल तक अपने नाम को इस कुर्बानी से इस तरह जिंदा रखा है और आज भी हम ही नहीं गैर कौम हिंदू धर्म यहाँ तक के अंग्रेजों तक ने उनकी इसके लिए तारीफ की है। हक के लिए जान देने की जो रस्म चली है, अगर उस रस्म का किसी को बानी माना जाए तो वो हुसैन इब्ने अली है। यहाँ मैं अपने साथी जनाब मौलाना मुबीन साहब से पूछना चाहूंगी इसके बारे में कि वो अपने कुछ मतलब अपने बयान हैं वो कुछ बताएं इस टॉपिक के बारे में और रोशनी डालें।
1: हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और पैगाम इंसानियत, यकीनन हजरत इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को वो इंसानियत, शराफत, अखलाक व किरदार का पैगाम दिया है कि न अभी तक कोई वो पैगाम दे सकता है और न किसी ने इतनी जुर्रत है। इसलिए कि आप अपने नाना रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीती जागती तस्वीर थे।
0: बेशक
1: जिस तरह आपने अपने अखलाक के, अपने किरदार के जरिए से इस्लाम पर आमादा किया लोगों को, और आपका जब पैगाम सुना तो आपके अखलाक की बुनियाद पर लोग आपके किरदार को अपनाने के लिए मजबूर हो गए। आपकी राहों में कांटे बिछाए जाते थे, आपको जुल्म सितम का सामना करना पड़ता था।
0: बिल्कुल,
1: हत्ता के एक औरत का मशहूर वाकया है कि आप पर वो कूड़ा डाला करती थी
0: जी,
1: और एक रोज जब नहीं आई तो आपने मालूम किया कि वो कहाँ है। बताया गया कि वो आज बीमार है, अलील है। कहा अच्छा, तो आप उसके दरवाजे पर गए और कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि तू बीमार है, इसलिए मैं तेरी अयादत करने के लिए आया हूं। और वो समझ रही थी कि आप मुझसे इंतकाम लेने आए हैं। आपने कहा कि नहीं, मेरे मजहब में है कि अगर कोई बीमार हो, अलील हो, तो उसकी अयादत करना चाहिए, उसकी मदद करना चाहिए। पर इतना सुनना था, वो ये सोचने पे मजबूर हो गई कि जब मैं इतना इन पे जुल्म सितम करती हूं तो ये इतने मेहरबान हैं, अगर मैं इनसे मोहब्बत करने लगूंगी तो ये मुझ पर कितने मेहरबान होंगे। इसी बुनियाद पर उसने कलमा पढ़ लिया और वो आपके ताबो फरमा बरदार हो गई। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं। इसी तरह हजरत इमाम हुसैन का किरदार बिल्कुल अपने नाना जैसा था कि आप जब मदीने से करबला की तरफ जा रहे थे, आपके पास बेपनाह पानी का इंतजाम था। यजीदी लश्कर जिसमें हुर सिपे सालार था, उसका 1000 का लश्कर था जो प्यासा था। आपने सब पूरे लश्कर को पानी पिलाया, हत्ता के उनके जानवरों को भी सिराब कर दिया, जबकि ये मालूम था कि हमें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। मगर इमाम हुसैन ने कहा कि हम प्यासे रहें तो रह जाएं, हमारे बच्चे प्यासे रहें तो रह सकते हैं, लेकिन हम किसी को प्यासा नहीं देख सकते हैं, हम दुश्मन की भी प्यास गवारा नहीं कर सकते हैं। और यही आपका हुस्न अखलाक था जिसको देखकर खुद हुर आपकी तरफ पलट आए और आपके कदमों पर सर रखकर बता दिया कि देखो, जो इस किरदार का मालिक होता है वो इस लायक है कि उसके कदमों पे अपने सर को रख दिया जाए। तो ये हजरत इमाम हुसैन का अखलाक और किरदार था। वही किरदार आपके बाबा मौलाए कायनात हजरत अली इब्ने अबी तालिब का था कि जब आपसे जंग हुई और दुश्मन ने पानी पे कब्जा कर लिया तो आपका लश्कर प्यास से जाबलब होने लगा, मगर जब हिम्मत की कोशिश की तो आपके लश्कर ने पानी पे कब्जा कर लिया। जो दुश्मन था वो परेशान है कि अब क्या होगा, हमें प्यासा रहना पड़ जाएगा। तो उनका जो सिपे सालार था उसने कहा कि देखो, अली एक शरीफ आदमी है, तुमने उनका पानी बंद कर दिया है, लेकिन ये तुम्हारा पानी बंद नहीं कर सकते, इसलिए कि ये शरीफ हैं, ये साहिब अखलाक व किरदार हैं। और वही

लोक रंग कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधि लोक गीत। अभी आपने सुना इनका गाया ये खेमटा, और लीजिए अब सुनिए गंगा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे विंध्यवासिनी त्रिपाठी का गाया ये गंगा गीत, और इसी के साथ अब आज का लोकरंग कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तरपत्रोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र, धड़कन देश की। सुबह के 10:01 हुए हैं। अब सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म कयामत से कयामत तक के एक गीत के साथ।

उम्मीद है पहला गीत आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, फिल्म संगीत में अब पेश है एक शानदार गीत जिसकी धुन और बोल दोनों ही दिल को सुकून देंगे। गदर फिल्म में उदित नारायण का गाया ये गीत आपके लिए।

दोस्तों इसे खूबसूरत नगमे के साथ आज के फिल्म संगीत कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आज के ये सुरीले नगमे आपके दिन को और खुशनुमा बना गए होंगे। इसी तरह जुड़े रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध और अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। G7 शिखर सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो हर साल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमरीका जैसे G7 सदस्य देशों के नेताओं के लिए आयोजित किया जाता है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द

0: व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दोनों देशों के बीच विश्वास, स्नेह और सहयोग का प्रतीक है और आने वाली पीढ़ियों को इस मित्रता को और मजबूत करने के लिए प्रेरित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण रही।
1: प्रधानमंत्री की ब्रातिस्लावा यात्रा के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जिनसे भारत और स्लोवाकिया के रिश्ते काफी मजबूत हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान कल 11 अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। उम्मीद है कि इन समझौतों से रक्षा, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, पर्यटन, क्वांटम कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के बीच बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने आतंकवाद से निपटने में सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह बनाने का भी फैसला किया। प्रधानमंत्री मोदी आज स्लावा से रवाना होंगे और G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस जाएंगे। स्लोवाक रिपब्लिक के ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम्पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। तरल प्राकृतिक गैस LNG ले जा रहा टैंकर दिशा ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जलमार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम इसका प्रबंधक है।
2: अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से यह होर्मुज जलडमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक जहाजों में से एक है। इस जहाज के 18 जून तक गुजरात के दहेज पत्तन पर पहुंचने की आशा है। अब तक भारतीय ध्वज वाले 10 और विदेशी ध्वज वाले 5 जहाज इस जलमार्ग को सुरक्षित रूप से पार कर चुके हैं। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय पोत परिवहन महानिदेशालय के माध्यम से इस क्षेत्र में कार्यरत भारतीय नाविक और जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विदेश मंत्रालय, विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों, जहाजरानी कंपनियों और अन्य हितधारकों के साथ लगातार संपर्क में है। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका और इसराइल के सैन्य हमले शुरू होने के बाद यह रणनीतिक जलमार्ग प्रभावी रूप से बंद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप ईरान ने जवाबी कार्रवाई की और क्षेत्रीय जलमार्ग बाधित हो गया। विश्व दर्पण के लिए मैं जया भारती।
0: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मोजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बमवर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग भी बदल दिया गया। दुर्घटना का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: फीफा विश्व कप में केप वर्डी की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डी के गोलकीपर वोजिना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में

0: सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। न्यूजीलैंड और ईरान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। स्वामी विवेकानंद एक प्रख्यात दार्शनिक और विचारक थे। उन्होंने विश्व में वेदांत और योग की शिक्षाओं का प्रसार किया। स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सभा में उनके ऐतिहासिक संबोधन के लिए जाना जाता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हुर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:20 हुए हैं और श्रोताओं समय है कार्यक्रम चित्रपट से का। कार्यक्रम में आइए आपको लिए चलते हैं नए तरानों की ओर और कार्यक्रम का आगाज करते हैं फिल्म लाल सिंह चड्ढा के एक खूबसूरत से गीत से। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की। संगीत प्रीतम ने दिया है और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

राघव और तनिष्क बागची का गाया गीत सुन रहे थे आप। फिल्म का नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। कार्यक्रम की अगली पेशकश अरिजीत सिंह और सचिन जिगर की आवाजों में। फिल्म का नाम जरा हटके जरा बचके।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से। इस गीत में आवाजें हैं अरिजीत सिंह, श्रेया घोषाल, शादाब फरीदी और अल्तमश फरीदी की। संगीत प्रीतम का और बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने।

कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिल है कि मानता नहीं से। इस गीत में आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की। बोल समीर ने लिखे हैं।

0: श्रोता मित्रों नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। पूर्वाह्न के 11 बज चुके हैं।
1: मुझे कुछ पहनू है।

जी हाँ, कुछ कहने सुनने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें। तो अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो करिए हमें फ़ोन इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 0522-223-8825। कार्यक्रम में आज आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त शिखा दुबे।

0: जी हाँ, कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में हमारे पहले कॉलर हैं दिनकर जी। आइए करते हैं उनसे बात और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो।
1: बहन सिका जी का होता है एक नपा तुला अंदाज
0: जी,
1: और फिर रेडियो में गूंजती है सिखा दीदी जी की खिताब जीतने वाली आवाज।
0: अच्छा।
1: और इस खिताबी आवाज से दिनकर सिंह जी रूबरू हो चुके हैं तो समर जाएंगे आज के सभी कामकाज, समर जाएंगे सभी कामकाज। और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि सिखा दीदी जी की ता उम्र गूंजती रहे रेडियो में ऐसी आवाज, ऐसी आवाज।
0: वाह वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनकर जी। अपना पूरा परिचय सबको दे दीजिए।
1: जिला बांदा चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से मैं दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ और अपने यहाँ आए हुए साधु का भी स्वागत कर रहा हूँ। उनको भेंट करा दिया 5 मिनट।
0: अच्छा, आपके यहाँ कोई साधु आए हुए हैं इस समय?
1: जी बिल्कुल, साधु जी आए हुए हैं, मुझे बुला रहे थे, मैंने कहा जरा भेंट करिए, आपका भी स्वागत है।
0: चलिए, उनका भी आप स्वागत करिए। तो जल्दी से उनको ज्यादा इंतजार मत कराइए, अपना गाना बता दीजिए।
1: ये है हमारी श्रीमती जी कल मायके चली गई हैं, कल मैंने उन्हें बहुत रोका लेकिन रूठी तो नहीं, प्रेम से गई है, तो गाना भी वही है, तुम मायके मत जइयो मेरी जान। और वो वहाँ मायके में सुन रही होंगी ये गीत।
0: जी जी, तो चलिए मायके तो, जाने दिया करिए दिनकर जी, कभी कभी चेंज के लिए बहुत जरूरी है ये।
1: जी हमने कहा चलो भाई अपना दिमाग थोड़ा चेंज कराओ, घूम फिराओ। और ये गीत भी यही है, मेरे जो है एक दो मित्र हैं, हमारे काका सोनी जी हैं, वो यहीं बहेरी से हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, उनके लिए। और प्रेम दास बाबा जी हैं, देवी शंकर शुक्ला जी हैं, और फूलचंद पाल जी हैं, विजय पांडे जी हैं, मांगी लाल चंदेल, बेटा सिंह, और सावस्ती से हिमांशु जी।
0: चलिए, तो आपकी पत्नी भी ये गाना सुन रही है, तो ये गाना सुन के हो सकता है वो आज ही वापस आ जाए। ठीक है, ठीक है दिनकर जी, आपको ये गाना हम सुनवाते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: जी।

0: इस गीत के माध्यम से दिनकर जी ने अपनी पत्नी तक ये बात पहुंचा दी कि मायके मत जाइयो, है ना। और अब देखते हैं हमारे साथ फूलचंद जी जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो शिखा जी, राधे राधे
0: जी। राधे राधे, कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए।
1: शिखा जी, मैं वीरों की भूमि बुंदेलखंड की धरती से, यानी महाराजा छत्रसाल की नगरी छतरपुर जिले के मनकारी गांव से मैं फूलचंद पाल बोल रहा हूँ
0: जी। बहुत स्वागत है, और आप क्या कहना चाहते हैं।
1: मैं बिल्कुल बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत तेज गर्मी है, अपना बचाव करें
0: जी जी,
1: और पानी खूब पिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी सलाह सबने सुन ली और इसका पालन सब लोग जरूर कर रहे होंगे, है ना।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए क्या है कि अभी जो है कुछ दिनों में जो है सीजन का, शादी का भी सीजन है, तो उसमें भी बहुत ख्याल रखें खाने पीने में जो है।
0: जी हाँ, खाने पीने में जरा से भी लापरवाही जो है हमें बीमारी की तरफ ले जाती
1: जी
0: है,
1: जी
0: है ना।
1: जी आपकी आवाज कट रही थोड़ी, आप साहब
0: अभी आवाज कट रही है, देखिए अब देखिए
1: हाँ सही है।
0: सही है ना। चलिए फूलचंद जी, गाना बता दीजिए कौन सा सुनना चाहते हैं।
1: बिल्कुल सखा जी, आपका कैसा है मौसम लखनऊ का।
0: हाँ यहाँ पे भी तो अभी गर्मी का सामना हम
1: बढ़िया
0: लोग
1: है।
0: कर रहे हैं।
1: बिल्कुल, फिल्म का नाम है कत्ल, और गीत के बोल है कि किसी का दिल तोड़ोगे, जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको माफ करेगा छोड़ेगा।
0: चलिए बहुत अच्छी लाइनें हैं ये तो।
1: और हमारे कुछ मित्र हैं सखा जी, आपको डेडिकेट रहेगा। प्रेमदास बाबा जी हैं, बेटा सिंह यादव जी हैं, जितेंद्र पाल, मनीराम पाल जी हैं।

0: लाल चंदेल जी हैं, और अभी अभी हमारे दिनकर सिंह जी का फोन लगा है, उनको भी डेडिकेट रहेगा। विजय कुमार पांडे जी हैं, राहुल कुमार, अमित तिवारी, और जो है सब लोगों को डेडिकेट रहेगा ये गीत।
1: चलिए।
0: और लोहिड़ी से हमारे यादव जी हैं, जयपाल यादव जी, उनको भी जो डेडिकेट रहेगा।
1: हाँ
0: कानपुर से पूनम सिंह,
1: फूलचंद जी, सीधे सीधे बोल दीजिए, जितने आपके दोस्त सुन रहे हैं सबको ये
0: जी,
1: डेडिकेट रहेगा गाना,
0: जितने
1: ठीक
0: श्रोता सुन
1: है?
0: रहे हैं, सभी माताएं बहनें,
1: जी
0: सभी को डेडिकेट
1: जी
0: रहेगा।
1: जी फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: किसी का दिल जो तोड़ेगा खुदा क्या उसको छोड़ेगा। बहुत ही अच्छी पंक्तियां हैं इस गाने की। और अब देखते हैं हमारे साथ कौन से श्रोता जुड़े हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: जी नमस्ते।
0: जी नमस्ते, आप कहीं बाहर हैं लग रहा है।
1: नहीं घर पे हूँ, थोड़ी तेज हवा चल रही है यहाँ पे।
0: अच्छा अच्छा हवा चल रही है, अरे वाह।
1: जी मैं ग्राम बछोड़ा तहसील नागदो जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: जी स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और बताइए।
1: जी थैंक यू सो मच। सीखा जी थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाइए, आवाज कम आ रही है।
0: हमने तो अपनी तरफ से पूरा वॉल्यूम बढ़ा रखा है।
1: हेलो,
0: हाँ आ रही है आवाज।
1: हाँ थोड़ी सी बड़ी है। मैं बताना चाहूंगा, मैं मोबाइल ऐप से कार्यक्रम सुन रहा हूँ आकाशवाणी लखनऊ के।
0: बहुत अच्छी बात।

0: श्रोता के रूप में हर बार कॉल भी लगाता हूँ और शामिल भी होते हैं, कॉल बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात ये आकाशवाणी लखनऊ की कि आप जैसा भी गाना पसंद करेंगे आपको गाना तुरंत सुनने को मिल जाएगा।
1: जी बिल्कुल, हमारी कोशिश यही रहती है कि आपकी पसंद के गाने हम आपको जरूर सुनवाएं, है ना। तो प्रेम सिंह ससोदिया जी बताइए कौन सा गाना आपको सुनवा दें।
0: बादल फिल्म का सुनवा दीजिएगा, जुगनी जुगनी वाला।
1: तो सुनवा दें।
0: और अभी आपको बताऊं शिखा जी, हमारे यहाँ पे खेतों में ट्रैक्टर चल रहे हैं और मतलब खेतों को समतल बनाकर तैयार किया जा रहा है सोयाबीन की फसल के लिए।
1: अरे वाह, बहुत अच्छा। तो इसमें तो भाई ट्रैक्टर से आप पूरे दिन जुताई करनी पड़ती है कि कैसे समतल करते हैं मतलब?
0: हाँ जी, गहरी जुताई जो होती है उसके बाद में खेतों को समतल कर दिया जाता है ना, तो सोयाबीन की फसल को एक कतार में लगाने में अच्छी सुविधा होती है और ज्यादा पैदावार होती है।
1: अच्छा, तो कितने दिन लग जाते हैं ये पैदावार
0: जी,
1: करने
0: समझ में आया मुझे।
1: कितना कितना समय लग जाता है सोयाबीन की फसल की
0: पैदा? पक के तैयार होने में 2.5 से 3 महीने लगते हैं। उसके बाद में सोयाबीन की फसल कटाई होने के बाद में यहाँ पर गेहूँ लहसुन और मटर की फसल लगाई जाती है।
1: चलिए बहुत अच्छा है, आप सोयाबीन की फसल आपकी बहुत अच्छी हो ऐसी हमारी कामना है। और आप जल्दी से बता दीजिए कि गाना आपको कौन सा सुनवा दें।
0: जी, बादल फिल्म का जुगनी जुगनी वाला सॉन्ग सुनना चाहेंगे।
1: चलिए तो सुनिए अपनी पसंद का ये जुगनी जुगनी गाना। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, और अब हमारे साथ हैं जम्मू कश्मीर से पंछी राम शर्मा जी। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो
1: जी, नमस्कार
0: जी, नमस्ते, क्या हाल हैं आपके?
1: पंछीराम शर्मा बोल रहा हूँ मैं, जम्मू कश्मीर जिला डोडा तहसील ठाठरी गांव कंठी से। बहुत अच्छे दीदी, आपकी दुआओं से।
0: ना चलिए, आप बहुत खूबसूरत जगह से बोल रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप बहुत अच्छे होंगे, ये हमें पूछना ही नहीं है।
1: बिल्कुल दीदी जी, आपकी दुआएं अच्छे हैं और भगवान की कृपा है, माता माँ भवानी की कृपा है
0: जी।
1: और मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे आकाशवाणी की जो परिवार है उन पर भी माता रानी की कृपा ऐसे ही बनी रहे।
0: बिल्कुल, आपकी दुआएं हैं और सब लोग खुश रहें, यही हम भी चाहते हैं। और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: दीदी आज मैं माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करते हुए माता की भेंट सुनूंगा क्रांति फिल्म से। तो मैं प्रियजनों को याद करूंगा, हमारे राकेश भैया जी है, हमारी पूनम दीदी जी है और पूर्ण वर्मा जी है, अंकल विजय पांडे जी है और बाकी सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और सुनने वालों से यही कहूंगा, कुछ लोग नाम चेंज करके कॉल लगाते हैं तो उनसे यही कहूंगा कि भाई प्रोग्राम प्यार से सुनो और बहुत अच्छे से डबल कॉल नहीं लगाने चाहिए।
0: जी जी, सबको मौका मिलना चाहिए जी, सबको मौका मिलना चाहिए, है ना, सभी लोग चाहते हैं बात करना।
1: मैं तो अपनी ओर से सभी को मौका देता हूँ, जैसे आज मेरा मंगलवार को फोन लगा है तो मेरा कॉल मैं अगले मंगलवार को ही ट्राई करूंगा, क्योंकि मेरे बहन भाई जो है उनको भी मौका मिले, मैं ऐसे ही ऐसा प्रयास करता हूँ।
0: तो पंछीराम जी, जो आपके अपने जो दोस्त हैं जो आपके साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हो, तो कभी कभी उनसे भी बात करा दिया करिए अगर आपका फोन लग जाता है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बहन भाई जो पुष्कर नाथ जी है, रिंकू देवी जी है, वो भी आपका प्रोग्राम सुन रहे हैं और जरूरी उनसे उनसे भी जरूर आपका आपकी बात होगी।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, हाँ अगले प्रोग्राम में। तो चलिए आपको आपकी पसंद का ये गीत हम सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

और अब हमारे साथ जुड़े हैं राजू जी, और उन्होंने कहा कि वह बहुत लंबे समय से कार्यक्रम सुन रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन नहीं लगता था, आज उनका फ़ोन लग गया है, तो करते हैं उनसे बात। हेलो हेलो हेलो, लीजिए राजू जी, आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आपने लग रहा है कॉल डिस्कनेक्ट कर दी है। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी पसंद का गाना आपको सुनवा दे रहे हैं। हीर रांझा फिल्म का गाना आपने सुनना चाहा है, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: उन्हें तुम बुलाते रहो, कभी तो दूर होगा अंधेरा, कभी तो दूर होगा अंधेरा, ऐसी उम्मीद तुम लगाते रहो, मिट जाएंगे सारे फासले, मिट जाएंगे सारे गम, इन आंखों में तुम बस ऐसे सपने सजाते रहो। गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी पंक्तियाँ आपने बोली, आपने खुद लिखी हैं?
0: जी हाँ, मैंने खुद लिखी है मैम।
1: वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, और उतने अच्छे अंदाज से आपने पढ़ा भी है ना
0: जी मैम। थैंक यू सो मच। और मुझे शेरो शायरी करना बहुत अच्छा लगता है।
1: नहीं, वो हम समझ गए, आपके जो अंदाज है आपका बोलने का, और उससे ही समझ में आ गया कि आप बहुत शौकीन हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल मैम। और जब रेडियो पर कॉल लगता है ना, तो सच में ऐसा लगता है ना कि मुझे सच में जन्नत मिल गई है, और आप सभी से बातें करके एक मतलब चेहरे पर एक नई खुशी आ जाती है, एनर्जी भी आती है और खुशी भी आती है।
1: जी, आपके चेहरे का नूर ऐसे ही बना रहे। पूनम जी बताइए, कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
0: मैम गीत तो मुझे जरूर से सुनाइएगा, और पहले बताइए आप कैसी हैं।
1: हम तो बहुत अच्छे हैं, और आपसे बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके चेहरे पे भी नूर छलक रहा है, मेरे भी।
0: जी हाँ, बस मैम बस बीच में ये है प्रॉब्लम कि गर्मी परेशान कर रही है ना, बाकी तो सब अच्छा है
1: जी। ये और सब तो चलता ही रहेगा, गर्मी सर्दी बरसात सब मौसम हम लोग को झेलने ही रहते हैं, और कभी हम उसका आनंद भी उठाते हैं, सभी कुछ जरूरी है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो बिल्कुल आपने सही कहा है। चलिए अब मैं ज्यादा समय न लेते हुए गाना बता देती हूँ आपको। फिल्म का नाम मेरे जीवन साथी, गीत के बोल हैं, देखिए इस कदर हमको तुमसे प्यार है, ये गीत सुनाना चाहती हूँ पहले आपको। मेरी दोस्त पिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, अनु पांडे जी हैं, और समा परवीन जी हैं, भगवान सिंह जी हैं, अविनाश जी हैं, और साचा राम बाबू शर्मा जी हैं, फुलचंद पाल जी हैं, जयपाल भाई हैं, राजू भाई हैं, राजेंद्र गंगवार जी हैं, और जितने सुन रहे हैं सभी श्रोताओं को और सभी को सुनाना चाहती हूँ।
1: चलिए, आपने सबको डेडिकेट कर दिया, मेरी तरफ से अभी मैं आपको थैंक्स बोल दे रही हूँ, और आनंद लेते हैं हम सब मिलकर इस गाने का। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं, हमें क्या हो गया है। राजू जी के साथ आज कुछ ऐसा ही हो गया कि बड़े लंबे समय से वो हमें फ़ोन मिलाने की कोशिश करते रहे और आज उनका फ़ोन लगा लेकिन बात नहीं हो पाई। चलिए राजू जी, कोई बात नहीं, अगली बार फिर कोशिश करिएगा, हो सकता है आपसे बात हो जाए। और इस समय हमारे साथ हैं कानपुर से पूनम जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: बाहरे आएंगी उन्हें तुम बुलाते रहो, बाहरे आएंगी

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। और एक बार फिर से हम अपना नंबर बता दे रहे हैं, हमारा नंबर है 0522-223-8825। और कार्यक्रम में आज हमारे साथ एक बिल्कुल नई श्रोता जुड़ी हैं, स्वाति जी। आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: जहाँ हर कॉल बनती है एक कहानी, हर कहानी बनता है एक एहसास, हर एहसास बनता है एक रिश्ता, और हर रिश्ता बनता है एक विश्वास। ऐसे ही हम सभी देश भर के श्रोताओं का अटूट रिश्ता बना रहे आकाशवाणी लखनऊ के साथ। मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छी बात है आपका।
1: मैं आपके चैनल की नई श्रोता बात कर रही हूँ, ताती सिंह, अहमदपुर मनकापुर जिला गोंडा से।
0: चलिए, हमें बहुत खुशी हो रही है कि आपने कॉल लगाई और आपकी कॉल लग गई।
1: मैम काफी प्रयास के बाद आज जाके सफलता मिली हमको।
0: बहुत अच्छी बात है। काफी दिनों से आप कोशिश कर रही थी क्या?
1: जी मैम, बहुत दिन तो नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल कोशिश तो कर ही रहे थे। जल्दी से कॉल।
0: चलिए, और बताइए स्वाति, करती क्या है आप?
1: मैम पढ़ाई पूरी कर चुके हैं, घर पे रहते हैं और साथ में आईटीआई भी कर रहे हैं।
0: अरे वाह।
1: और रेडियो सुनने का ज्यादा शौक है, रेडियो सुनते हैं मैम
0: जी। रेडियो से बहुत सारी जानकारी भी आपको मिलती रहती है ना? और मनोरंजन
1: से तो हमको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहती है। और कुछ प्रोग्राम आपके यहाँ से इतने अच्छे अच्छे किए जाते हैं, लेके आते हैं कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए, हमें बहुत खुशी हुई ये बात जानकर। और स्वाति, ये बताइए गाना कौन सा सुनना चाहती हैं?
1: मैम गाना हमको मेहरबान पिक्चर का सुनवा दीजिए। गाने के बोल है, अगर आज

0: सितारे सजाते, ये गाना मैं सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहती हूँ
1: थैंक
0: और अपने
1: यू.
0: आकाशवाणी अयोध्या के सीनियर अनाउंसर अमर जीत सर को और दीपिका मैम को और अपने मम्मी पापा को मैम और अपने दीदी खुशबू सिंह को, ज्योति सिंह को और अपने दोनों भाई को और सभी श्रोताओं को डेडिकेट है.
1: जी स्वाति जी, आप जीवन में खूब उन्नति करें, आगे बढ़ें, आसमां तक आपके हाथ पहुंचे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं. और आपकी पसंद का अब गाना हम आपको सुनवा दे रहे हैं.
0: मैम, हमारे तरफ से भी श्रोताओं को और सभी अनाउंसर को शुभकामनाएं हैं. मैम, बहुत खुशी हुई हमको, आज मेरा इंतजार खत्म हो गया.
1: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. आप सुनिए अपनी पसंद का. नमस्ते.

0: और अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं विजय पांडे जी, और वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं, आइए हम सब जान लेते हैं। हेलो।
1: जिंदगी क्या है जिसकी चाह नहीं है, वो मंजिल ही कैसी है जिसकी राह नहीं है। आदरणीय शिखा दुबे साहिबा को विजय पांडे का प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्ते जी, बताएं। हेलो
1: जी, मैं कहना चाहूंगा कि नसीहत एक ऐसी चीज है जिसकी अक्लमंद को जरूरत नहीं और बेवकूफ लोग उसे कबूल नहीं करते। मैं कहना चाहता हूँ, हेलो।
0: हाँ हाँ जी, हम सुन रहे हैं आपकी बात।
1: सर, मैं देख रहा हूँ कि आज की युवा पीढ़ी बुजुर्गों की बातों को दरकिनार कर देते हैं, ये बुजुर्गों को ही नसीहत देने की कोशिश करते रहते हैं। कहीं बेटा अपने बाप को नसीहत दे रहा है तो विद्यार्थी अपने शिक्षक को नसीहत देता है, तो कभी हम श्रोता उद्घोषक को नसीहत दे रहे हैं। हम श्रोता अपने दोस्तों यानी मित्रों को नसीहत नहीं दे पा रहे हैं कि रोज रोज कॉल मत करो, किसी और को मौका दो ताकि उनकी आवाज भी सुन सके। तमाम ऐसे श्रोता हैं जिनका कॉल 2 सालों तक नहीं लग रहा है, और इसलिए कि उनको लगाने की ट्रिक मालूम नहीं है। अगर उद्घोषक कहे कि 2 नाम ले लो तो 2 जगह पर 8 नाम 10 नाम लेते रहते हैं, ये वही बातें दोहराते रहते हैं। दीदी आप आती है तो बहुत अच्छा लगता है, मेरा लखनऊ से बहुत लगाव हो गया है, मैं भजन गाता रहता हूँ, वही कलमा बार बार दोहराते रहना, 20-20 जगह काल करते रहना, वही मंत्रों का जाप करते रहना, ये कहाँ की समझदारी है
0: जी। विजय पांडे
1: सर, माननी चाहिए कि मुझे जो सुन रहे हैं क्या वो सब खुश हो रहे हैं, लेकिन उद्घोषक बार बार कहते रहते हैं कि दूसरों का भी ख्याल रखिए ताकि अपनी बात वो भी कह सके, लेकिन हम बेशर्म हो जा रहे हैं। दूसरों को ख्याल रखना तो दूर, हम कभी मौका नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हम टीआरपी से वंचित रह जाएंगे, ये हमारी सोच बन चुकी है।
0: विजय पांडे जी,
1: कोई बात नहीं, हमको तो अपनी काबिलियत दिखानी है।
0: विजय पांडे जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि बुजुर्गों की बात को का सम्मान करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी सलाह माननी चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो सलाह है हमारे बाकी श्रोताओं ने सुनी है और उसको ज़रूर अमल में लाएंगे। अब क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप अपना गाना बता दीजिए। हेलो
1: जी, गाने के बोल हैं, याद नहीं आ रहा। प्यासा सावन
0: फिल्म का, 13 साथ है तो मुझे क्या कमी है, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, बहुत अच्छी बात आपने कही और फ़ोन करने के लिए बहुत

0: अभी हमारी विजय पांडे जी से बात हुई और उन्होंने बहुत अच्छी सलाह हमारे सभी श्रोताओं के लिए दी, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी उनकी बात का मान रखेंगे। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं बुंदेलखंड से राजीव जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो।
1: हेलो बहना जी, प्रणाम, नमस्कार।
0: प्रणाम, नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहना जी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, व्यस्त हूँ, स्वस्थ हूँ, बिंदास हूँ और इस समय बगीचे में बैठा हुआ रेडियो आकाशवाणी लखनऊ का भरपूर आनंद ले रहा हूँ।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप आनंद उठा रहे हैं, बगीचे में बैठे हुए हैं, तो और बताइए, कुछ कहना चाहते हैं?
1: कहने के लिए तो बहुत कुछ है बहना जी। मैं अपना पूरा नाम बताता हूँ, मैं राजू यादव, ग्राम उपरहका श्रीरामपुर डेरा सरीला राठ मुस्करा हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश।
0: वाह वाह वाह वाह, तो बताइए कि कौन सा गाना सुनवा दें आपको?
1: हाँसी मूवी का है, जब आती होगी याद मेरी, दिल तेरा मचलता होगा जब आती होगी।
0: चलिए, आपकी याद जिसको भी आ रही होगी वो ये गाना सुन के बहुत खुश होगा। चलिए, आपको गाना सुनवा दे राजीव जी। हाँ राजीव जी, गाना सुनवा दे आपको
1: जी। मित्रों को याद करेंगे।
0: अब आप देखिए, इससे पहले विजय पांडे जी से हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने इसी बात की शिकायत करी थी,
1: तो हमारे मित्र से बात कर लीजिए। मित्र से बात कर लीजिए। हेलो
0: हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: नमस्ते,
0: कौन? हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं आप?
2: दीदी, मैं छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से सतीश रघुवंशी बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, और आपके जो मित्र हैं उन्होंने जो गाना बताया है वही आपकी भी पसंद का होगा, तो आप लोग को गाना सुनवा देते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: और अब हमारे साथ जुड़े हैं अजीत पाल जी, आइए करते हैं उनसे बात। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, क्या हाल हैं आपके?
1: बढ़िया है मैम।
0: हाँ, अपना पूरा पता बता दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: मैम मैं कड़सर फुटोर से अजीत खान बोल रहा हूँ, जिला बहराइच से।
0: जी, बहुत अच्छा लग रहा है प्रोग्राम सुनते हुए।
1: हाँ मैम, बहुत अच्छा लग रहा है।
0: बहुत अच्छा लग रहा है। कितने दिन बाद आपका कॉल लगी है?
1: मैम मैं कोशिश तो बहुत दिनों से कर रहा हूँ, लेकिन मैम आपसे आज बात हुई आप।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम गाने के बोल हैं, फिल्म का नाम है नील कमल, गाने के बोल हैं आज तुझको पुकारे मेरा प्यार।
0: चलिए तो सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गाना।
1: जी मैम, मैं उनको कुछ मित्रों को याद करना चाहता हूँ।
0: आप लोग के कुछ मित्र बहुत ज्यादा हो जाते हैं, एक या दो नाम ले लीजिए।
1: ज्यादा नहीं याद करूंगा।
0: हाँ जी,
1: कानपुर से पूनम दीदी, शबनम अब्बासी, साहिबान सारी, श्यामा परवीन, भगवान सिंह बर्मान जी, पूरन धर्मा जी, इनको गाना दीदी कर रहे थे।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप सभी आनंद उठाइए इस गीत का। फ़ोन करने के लिए शुक्रिया। नमस्ते।

0: और कार्यक्रम में हमारे अंतिम कॉलर हैं आगरा से नरेंद्र जी। हेलो
1: आवाज बहुत कम आ रही है मैडम आपकी।
0: जी, आवाज़ पूरी आ रही है? आपके यहाँ से बहुत शोर था है ना पहले?
1: जी
0: अब
1: जी जी
0: हाँ, तो इस वजह से आपको आवाज़ साफ नहीं मिल रही होगी। हाँ नरेंद्र जी, जल्दी से बताइए कौन सी पिक्चर का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी मुझे को सुनना है उसका, राम अवतार फिल्म का,
0: राम अवतार फिल्म का, तो सुनवा देते हैं
1: तेरी
0: आपको।
1: तेरी बेवफाई का।
0: जी, फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें समाप्त करने की अपनी रेडियो दोस्त शिखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी सुन सकते हैं। और आइए अब सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
2: जी अजीत जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
3: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओं, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें तो, प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50

0: किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब, तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं, जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुमदी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा, कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है, और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है, तो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओं, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यह लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरण की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरण कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरण भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरण यही मिलता है, और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुमगी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IVRS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों,
1: आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ, यानी आखिरी पत्ता।
2: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
1: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे,
2: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं, और वो भी वहां के सौंदर्य को

0: अपने कैनवस पर उतारना चाहती थी। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
1: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
0: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
1: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
0: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
1: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
0: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
1: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
0: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?
5: 11, 10, 9 ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
5: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
1: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉन्सी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
5: 6, 9, 6, 5, 4 ओह
2: जॉन्सी, जॉन्सी तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है, तुम क्या गिन रही हो?

0: उधर नहीं, उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉन्सी।
1: Only four.
0: मेरी तरफ देखो।
1: Sue, only four. Oh, अब सिर्फ तीन बचे हैं।
0: क्या तीन बचे हैं? What's three, dear?
1: तीन पत्तियां।
0: पत्तियां?
1: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
0: हाँ, हाँ।
1: मैं उसकी पत्तियां गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
0: क्या लगता है?
1: यही कि बस अब तीन पत्तियां बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
0: क्या जॉन्सी?
1: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉन्सी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
1: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
0: हाँ
1: सू, अब सिर्फ तीन पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
0: ओ जॉन्सी।
2: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉन्सी मानने को तैयार नहीं थी।
3: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉन्सी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
2: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
3: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
4: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
2: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुढ़ा आ रहा है। जब वो जॉन्सी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
3: इतने में जॉन्सी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
1: ओह, अब सिर्फ दो पत्तियां ही बची हैं।
2: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
4: जॉन्सी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना देखना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
2: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
3: अब मात्र दो पत्तियां ही बची थीं। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉन्सी ने देखा अब सिर्फ एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: ओह, आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही।

0: आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बेयरमैन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बेयरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस।
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी

0: हाँ, असली पत्ता नहीं है।
1: नहीं,
0: लेकिन सू कितना असली लग रहा है।
1: हाँ जॉन्सी, बिल्कुल असली है ना मास्टरपीस।
0: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू उन्होंने बना दिया।
1: हाँ जॉन्सी,
0: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
1: हाँ, उन्होंने बना दिया।
0: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
1: हाँ
0: मास्टरपीस।
1: हाँ
0: मास्टरपीस, वो आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
2: डबडबाई आंखों से जॉन्सी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
3: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे, और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉन्सी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हों।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना को शेयर न करें। सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से अब आप सुनेंगे दिल की आवाज बने नगमों को, कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के नगमे। हेमंत कुमार मुखोपाध्याय यानी हेमंदा का जन्म आज ही के दिन 16 जून 1920 को वाराणसी में हुआ था। उनके जन्मदिन के अवसर पर आइए सुनते हैं उनके कुछ गीत। कार्यक्रम का आरंभ करते हैं बात एक रात की फिल्म के इस गीत से, जिसे गाया है हेमंत कुमार ने। संगीत एस

अभी आप सुन रहे थे सुमन कल्याणपुर और हेमंत कुमार की आवाज़ में फिल्म बात एक रात की का ये गीत। और अब जो गीत हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म पतिता से। आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की, संगीत शंकर जयकिशन का, बोल हसरत जयपुरी के।

हेमंत दा के बारे में कहा जाता है कि बांग्ला फिल्मों में उनसे बड़ा कोई गायक और संगीतकार नहीं हुआ। बांग्ला भाषी होते हुए भी उनकी हिंदी पर पकड़ कमाल की थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं कोहरा फिल्म का गीत हेमंत कुमार की आवाज़ में। संगीत हेमंत कुमार का, बोल कैफी आज़मी के।

0: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तक प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
2: बात सेहत की हो या हुनर को तराशने की, खोजने हो प्रगति की पर, या करना हो अपना उद्यम, सरोकार है उन सब से जिससे निखरे आपकी पहचान और मिले आपको एक नई उड़ान। नई उड़ान सुनिए हर शाम 5:45 से मीडियम वेव 747 kHz आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: सदाभर नगमे कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार हेमंत कुमार के गाए कुछ नगमे। कार्यक्रम में अब हम आपको सुना रहे हैं सट्टा बाजार फिल्म का गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीतकार हैं गुलशन बावरा, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

अभी आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज़ में शर्त फिल्म का गीत। इस गीत का संगीत भी हेमंत दा ने दिया और बोल थे SH बिहारी के। अब जो गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है 20 साल बाद इस फिल्म से। आवाज़ है हेमंत कुमार की, संगीत भी हेमंत कुमार का, बोल शकील बदायूनी के।

हम सबको अपने सुरीले गीतों से बेकरार करके हेमंता इस दुनिया से 26 सितंबर 1989 को चले गए, पर आज भी वो अपने संगीत के माध्यम से हमारे दिलों में हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अनारकली फिल्म का ये खूबसूरत सा गीत हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, संगीत सी रामचंद्रन का।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज आपने सुने संगीतकार और गायक हेमंत दा के कुछ नगमे और अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 1 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों पक्षों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस बीच श्री मोदी फ्रांस के लिए रवाना हो गए हैं। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। उधर फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर भी रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि यह प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। इकाई ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। गुड्डू खान निवासी ग्राम फटकन

नवाबगंज, ज़िला बहराइच ने सूचित किया है कि आशिया दिनांक 30 अप्रैल 2026 से लापता हैं। आशिया की आयु 18 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा शरीर है। गुमशुदगी के समय इन्होंने हरे रंग का सलवार कुर्ता व लाल रंग की जूती पहन रखी थी। गुड्डी पत्नी स्वर्गीय प्यारेलाल निवासी नई बस्ती नीलमथा थाना कैंट जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि उनकी पुत्री अल्पना कुमारी दिनांक 18 मई 2026 से लापता हैं। अल्पना कुमारी की आयु 23 वर्ष, कद 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ, इकहरा शरीर और चेहरा गोल है। इन्होंने लाल कुर्ता, सफ़ेद लेगिंग और गुलाबी रंग की चप्पल पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 8604365550। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 8604365550। फरजाना कुरैशी निवासी 203 के बटे 90 बासमंडी 42 नबीउल्लाह रोड थाना वजीरगंज जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि उनके पति अब्दुल्ला कुरैशी दिनांक 1 मई 2026 से लापता हैं। अब्दुल्ला कुरैशी की आयु 26 वर्ष, कद 5 फीट 2 इंच, रंग काला, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है। ये सफ़ेद कुर्ता पायजामा पहने हुए थे। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 9170080378। इब्राहिम खान निवासी बाजनगर थाना दुबग्गा जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि इकरा महफूज दिनांक 11 मई 2026 से लापता हैं। इकरा की आयु 30 वर्ष, कद 157 सेंटीमीटर, रंग साफ व काले लंबे बाल हैं। इन्होंने लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 7844921131। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 7844921131। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।

आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। गौतम बुद्ध नगर ज़िले के नोएडा बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे से कल कॉमर्शियल परवाज़ें शुरू हो गईं। शहरी हवाबाजी के वज़ीर

0: किंजारपू राम मोहन नायडू ने इफ्तिताही तकरीब में कहा कि यह हवाई अड्डा पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विज़न का नतीजा है। इस दरमियान हवाई अड्डे के लिए अपनी ज़मीन देने वाले 170 किसान कल मकामी MLA धीरेंद्र सिंह के साथ लखनऊ पहुँचे और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। किसानों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत किसानों के मुनासिब हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है।
1: हम आपको आपका हक देंगे, लेकिन वह बीच में किसी व्यक्ति को नहीं रखना है। आप रहेंगे, मैं रहूंगा, और आप जो सोचते होंगे उससे अच्छा दाम आपको मिल जाएगा। और हम लोगों ने वही वहां पर करने का कार्य किया है, और मुझे प्रसन्नता है आज आपके कारण वह क्षेत्र बदल रहा है। आपकी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनने जा रहा है, बदलने जा रहा है। आपने सचमुच इतिहास रचा है।
0: वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में मुनक्किदा डिजिटल डेमोक्रेसी डायलॉग त्रिवेणी में शिरकत की। इस मौके पर सोशल मीडिया तख्लीककारों के साथ बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की मईशत बनाना एक विज़न है और हुकूमत की मुल्क के तई एक जिम्मेदारी है, जिसे समाज के तमाम तबकात को शामिल करके एक अवामी तहरीक बनाकर ही कामयाब बनाया जा सकता है। 10 से ज़्यादा रियासतों के 100 से ज़्यादा डिजिटल असर व रसूख रखने वाले तख्लीककारों ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की दूरंदेश क़यादत में हिंदुस्तान ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों पर मबनी गुज़िश्ता 12 सालों में नुमाया तरक्की की है। इस मौके की मुनासबत से ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ एक खसूसी सीरीज़ पेश कर रहा है, जिसका उनवान है 12 साल के एतमाद, तरक्की और लोगों के लिए फलाह बहबूद। आज हम दहशतगर्दी से निमटने के लिए हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बात करेंगे।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार।
0: आयुष की वजारत ने कल नई दिल्ली में 12वें बैनुल अक्वामी योगा डे की शानदार तकरीब के लिए रस्मी तकरीबात का आगाज किया। आयुष के वजीर प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में नामानिगारों को बताया कि इस साल योगा डे की अहम तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड पर मुनक्किद होगी। उन्होंने बताया कि इस मौके पर 45 मिनट का योगा प्रोटोकॉल मुनक्किद किया जाएगा। दरियां असना बैनुल अक्वामी योगा डे के मौके पर 21 जून तक चलने वाले योगा हफ्ते के तहत रियासत के तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। योगा हफ्ता रियासत के दारुल हुकूमत लखनऊ, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, अमरोहा, मिर्ज़ापुर और बिजनौर समेत मुख्तलिफ अज़ला में शुरू हुआ, जिसमें अवामी नुमाइंदों, इंतजामी और पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और समाजी कारकुन प्रोटोकॉल के मुताबिक योगा कर रहे हैं। वाराणसी में इस मौके पर खिताब करते हुए आयुष के वजीर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की क़यादत में रियासत में योगा, आयुष और सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी को फ़रोग देने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2023 के तहत नई सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन स्कीम नाफिज करने वाली मुल्क की पहली रियासत बन गई है। 14 जून को वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में इसका आगाज़ किया। गोरखपुर के ज़िला प्रोग्राम अफसर अभिनव मिश्रा ने बताया कि इस स्कीम के तहत 7 किस्म के मुस्तफिदीन को 10 किस्म की रेसिपी दस्तियाब कराई जाएंगी। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में अतियात और कीमती अशिया के गबन के इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए तशकील दी गई खसूसी तफ्तीशी टीम SIT ने कल अपनी तहकीकात शुरू कर दी। SIT की क़यादत लखनऊ के डिवीज़नल कमिश्नर विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस और महकमा ख़जाना के खसूसी सेक्रेटरी नील रतन इसके मेम्बर हैं। हमारे नामानिगार ने इतला दी कि SIT ने तमाम मेम्बरान कल अयोध्या पहुंचे और अपनी जांच शुरू की। उन्होंने कमिश्नर और अयोध्या के ज़िला मजिस्ट्रेट के साथ मंदिर अहाते का दौरा किया। SIT को 7 दिन के अंदर इब्तदाई रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर हतमी रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी गई है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: जहाँ हर सपने में छिपी होती है एक कहानी, वहीं परिवार बनता है हमारी सबसे बड़ी निशानी। स्वागत है आप सभी श्रोता सखियों का कार्यक्रम अपराजिता में,
1: जहाँ हम हर रिश्ते की ताकत और सपने की उड़ान को साथ मिलकर जीते हैं। और आज के सफर को आगे बढ़ाने के लिए हाजिर हैं हम, यानी मैं साधना
0: और मैं स्नेहिल।
1: सखियों नमस्कार। स्नेहिल, अक्सर हम अपने परिवार की कहानियों में कुछ छिपी हुई ताकत देखते हैं, है ना?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हर एक परिवार का एक अलग सफर होता है। कुछ पास रहते हैं तो कुछ हजार मील दूर, लेकिन जुड़ाव वही बना रहता है।
0: हाँ बिल्कुल, और कई बार हम इन कहानियों में खुद को भी देखते हैं। जैसे हमारे आसपास बहुत से लोग हैं जो अपने परिवार के लिए दूर जाकर काम करते हैं, बिना ये बताए कि उनका दिल वहीं धड़कता है।
1: बिल्कुल स्नेहिल, मुझे याद है जब हम छोटे थे, हमारी दादी हमेशा कहती थी, दूर जाने वाले एक दिन वापस लौटते हैं और उनके सपने भी हमारे सपनों से जुड़े होते हैं।
0: और तुमने भी देखा होगा ना कि आजकल कई परिवार ऐसे होते हैं जो रोज काम करके, रात दिन मेहनत करके अपने बच्चों के भविष्य का सपना देखते हैं।
1: हाँ, मेरी भी एक दोस्त है जो कि यूके में रहती है, और उसने मुझे बताया कि कैसे वो वहाँ रहती है और किस तरह से नौकरी करके हर महीने कुछ पैसे अपने घर भेजती है ताकि उसके छोटे भाई की पढ़ाई हो सके।
0: बिल्कुल साधना, और यही वो सच है जो हम सभी ने कहीं ना कहीं महसूस किया है कि कुछ लोग अपने परिवार से दूर रहकर भी हर दिन उनकी ख्वाहिशें पूरी करने में लगे रहते हैं।
1: हाँ, और परिवार के इसी जुड़ाव को याद करते हुए हम आज यानी 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस भी मनाते हैं।
0: बिल्कुल, और ये दिन हमें याद दिलाता है कि जो छोटी छोटी रकम होती है ना जो हम अपने घर पे भेजते हैं, उनका कितना बड़ा असर हमारे परिवार की उन्नति पर पड़ता है।
1: हाँ, और मुझे याद है कि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि सिर्फ पिछले साल ही विश्व भर में $540 बिलियन से ज़्यादा परिवार प्रेषण के रूप में भेजे गए थे।
0: और ये पैसे केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हर उस बच्चे की किताबों में, हर उस सपने में निवेश हैं जो एक परिवार अपने बच्चों के लिए देखता है।
1: और इसलिए हम अपने घर वालों से दूर होते हुए भी उनके लिए कुछ भेजते हैं तो वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि प्यार और उम्मीद का एक पुल बन जाता है।
0: और यही तो इस दिन का सार है, जो इसी से हमें समझ में आता है कि कैसे हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव का हिस्सा बनता है।
1: और जब हम सपने पूरे करने जाते हैं तो वो सिर्फ हमारे नहीं बल्कि हमारे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी होते हैं।
0: और इसी जुड़ाव की ताकत हमें याद रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं तो हम रिश्तों की एक ऐसी डोर बनाते हैं जो हमें कभी अलग नहीं होने देती।

0: से जन कल्याण।
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: तो सखियों, जैसा हमने कहा कि कुछ रिश्ते समय की धारा में बहते हुए कभी खत्म नहीं होते, बल्कि एक रोशनी की तरह हमेशा जगमगाते रहते हैं, और इन्हीं खुशियों की रोशनी पर आधारित है हमारी आज की गीतों भरी कहानी, जिसका शीर्षक है खुशियों का सूरज।
4: और ये कहानी हमें दिखाती है कि

0: से हर कठिन घड़ी में हमारे भीतर एक खुशियों का सूरज जगता है, तो हमें भी आगे बढ़ने की ताकत तो देता ही है और हमें इस खुशी को महसूस करने का भी एक मौका मिलता है। तो इसी खुशी और रोशनी के साथ आज की गीतों भरी कहानी खुशियों का सूरज प्रस्तुत कर रही हैं हमारे साथी रंजना त्रिवेदी। तो आइए सुनते हैं।
1: हमें अक्सर यही चाहत होती है कि लग्जरी गाड़ियों में घूमें, शहर के सबसे पॉश लोकेशन में हमारा घर हो और सक्सेस हमारे कदम चूमे। मेरा और आर्यन का भी यही सपना था, लेकिन जब भी मैं उस बड़े से घर की कांच की खिड़कियों से रात को शहर की रोशनी देखती तो मुझे सिर्फ अपना अकेलापन दिखाई देता था। आर्यन का घर आना ना आने के बराबर था, और अगर घर पर कभी रुक भी जाता तो दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स और स्टॉक मार्केट में बिजी रहता। हम साथ रह तो रहे थे पर साथ ये नहीं।

का घर आना ना आने के बराबर था, और अगर घर पर कभी रुक भी जाता तो दिन भर मीटिंग्स, ईमेल्स और स्टॉक मार्केट में बिजी रहता। हम साथ रह तो रहे थे पर साथ ये नहीं।

उस रात आर्यन ने मेरे हाथ से बनी कॉफी को बिना पिए ही ठंडी है कहकर छोड़ दिया, तो मुझे कॉलेज की वो छोटी सी कैंटीन याद आई जहां हम एक कप चाय भी शेयर करते थे, और एक कप चाय पीने के लिए वो मेरा घंटों वेट करता था। लेकिन अब वो समय शायद पीछे छूट गया है। वो सुबह मुझे आज भी याद है, जब सूरज की रोशनी कमरे में आ तो रही थी पर हमारे बीच का अंधेरा कम नहीं हो रहा था। मैं डाइनिंग टेबल पर उसके सामने ब्रेकफास्ट लेकर बैठी तो थी, लेकिन एक अजब सी खामोशी थी। उसकी नजरें उसके लैपटॉप पर और मेरी उस पर कि शायद मुझसे कुछ तो बात करे। मैंने कोशिश करते हुए उसकी तरफ चाय का कप आगे बढ़ाते हुए बोला, आर्यन क्या तुम्हें याद है हम आखिरी बार कब हंसे थे जिससे पेट में दर्द हो जाए और आंसू निकल आए? उसने लैपटॉप से नजरें हटाई, एक फीकी सी मुस्कान के साथ बोला, मीरा बच्चों जैसी बातें मत करो, मैं काम तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ। बोलो क्या चाहिए तुम्हें, जो समझ आए ले लो जाकर, पैसों की चिंता मत करो, सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर बेमतलब के सवाल क्यों? मैंने अपनी रुलाई को रोकते हुए कहा, आर्यन मुझे तुम्हारा टाइम चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जिससे मैंने प्यार किया था, मुझे हमारा पुराना वक्त चाहिए जहां हम कम पैसों

में भी जिंदगी जीते थे, एक दूसरे के साथ थे। इस आलीशान घर में मेरा दम घुटता है। तुमने घर को शोरूम बना दिया है और मुझे केयरटेकर जो सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रहती है।

मेरी बात आर्यन को चुभ गई। उसने झुंझलाकर लैपटॉप पटका और बोला, ये सब फालतू की बातें हैं, प्यार से पेट नहीं भरता। जिस दुनिया में रहता हूँ वहाँ बैंक बैलेंस से काबिलियत देखी जाती है। मैंने उसकी आंखों में देखकर इतना कहा, आर्यन भविष्य का क्या करोगे अगर उस तक पहुँचते पहुँचते हमारा आज ही खत्म हो जाए। तुम कल की नींव रख रहे हो लेकिन हमारा रिश्ता तो हर रोज खत्म हो रहा है। हम पार्टनर नहीं रहे, बस एक ही छत के नीचे रहने वाले दो अजनबी बन गए हैं जिन्हें एक दूसरे की आहट से भी फर्क नहीं पड़ता। आर्यन बिना कुछ कहे अपना कोट उठाकर बाहर निकल गया। दरवाजा बंद होने की आवाज मेरे दिल पर किसी चोट की तरह लगी। मेरा रोना सुनने वाला कोई नहीं था, सिर्फ दीवारें थीं और मेरा अकेलापन।

फिर वो दिन आया जिसने सब कुछ अचानक से बदल दिया। आर्यन की कार का एक्सीडेंट हो गया। उसको ज्यादा चोट तो नहीं आई, पर वो सहम गया था। उसने कहा, जब उसकी कार टकराई तो उसे लगा मानो सब बिखर गया है। तब मुझे मीरा सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा नजर आया। आर्यन की ये बात सुनकर मुझे लगा कि शायद हमारा रिश्ता अभी पूरी तरह से टूटा नहीं है, अभी भी कुछ है जो हम दोनों को बांधे हुए है। और तभी अचानक बारिश की बूंदें हम पर गिरी। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और हम दोनों को फिर से वही एहसास हुआ जो पहले हुआ करता था। हम दोनों उसी चाय की दुकान पर गए जहाँ हम पहले चाय पिया करते थे।

उस दिन से जैसे हमारी लाइफ ही बदल गई। आर्यन का बिहेवियर चेंज हो रहा था और वो पहले की तरह मुझे क्वालिटी टाइम देने की कोशिश कर रहा था। जल्दी घर आना, अपना टाइम लैपटॉप की बजाय मुझे देना, अपनी सारी बातें मुझसे शेयर करना। एक दिन हम बालकनी में बैठे हुए थे, उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, मीरा आज मैं बहुत बड़ी डील हार गया हूँ, लेकिन उस डील के आगे मुझे तुम्हारी खुशी, हमारा साथ ज्यादा मायने लगता है। मैंने उसकी तरफ देखा, ढलते सूरज की रोशनी उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन मेरे जीवन की खुशियों का सूरज बहुत दिनों बाद मानो उग रहा हो। अब मुझे महसूस हो रहा कि उम्र की लकीरें हम दोनों के चेहरे पर आने तो लगी थी, पर हमारा रिश्ता उन लकीरों से कहीं ज्यादा गहरा और साफ हो गया था। हमने अपने आलीशान घर के सारे दरवाजे खोल दिए थे। आर्यन ने मुझे मेरी खोई हुई मीरा लौटा दी और सच बताऊं तब हम दोनों को समझ आया कि असली सक्सेस और खुशी वो नहीं जो दुनिया को दिखे, बल्कि वो है जो आपके दिल को महसूस हो।

0: अभी आपने सुनी गीतों भरी कहानी रंजना की जुबानी, जिसका नाम था खुशियों का सूरज।
1: वैसे साधना, कल से मैं ये सोच रही थी कि कितने दिनों से हम अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। वैसे एक बात बताओ, तुमने कुछ ऐसे नए रूटीन ट्राई किए हैं क्या? क्योंकि जब मैं तुम्हें देखती हूँ ना, तो तुम हमेशा मुझे फिट ही दिखती हो।
0: हाँ, मैंने एक ग्रुप योग क्लास ज्वाइन किया है और सच कहूँ तो मुझे वहाँ जाना बहुत अच्छा लगता है। हम सब साथ में प्रैक्टिस करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट भी करते हैं।
1: सच में? वैसे यार ये तो बढ़िया है, क्योंकि जब हम अकेले करते हैं ना, तो अक्सर हम बहाने ढूंढ लेते हैं, लेकिन ग्रुप के साथ एक जिम्मेदारी भी बन जाती है।
0: हाँ, और ख़ास बात तो ये कि अब तो ऑनलाइन का ट्रेंड भी है, जिससे हम घर बैठे एक समुदाय का हिस्सा भी बन जाते हैं और यह हमें नियमित रखने में मदद भी करता है।
1: बिल्कुल, और इसके कई फायदे भी हैं, जैसे नियमितता से हमारा शरीर लचीलापन और ताकत दोनों विकसित करता है,
0: बिल्कुल।
1: जिससे चोट लगने का खतरा भी कम हो जाता है ना।
0: और ग्रुप के साथ एक सपोर्ट सिस्टम भी बनता है, जिससे हम एक दूसरे को प्रेरित करते हैं और एक साथी भावना भी बनी रहती है।
1: और ये मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि ध्यान और सांस पर फोकस करने से तनाव भी कम होता है।
0: और देखो स्नेहिल, ये जो सामुदायिक योग से हम सामाजिक रूप से जब जुड़ते हैं ना, तो इससे हमारा जो अकेलापन होता है वो बहुत दूर हो जाता है।
1: ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, और साथ ही एक फ़ायदा ये भी है साधना कि चाहे आप कहीं भी हो, ऑनलाइन क्लास से आप अपनी सुविधा के अनुसार जुड़ सकते हैं, जब चाहें तब, और अपनी जीवन शैली में इसे आसान बना सकते हैं।
0: तो इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी एक बार समूह में योग करने की कोशिश करें और देखें कि यह आपके शरीर और मन दोनों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है।
1: और वो कहते हैं ना कि योग से बढ़ता है संतुलन, मन शरीर और जीवन से जुड़ता है गहरा बंधन। तो योग से जुड़कर हम न सिर्फ अपने शरीर बल्कि मन और रिश्तों को भी मजबूत करते हैं।
0: और देखो स्नेहिल, खासकर 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, जो सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे जीवन का एक स्थायी हिस्सा बनने का संदेश भी देता है।
1: बिल्कुल, तो यही संदेश हम भी आपको देना चाहते हैं कि रोज़ थोड़ा समय निकालिए, अपने शरीर और मन को आराम और ऊर्जा दीजिए, और इस सामुदायिक योग से या इसके जरिए खुद को और अपने रिश्ते को मजबूत बनाइए। तो भाई आज के लिए साधना जी बस इतना ही, क्योंकि समय हो चला है अब सखियों से विदा लेने का। तो फिर किसी दिन इसी दिन इसी समय पर होगी मुलाकात ढेर सारी जानकारियों के साथ।
0: तब तक के लिए मुझे यानी साधना
1: और स्नेहिल को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।

लखनऊ केंद्र से अभी शहरी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अपराजिता। मीडियम वेव के मीटर पर आकाशवाणी के हम लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं और अब फौजी भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम जवानों के लिए।

फौजी भाइयों जय हिंद। पत्र और ईमेल पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं और पहला मेल हमारे पास ये आया है विजयपाल यादव जी का लखीमपुर खीरी से। और आपने बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि जीवन में कभी हार मत मानिए क्योंकि अंधेरी रात के बाद सवेरा अवश्य होता है। धैर्य, विश्वास और मेहनत हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आपने लिखकर भेजी हैं विजयपाल यादव जी, और आपने अपनी फरमाइश हमें भेजी है। आप सुनना चाहते हैं सौदागर फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में, तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

और ये मेल हमारे पास आया है देवता दीन मास्टर, तुलसी राम गुप्ता, पंकज गुप्ता, शिवा अंशिका, आकांक्षा, राजेश चौहान, और आप सभी सुनना चाहते हैं 20 साल बाद फिल्म का गीत अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में।

और ये मेल हमारे पास आया है मोहाली चंडीगढ़ से। टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, इसके साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। और आप लोगों ने बहुत अच्छी पंक्तियां लिख के भेजी हैं। जय हिंद, भारत के रखवालों, जल सेना, थल सेना, वायु सेना और रक्षा प्रणाली में जुटे हुए सभी जवानों को शत शत नमन। हम सुकून से रह रहे हैं, आप हैं तो हम हैं। जी हाँ, बहुत अच्छी पंक्तियां आपने लिख के भेजी हैं। और आप लोग सुनना चाहते हैं कलयुग फिल्म का गीत राहत फतेह अली की, राहत फतेह अली खान की आवाज़ में। तो लीजिए सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं फौजी भाइयों का कार्यक्रम जवानों के लिए, और ये मेल हमारे पास आया है हरदयाल सिंह विजयलक्ष्मी कुशवाहा जनपद हरदोई से, हमें मेल करी हैं और आप सुनना चाहती हैं नगीना फिल्म का गीत जिसे गाया है अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज ने।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने को हैं। कुछ ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर बल दिया। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। भारत ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखने पर सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। और भारत ने

0: महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। फ्रांस के एवियन शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश हैं जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं, तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है, जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास

0: से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सुपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का एक कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
0: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के

0: तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र

0: प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद एमटी सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग आधा प्रतिशत की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित एफआईएच हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। एआईआर चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला एफआईएच नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम विज्ञान और किसान। कार्यक्रम में जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन विषय पर आज डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव से की गई भेंटवार्ता किसान भाई सुनेंगे। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
3: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आप मत्स्य पालन से जुड़े हैं यानी आपके पास मत्स्य तालाब है नया या पुराना, वहां जल कृषि कैसे करें और समन्वित मत्स्य पालन कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं मत्स्य विशेषज्ञ डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये जल कृषि है क्या?
4: धन्यवाद डॉक्टर साहब। नमस्कार किसान भाइयों बहनों। जल कृषि का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ जो कि आप पानी के अंदर पाल रहे हैं। हमारे यहाँ जल कृषि से आशय जो है ना मत्स्य पालन से ही होता है। बट चूंकि समन्वित मत्स्य पालन की बात चल रही है तो समन्वित मत्स्य पालन का मतलब ये होता है कि जल कृषि तो आप कर ही रहे हैं
3: जी,
4: उसके साथ में कोई भी और चीज़,

0: ऐसी कोई चीज़ जिससे कि जल कृषि की लागत कम हो सके और आपको अतिरिक्त मुनाफा हो सके। अगर लागत कम हो जाएगी तो आपको फायदा ज़रूर हो जाएगा। यहाँ पे कई सारे समन्वय होते हैं जिनका कोई बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन प्रचलन में वही सारी चीज़ें हैं।
1: तो मत्स्य पालन के साथ साथ जैसे सिंघाड़ा उत्पादन है, ये भी तो जल कृषि का हिस्सा है।
0: सिंघाड़ा उत्पादन के साथ जल कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि सिंघाड़ा जो है ना अपने आप में बहुत सारे पोषक तत्वों को ले लेता है। दूसरा, सिंघाड़े के डंठल जो होते हैं उनमें कांटे रहते हैं, तो उसके साथ में फिर बाद में दिक्कत आ जाती है और ज़्यादातर पोषक तत्वों को वो इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर मछली के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचता है। तो सिंघाड़ा का पालन आप कुछ समय के लिए तो कर सकते हैं,
1: जी,
0: लेकिन पूरे टाइम में अगर आप सोचें
1: पूरे
0: कि
1: साल नहीं।
0: पूरे साल नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के लिए कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिंघाड़े का जो उत्पादन है वो आमतौर पे सर्दियों के टाइम में होता
1: जी,
0: है,
1: जाड़े में।
0: जाड़े में ही होता है। तो उस टाइम पे तब मत्स्य तालाब में वैसे ही काफ़ी सारी
1: डारमेंट स्टेज में
0: हाँ
1: रहती
0: काफ़ी
1: हैं।
0: सारी समस्याएं रहती हैं जिनको कि संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने सिंघाड़ा लगाया हुआ है कि तब कुछ सीमाएं हो जाती हैं, जैसे आप सिंघाड़े में किसी भी दवाई का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं, कोई भी कीटनाशक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अगर मछली पड़ी हुई है तो।
1: तो डॉक्टर साहब, ये जल कृषि आवश्यक क्यों?
0: जल कृषि से बहुत सारे फायदे हैं। हमारा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कृषि को छोड़ दें और जल कृषि पे करें, लेकिन जल कृषि एक अतिरिक्त आय का साधन आपके लिए हमेशा हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं जब आती हैं तो उसमें आमतौर पर देखा गया है सूखा हो, बाढ़ हो, बारिश हो, कुछ भी हो जाए तो हमारी कृषि पे बहुत नुकसान हो जाता है। ऐसे में अगर आप जैसे 1 हेक्टेयर का एरिया है, अगर आप 1/4 हेक्टेयर में भी मत्स्य पालन कर लेते हैं तो लगभग इतना माना जाता है कि जितना कृषि से आपकी आय होगी उतना आपको मछली पालन से आय हो जाएगी। फर्ज कीजिए आपकी वो फसल बर्बाद हो गई तो कम से कम कुछ आय का साधन तो आपके पास बच जाता है।
1: तो डॉक्टर साहब, जल कृषि की बात हुई, समन्वित मत्स्य पालन में मत्स्य पालन के साथ साथ कोई भी सह व्यवसाय है।
0: कोई भी सह व्यवसाय का मतलब है कि जल कृषि की लागत को कम कर सकें। फर्ज कीजिए अगर आप धान के साथ में मत्स्य पालन करते हैं तो धान तो आप कर ही रहे हैं, वहाँ पे मत्स्य पालन जो है ना एक दूसरा कंपोनेंट हो जाता है, यानी मेन जो फसल है वो धान की है, साथ में आप मछली भी पालन कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर आपने वहाँ पे कुछ मछलियाँ जो कि जैसे जो कॉमन कार्प हैं या ग्रास कार्प हैं, इन दो को छोड़ के बाकी सारी मछलियों को आप डाल सकते हैं,
1: जैसे
0: जैसे रोहू, कतला, नयन या जो वायुश्वासी मछलियां हैं जो हवा में सांस ले सकती हैं,
1: जी,
0: जैसे मागुर है, सिंगी है, इनको आप डाल के और उनसे अतिरिक्त आय आप कमा सकते हैं क्योंकि धान तो आप पाल ही रहे हैं।
1: इसके अलावा भी कई पद्धतियां हैं समन्वित मत्स्य पालन
0: हाँ,
1: की।
0: जैसे आपने धान का एक हो गया, आप चाहें तो बतख पाल सकते हैं,
1: मुर्गी पालन,
0: मुर्गी पालन आप कर सकते हैं, बंदे जो आपके रहते हैं उन पे आप जो फूलों की खेती कर सकते हैं,
1: या बागवानी।
0: बागवानी कर सकते हैं, शहतूत आप उगा सकते हैं और उससे रेशम का उत्पादन आप कर सकते हैं।
1: लेकिन जहाँ पशुधन के साथ मत्स्य पालन करना है
0: जी,
1: समन्वित मत्स्य पालन के तहत, तो वहाँ कौन-कौन सी आवश्यक बातें हैं?
0: अब उसमें होता ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आपने 2.5 एकड़ यानी 1 हेक्टेयर एरिया अगर लिया हुआ है तो दो जो जानवर हैं, दो गाय या दो भैंस कोई भी हैं जिनका वजन 500 ग्राम से ऊपर है, 500 किलोग्राम से ऊपर है, अगर आप उनका पालन करते हैं, अगर आप उनको वहाँ पे रखते हैं दूध के लिए, तो उनका जो गोबर होगा वो 1 हेक्टेयर एरिया के लिए पर्याप्त होता है उर्वरक के तौर पर।
1: यानी उनकी भूख मिटाने के लिए
0: नहीं, मछलियों का जो खाना
1: आहार।
0: खाना है उसके उत्पादन के लिए आपको गोबर डालना होता है तालाब में। तो जो दो दो अगर आप कोई भी भैंस, गाय या भैंस पालते हैं जिनका वजन 500 किलोग्राम से ऊपर है तो उनका जो गोबर है ऐसा माना जाता है कि 40 किलो गोबर प्रति जानवर जो है ना प्रतिदिन पैदा करता है, तो 80 किलो हो गया। तो साल भर अगर आप उनको पालते हैं तो उसके लिए आपको फिर कोई अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता नहीं होती है मछलियों के लिए, क्योंकि वो खुद में ही जो है ना उनके लिए उतना उत्पादन कर सकता है। और ऐसे में आप जो डेयरी आप कर रहे हैं उससे आपको दूध का उत्पादन होगा, उससे आपको अतिरिक्त आय होगी और जो लागत है आपकी उर्वरकों की वो बच जाएगी।
1: जहाँ मत्स्य पालन के साथ साथ मुर्गी पालन या बतख पालन करना है, वहाँ कौन-कौन सी बारीकी है डॉक्टर साहब?
0: इसमें बतखें जब आप पालें तो थोड़ी सी बड़ी साइज की मछली आपको डालनी होती है, यानी 75 मिलीमीटर।

0: से लेके 100 मिलीमीटर तक की मछली का जो बीज है वो आपको डालना होता है।
1: यानी छोटे बच्चे ना हो,
0: छोटे बच्चे
1: नहीं तो
0: ना हो,
1: आहार बन जाए।
0: हाँ बतख उनको खा सकती है। तो थोड़ी सी बड़ी मछलियाँ डालें, और या फिर आप ये कर सकते हैं कि आपने मछली डाल ली है और 2-2.5 महीने के बाद फिर आप बतखों को तब तक बाड़े में रखें और उसके बाद फिर उनको छोड़ना शुरू करें। बतखों में भी वही होता है कि बतख की जो ड्रॉपिंग्स गिरती हैं यानी जो बीट उसकी गिरती है वो उर्वरक का काम करती है और मछलियों के लिए भोजन पैदा करती है।
1: जी
0: तो यहाँ पे आपकी लागत जो है ना, जो खाना देते हैं उसकी लागत में 30-40% तक की
1: कटौती हो सकती है।
0: बचत हो जाती है। तो जो बचत होती है वही आपका फायदा होता है। क्योंकि
1: और मत्स्य सह मुर्गी पालन में
0: मुर्गी पालन में भी ऐसा होता है। मुर्गी पालन 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो आप जो मुर्गियों के बाड़े हैं वो तालाब के अंदर बना सकते हैं या उनके बंधों पे बना सकते हैं, और ऐसे ही व्यवस्था कर सकते हैं, थोड़ा सा रैंप टाइप का बना देते हैं यानी ढलान बना देते हैं ताकि जो भी बीट आए वो डायरेक्ट तालाब में
1: तालाब में
0: गिरती रहे
1: आहार के लिए।
0: आहार के लिए। तो उससे अंत में जो है ना मछली का भोजन बनता है और आपको किसी उर्वरक या खाद या खाने की आवश्यकता नहीं होती है।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ मत्स्य पालन के साथ साथ बकरी पालन करना है या रेशम कीट पालन शुरू करना है वहाँ?
0: रेशम कीट पालन में ये होता है कि वो उनको आप बंदे पे लगा सकते हैं। जैसे बंदे पे आप बजाय फलों की खेती या केले या कोई भी ऐसी चीज़ लगाने के बजाय आप मलबरी के शहतूत के लगा सकते हैं, उन पे प्यूपा पाल सकते हैं, और प्यूपा से जब रेशम निकल जाता है तो वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स होता है जिससे आप मछली का खाना बना सकते हैं। तो वो इस तरीके से इस्तेमाल होता है। जब पत्तियाँ बच जाती हैं तो उन्हें ग्रास कार्प के भोजन के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ मत्स्य पालन के साथ साथ मशरूम उत्पादन शुरू करना है सह व्यवसाय के रूप में वहाँ?
0: वहाँ पे ये होता है कि मशरूम उगाने के लिए आपको एक कमरे की आवश्यकता होती है जो कि आपको
1: बंदे पे कर सकते
0: बंदे
1: हैं?
0: पे कर सकते हैं, बंदे पे अपना, तो आप अतिरिक्त आप बना सकते हैं वहाँ पे, और उसके तापक्रम को जरूरतमंद बनाए रखने के लिए आप पानी का जो इस्तेमाल है वो वहाँ से कर सकते हैं। तो चूंकि वहाँ पे एक एरिया का इस्तेमाल आप कर रहे हैं और उसे एक अतिरिक्त आय कमा रहे हैं, कहने का उद्देश्य वही है कि चाहे वो जमीन हो या पानी हो दोनों का भरपूर आप उपयोग करें और अतिरिक्त जो आय होगी वो आपकी आय में जुड़ जाती है।
1: डॉक्टर साहब, जैसा शुरू में आपने कहा कि मत्स्य पालन के साथ साथ बागवानी भी हो सकती है समन्वित मत्स्य पालन के तहत?
0: जो हमारा तालाब बनाते हैं उसका 15-25% एरिया बंदों में जाता है, यानी 1 हेक्टेयर का तालाब बना है तो लगभग 20% एरिया बंदों में चला जाएगा। अब अगर आप उसका उपयोग करना चाहते हैं, क्योंकि हर साल तालाब की मिट्टी जो बह के आती है वो आपको निकालनी होती है, तो उस मिट्टी में भरपूर उर्वरक होते हैं, उनको आप बंदों में डाल के किसी भी खाद या किसी भी फर्टिलाइजर के बिना जो है ना अच्छी फूलों की खेती कर सकते हैं,
1: फलदार पौधों की भी,
0: फलदार पौधों की या कोई भी खेती कर सकते
1: या
0: हैं
1: सब्जियां?
0: या सब्जियां उगा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको अतिरिक्त आय हो सके।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: 9455-9452-300-124 9452-300-124 9452-300-124।
1: डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और जल कृषि है क्या और समन्वित मत्स्य पालन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: किसान भाइयों, हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव ने जल कृषि और समन्वित मत्स्य पालन विषय पर जो भी जानकारी आपको दी है उसे आप अमल में ज़रूर लाएंगे। डॉक्टर अखिलेश कुमार यादव से बात कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ ही विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त हुआ। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। सूरज कुमार निवासी ग्राम शिवदासपुर पोस्ट कसमंडी कला थाना मलिहाबाद जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि मुकेश कुमार रावत पुत्र स्वर्गीय सोहन लाल रावत दिनांक 27 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 25 वर्ष, कद 165 सेंटीमीटर, रंगे हुआ, चेहरा लंबा, इकहरा बदन है। ये काले व

0: पीले रंग की शर्ट और नीले रंग की पैंट पहने हुए थे। ज्योति सैनी निवासी 554/31 अर्जुन नगर थाना आलमबाग जनपद लखनऊ ने सूचित किया है कि उनके पति मिथिलेश सोनी दिनांक 20 मई 2026 से लापता हैं। इनकी आयु 52 वर्ष, कद 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा, इकहरा शरीर है। इन्होंने सफ़ेद पैंट और काली चित्तीदार शर्ट और पैर में लाल चप्पल पहन रखी थी। इनके संबंध में कोई भी सूचना इस मोबाइल नंबर पर दें 885-331-9744। मोबाइल नंबर एक बार पुनः सुन लें 885-331-9744। विनय सोनी निवासी 156/164 ऊंचा मंडी थाना मुट्ठीगंज जनपद प्रयागराज ने सूचित किया है कि काजल सोनी पुत्र नंदलाल सोनी दिनांक 7 फरवरी 2025 से लापता हैं। इनकी आयु 15 वर्ष है, कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा लंबा है। इन्होंने हरे रंग का सलवार सूट पहन रखा था। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।
1: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
2: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
5: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
6: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
5: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
6: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
5: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
6: 8700001-4242।
7: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
8: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: मिट्टी की महक से महकते लोक संगीत के कार्यक्रम लोक माधुरी में हम अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधी लोकगीत। आरंभ करते हैं सोहर से, बोल हैं बीरन घर नंदी लाई बधाई।

आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी, और आज की कलाकार हैं विंध्यवासिनी त्रिपाठी। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं नकटा, बोल हैं मैं गोरी सैया काले मिले, स्वर विंध्यवासिनी त्रिपाठी का।

विंध्यवासिनी त्रिपाठी के गाए अवधि लोकगीत अभी आप सुन रहे थे लोक माधुरी कार्यक्रम में। अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय अपराह्न के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। अगली सभा शाम 5 बजे से आरंभ होगी। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं।

0: मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। शाम के 5 बजने को है। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ हो रही है। सभा के आरंभ में आइए सुनते हैं अब से कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियॉन शहर पहुंच गए हैं। इवियॉन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियॉन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सीरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सीरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची K में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्यांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में

0: पहला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालय क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है इस सभा की शेष और कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। पहले एक नजर आज के शेष कार्यक्रमों पर।

आज रात 10 बजे हमारे राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा कार्यक्रम खेल दर्पण। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भाग एक में फुटबॉल का महाकुंभ फीफा 2026। स्वर है रमनप्रीत सिंह का, आलेख आसिफ इकबाल का। और भाग दो में कुश्ती पर भेंटवार्ता सुनिएगा, मेहमान ऋषि श्वेत सिंह से बातचीत करेंगे राघवेंद्र सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति है। अब से कुछ ही देर में यानी 5:10 पर इंफोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा युवा तरंग। 5:45 पर नई उड़ान कार्यक्रम होगा, जिसमें कौशल क्रांति कार्यक्रम के अंतर्गत ओबी पर आधारित कार्यक्रम सुनिएगा, पारंपरिक हुनर का आधुनिक बाजार, हुनर से नए बाजार तक। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी शालिनी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा वार्ता, सशक्त श्रमिक समर्थ भारत। वार्ताकार हैं राकेश कुमार सिंह। 6:50 पर खेती किसानी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन। इस विषय पर डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह से बातचीत करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे आज शाम 7:45 पर। आज रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनिएगा भेंट वार्ता, खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार कैथल से बातचीत करेंगे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। 8:10 पर सुगम संगीत का कार्यक्रम होगा, जिसके अंतर्गत कलाकार किशोर चतुर्वेदी के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आज आप सुनेंगे शाम 7:31 पर, रात 8:30 पर और आज रात 9:30 पर फिल्म संगीत का ही फोन इन कार्यक्रम होगा, हेलो मेरी पसंद। रात 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में उस्ताद विलायत हुसैन खां का राग बिहाग और राग रईसा कान्हड़ा में ख्याल गायन आप सुन सकेंगे। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम। अब सुनिए कल प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों के बारे में।

कल प्रातः 10:10 पर सुनिएगा न्यूज बुलेटिन विश्व दर्पण और कल शाम 7:31 पर आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 के अंतर्गत हेडिंग्ले लीड्स में भारत और नीदरलैंड के मध्य खेले जा रहे T20 क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल मैच की समाप्ति तक हम आपको सुनवाएंगे। ये दोनों कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कल सुबह 9:30 पर कल का उर्दू प्रोग्राम आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज की पेशकश है, जिसमें समाप्त फरमाइएगा मकाला

नमस्ते, मैं हूँ दिव्यांशु और आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम युवा तरंग में। दोस्तों, ढल गया दिन, हो गई शाम, शुरू हो चुका है आपका युवा तरंग जो हर शाम शुरू होता है ठीक इसी वक्त और इसी जगह पर। दोस्तों, हर युवा अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, कुछ नया सीखना चाहता है और अपने सपनों को साकार करना चाहता है, लेकिन आज के दौर में केवल डिग्री हासिल कर लेना काफ़ी नहीं है। बदलते समय के साथ नई नई तकनीकों, कार्यशैलियों और रोजगार के अवसरों को देखते हुए कौशल विकास यानी स्किल डेवलपमेंट की महत्ता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे जो कि हमारा कौशल विकास, और जानेंगे कि आज के प्रतिस्पर्धी दौर में युवाओं के लिए नई नई स्किल्स सीखना क्यों जरूरी है और ये उनके करियर तथा व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार मददगार साबित होगा। साथ ही एक बहुत ही खास भेंट वार्ता भी है और उसके बाद प्रश्नोत्तरी का जो हमारा सेगमेंट है मजेदार, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो बने रहेगा हमारे साथ कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं अपने आज के कार्यक्रम की इस गाने के साथ।

0: दोस्तों, आज के दौर में युवा केवल नौकरी की तलाश तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के व्यवसाय की शुरुआत करके आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इन्हीं महत्वपूर्ण पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए आज की इस विशेष भेंटवार्ता में श्री राजेंद्र कुमार सिंह ने नए व्यवसाय के लिए वित्तीय प्रबंधन से जुड़ी कई उपयोगी जानकारियां साझा की है, जिनसे बात की है डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी ने। तो आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता।
1: युवाओं के लिए विशेष रूप से अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आवश्यकता होती है कि वह कोई नौकरी करें पढ़ लिख कर या फिर व्यवसाय करें। व्यवसाय ऐसा देखा गया है कि हमारे समाज में जब पहले बच्चे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं कि कहीं नौकरी मिल जाए, और नौकरी नहीं मिलती है तो फिर रुझान होता है कि कोई न कोई व्यवसाय करें जीविकोपार्जन के लिए। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक विकट समस्या होती है कि किस क्षेत्र का चुनाव करें और उस क्षेत्र के लिए क्या कुछ वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है, उसको जानें, समझें और फिर आगे बढ़ें। इस गूढ़ प्रश्न के लिए, गूढ़ तथ्य के लिए यह आवश्यक है किसी विशेषज्ञ से बात की जाए। और जैसा कि आपने सुनी लिया, आज हमारे स्टूडियो में राजेंद्र कुमार सिंह साहब हैं, जो कि पूर्व बैंक प्रबंधक हैं, बेहतर जानकारी इस फील्ड की

0: इसलिए यह जानते हैं कि कैसे क्या होना चाहिए। सिंह साहब, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका।
1: धन्यवाद सर।
0: आपसे पहली बात यही जानना चाहेंगे कि जो स्थिति है व्यवसाय की हमारे समाज में, उसे आप किस नजरिए से देख रहे हैं?
1: बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि रोजगार इतना नहीं है या सरकारी रोजगार इतना नहीं है कि सभी को रोजगार दिया जा सके। तो जाहिर सी बात है कि आदमी जब रोजगार नहीं पाता है, प्राथमिकता तो उसकी गवर्नमेंट सर्विस की रहती है, लेकिन वो अगर इतना तो है नहीं, सीमित है, और संख्या हमारे नौजवानों की ज़्यादा है, तो इसलिए व्यवसाय की तरफ वो अग्रसर होना चाहेगा। अब इस समय उसको यह चयन करना है कि वो किस व्यवसाय में जाए। पहली बात तो ये, उसको चयन करना है उसके टेस्ट का, क्योंकि जब उसके टेस्ट का होगा तब निश्चित रूप से उसमें सफलता के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब ये सरकार की तरफ से भी है, बैंकों की तरफ से है, दोनों का सामंजस्य भी है। प्रथम हम लेते हैं कि किस स्तर का व्यवसाय वो करना चाहता है।
0: जी बिल्कुल।
1: जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाना चाहता है या सर्विस सेक्टर में जाना चाहता है, किस सेक्टर में जाना चाहता है, मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जैसे कि सारे लोग जानते हैं कि शिशु 50,000 रुपये तक लागत का है, और किशोर 50,000 एक से लेके 5 लाख तक।
0: शिशु किशोर ये योजना का नाम।
1: हाँ, शिशु किशोर और तरुण, तरुण 5 लाख से 10 लाख तक का है
0: जी।
1: अब इसमें कौन सी परियोजनाएं हम ले सकते हैं, किस क्षेत्र में हम व्यवसाय कर सकते हैं, हम इनको बता रहे हैं। जैसे परियोजनाएं कौन सी हो, मैन्युफैक्चरिंग की हो गई, फूड प्रोसेसिंग की हो गई, जैसे आटा चक्की हो गई, पॉलिशर हो गया, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्रों में हम बात कर रहे हैं तो तेलघानी हो गया, ईंट का उद्योग हो गया, फर्नीचर निर्माण का, फैब्रिकेटर का, सीमेंट का जाली बनाना, ये रॉ मटेरियल उपलब्ध रहता है वहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। अगर ये बिजनेस किए जाएंगे, इंटरलॉकिंग ब्रिक्स, सीमेंट पाइप निर्माण, टेराकोटा से मूर्तियाँ और खिलौने बना के गांव से शहरों में जो है प्रेषित करना, प्लास्टिक उपकरण, जूता निर्माण, बेकरी, नूडल्स, ये आदि सब व्यवसाय हैं। अब इसमें वो किस स्तर का करना चाहता है, पहले तो वो जाए अपने जो नज़दीकी बैंक है, अगर वो ग्रामीण क्षेत्र का है तो ग्रामीण बैंक से प्रिफर करे, क्योंकि वहाँ की भाषा और वहाँ के लोग उसको ज़्यादा समझेंगे और उसको गाइड भी करेंगे। और इन सब चीज़ों के लिए सरकार से भी स्कीम है, जिला उद्योग केंद्र से, और कई योजनाएं हैं, PMEGP का, खादी ग्राम उद्योग से, DIC है, इन सब से ये किया जा सकता है। अब ये तो मैन्युफैक्चरिंग का हमने जो ये बताया, सर्विसेज में भी जाए। अब वो जैसे होटल खोलना चाह रहा है, रेस्टोरेंट खोलना चाह रहा, मिठाई की दुकान, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलरिंग, अगर उसके पास ये काबिलियत है, हेयर सैलून बढ़िया बना के वो कर सकता है, ब्यूटी पार्लर, ऑटो रिपेयर वर्कशॉप, रिटेल ट्रेड, रेडीमेड वस्त्र, लॉन्ड्री, इवन पेट्रोल पंप।
0: कहने का मतलब ये है कि सेक्टर जो है वो विपुल है।
1: हाँ,
0: बस चूज करना है कि किस क्षेत्र में हमको जाना है, रुचि हमारी क्या
1: रुचि
0: है?
1: रुचि जब टेस्ट के अनुरूप वो चीजों को चयन करता है, किसी के द्वारा अगर इम्पोज नहीं किया जा रहा है, तो उसमें प्रगति के साथ साथ उसमें सरप्लस भी ओरिजिनेट होगा। जहां तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की बात है, तो उसमें ऐसी समस्याएं नहीं आती हैं। यदि किसी का टेस्ट है और बैंक के पास जाता है, तो बैंकर भी ये देखता है कि कहां से हमारा पैसा वापस आएगा, और बैंक प्रिफर करता है, क्योंकि बैंकों के पास NPA का भरमार है। NPA का भरमार इस रूप में है कि उनकी अदायगी नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि बैंक ये चाहेगा कि हमारा एंटरप्रेन्योर, हमारा इन्वेस्टर्स जो है, अगर उसके अंदर ये काबिलियत है, एक शॉर्ट पीरियड में उससे बात करके उसके अनुरूप वहाँ पे वो जैसे सजेस्ट किया, 4 चीज़ें सजेस्ट किया, तो बैंक मैनेजर या कंसर्न ऑफिसर भी उसको सजेस्ट कर देगा कि ये तुम्हारे टेस्ट का दिख रहा है, निश्चित रूप से इसमें तुम्हें जाना चाहिए। अब इसके ऊपर का जाता है, क्योंकि हमने 50,000

0: से 10 लाख का तक प्रोजेक्ट कर दिया।
1: जी
0: लेकिन कुछ इंटरप्रेन्योर्स हैं, कुछ यंगस्टर्स हैं जो जिनके अंदर इंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ हैं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं और छोटे वर्ग के हैं। तो ये सरकार की भी योजना है कि स्टैंड अप इंडिया है, 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का है। अब इसको इसमें
1: अच्छा सिंह साहब, यहाँ बीच में रुकते हुए,
0: हाँ
1: क्योंकि 10 लाख से 1 करोड़ में जाने पर तो रिस्क ज्यादा हो जाता
0: हाँ
1: है।
0: हाँ हाँ हाँ हाँ
1: कहा यही जाता है कि व्यवसाय हो या फिर उद्यम कोई भी लगा रहे
0: हाँ हाँ
1: हैं,
0: हाँ
1: तो उसमें अनुभव या सतत प्रक्रिया को अपनाएं तो बेहतर होता है। छोटी
0: बिल्कुल
1: पीयूजी से शुरू करें,
0: बिल्कुल
1: एकाएक ज्यादा पैसे लगा देना वो घातक होता है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसी स्थिति में जो अभी तक जितना
0: हाँ
1: आपने गिनाया है,
0: हाँ
1: जैसे
0: हाँ
1: पार्लर
0: हाँ
1: हैं और
0: हाँ
1: ये सब, हमको लगता है 10 लाख के नीचे वाले आपने
0: बिल्कुल
1: गिनाए थे,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: इसमें अगर कोई व्यक्ति जाना चाहता है तो फिर उसको वित्तीय जो अनुशासन होता है और वित्तीय जो व्यवस्थाएं होती हैं,
0: हाँ
1: इन दोनों को लेकर चलना होगा, तो कैसे उसे आगे बढ़ना चाहिए?
0: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। और दो किस्म की सुविधाएं होती बैंक में, एक तो टर्म लोन होता है,
1: जी
0: एक तो वर्किंग कैपिटल का होता है। कि कहीं टर्म लोन का मतलब यह हुआ कि 5 साल 7 साल का रिपेमेंट शेड्यूल दे दिया और किसी को फाइनेंस उपलब्ध कराया गया है तो उसके लिए गेस्टेशन पीरियड दिया जाता है। जैसे अमूमन 12 से 18 महीने उसको पीरियड दे दिया गया कि उतने में वो उद्योग अपना संभल जाएगा और उसके बाद रिकवरी शुरू करेगा। तो करीब 5 वर्ष या 7 वर्ष में मंथली जिस तरीके से उसकी प्रोडक्टिविटी हो, जैसे सरप्लस ओरिजिनेट होता
1: जी
0: हो, तो उसको हर महीने की भी अदायगी कर सकता है, क्वार्टरली भी कर सकता है, 6 मंथली, ये उसके उत्पाद के
1: चॉइस
0: ऊपर।
1: पर। अच्छा
0: ये तो हुआ टर्म लोन, जिसको सावधि ऋण हम लोग करते
1: बिल्कुल
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: और ये हर महीने एक किस्त बन जाएगी, वो देता रहेगा। और दूसरा कि जैसे कोई बिजनेस कर रहा है, वर्किंग कैपिटल वाला है, सीसी लिमिट बनवा लिया थोड़ी देर के लिए, जैसे 5 लाख रुपया या 10 लाख रुपए की सीसी लिमिट बन गई। अब उसको कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जरूरत पड़ रही है, एक चीज खरीद लिया उसने और फिर एकाएक पैसा आ गया तो उसमें जमा कर दिया। यह सीसी लिमिट जो है ये सर्विस सेक्टर के लिए ज्यादा बेहतर होता है।
1: जी
0: अब इसमें वो जैसे पैसा आया उसने जमा कर दिया, तो जितनी देर के लिए पैसा निकला है या जितने दिन के लिए पैसा निकला है उतने दिन के लिए ही ब्याज है। ऐसा नहीं, कुछ लोगों को यह शंका रहती है कि जैसे मैंने इस महीने निकाल लिया तब तो पूरे महीने का ब्याज लग जाएगा, ऐसा
1: ऐसा
0: नहीं
1: नहीं
0: है।
1: है। हाँ
0: आपने 2 दिन के लिए पैसा निकाला, आप 2 दिन के बाद जैसे 3 लाख रुपया निकाला और आपने 2 लाख रुपया 2 दिन के बाद जमा कर दिया, तो आपका 2 लाख रुपया के ऊपर 2 दिन का ही ब्याज लगेगा।
1: ठीक
0: तो
1: ठीक
0: इस तरीके
1: ठीक
0: से ये बड़ी सुविधाजनक
1: ये
0: योजनाएं
1: तो
0: हैं।
1: सेवा का जो
0: हाँ
1: क्षेत्र है
0: हाँ
1: उसमें ज्यादा प्रयोग होगा,
0: बिल्कुल
1: लेकिन
0: बिल्कुल
1: दूसरे जो क्षेत्र हैं, उत्पादन के क्षेत्र हैं,
0: हाँ
1: उसमें जैसे 3 तरह की पूंजी लग
0: हाँ
1: जाती है,
0: हाँ
1: एक तो ये है कच्चा माल के लिए, और दूसरा जो है फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए, और तीसरा जो है मार्केट के लिए फिर
0: बिल्कुल
1: बेचने के लिए,
0: बिल्कुल
1: तो
0: सही,
1: इसको कैसे मैनेज किया
0: इस
1: जाए?
0: तरीके से बिल्कुल सही प्रश्न जो हमें बताना चाहिए था आपने पूछ लिया कि इसमें वर्किंग कैपिटल प्लस टर्म लोन ये
1: जी
0: दोनों कंपटीटिव नहीं हैं, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हैं। प्रोजेक्ट की वायबिलिटी और फिजिबिलिटी के अनुसार ये देखा जाएगा कि इस व्यक्ति को वर्किंग कैपिटल की भी ज़रूरत है और टर्म लोन की भी ज़रूरत है।
1: जी
0: जैसे आपने कहीं इस्टेब्लिश किया, कोई ऑफिस आपने इस्टेब्लिश किया तो उसके लिए फर्नीचर खरीदना है और मार्केट में आपको इन्वेस्ट भी करना है, तो वहाँ पे दोनों लगेगा। इवन फर्नीचर और कंप्यूटर खरीदने के लिए आपका तो टर्म लोन हो गया
1: जी बिल्कुल
0: जिसको डिप्रिशिएट होता रहेगा हर साल, और इसके बाद जो वर्किंग कैपिटल है वो आपका पोर्शन ज़्यादा हो जाएगा। जब वर्किंग कैपिटल तो हमारा पूरा, और अमूमन आपकी मार्जिन मनी 10 से लेके 25% तक रिक्वायर्ड होती है,

0: है। यदि बैंक उसकी अनुरूप अपना लेता है प्रतिभूति, लेकिन इस तरीके से अब आगे
1: बाध्यकारी नहीं है।
0: बाध्यकारी नहीं है और उसकी योग्यता के अनुरूप बैंक उसको सहायता करता है। तो मेरी तो नवयुवकों को ये सलाह है कि नौकरी के पीछे न पड़े और अपने रोजगार में अपने हिसाब से वो दूसरों को रोजगार देने वाले बने, और ये कर सकते हैं, उनके अंदर ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं।
1: जी,
0: जी,
1: अब बिल्कुल सिंह साहब, हमें लगता है कि जिन बातों को आपने उद्धृत किया है लोगों को प्रेरित करने के लिए,
0: जी
1: उसे लोग अपनाएंगे। और विशेष रूप से आज का दौर जो देखे, नौकरी नौकरी, अब वो नौकरी नहीं, अब तो पेंशन भी खत्म हो गई सरकारी
0: पेंशन भी
1: नौकरी
0: खत्म हो
1: में,
0: गई, बिल्कुल
1: तो बिला वजह का उधर दौड़ लगाने की अपेक्षा यह चाहिए कि समय रहते हुए अपना फील्ड चुने और उसमें आगे बढ़ें, दूसरों को भी नौकरी दें। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला, स्टूडियो आए, इतनी अच्छी जानकारी दी, धन्यवाद।
0: धन्यवाद भाई साहब।
2: दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वार्ता, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ ही सुन लेते हैं एक और गाना और मिलते हैं आपसे गाने के बाद।

उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।

0: से जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम में एक खास सेगमेंट प्रश्नोत्तरी का, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे और उसके चार विकल्प आपको देंगे और सेगमेंट के अंत में हम आपको सही उत्तर बताएंगे और आपको मिलाना है कि आपका उत्तर सही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला सवाल है इतिहास से। तो पहला सवाल है कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किस नेता ने किया था। आपके विकल्प है ए राम मनोहर लोहिया, बी जयप्रकाश नारायण, सी अटल बिहारी वाजपेयी या डी लाल बहादुर शास्त्री। दूसरा प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तीसरा प्रश्न है भूगोल से। तो विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गोबी मरुस्थल, ऑप्शन बी कालाहारी मरुस्थल या ऑप्शन सी थार मरुस्थल या ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल। चौथा प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। आपकी ऑप्शन है ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी घाघरा, ऑप्शन सी गोमती या ऑप्शन डी चंबल। इसके बाद ऑप्शन के लिए हम पांचवा प्रश्न पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ये विज्ञान का सवाल है और आपके ऑप्शन है ए अग्नाशय, बी थायराइड, सी यकृत या डी पिट्यूटरी। छठा प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए समय, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी प्रकाश की तीव्रता या ऑप्शन डी ऊर्जा। तो चलिए अब आपको सही उत्तर बताते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो आपका सही जवाब है उत्तर बी जयप्रकाश नारायण। और प्रश्न दो था स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी सी

राज गोपालाचारी। तीसरा प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? सही उत्तर था सहारा मरुस्थल। चौथा प्रश्न, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? आपका सही उत्तर है ए यमुना। पांचवा प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी यकृत लीवर। प्रकाश वर्ष जो कि हमारा छठा प्रश्न था, इसका मात्रक क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन बी दूरी। यह था हमारा आज का प्रश्नोत्तरी सेगमेंट। आप सुनते हैं एक और गाना, मिलते हैं आपसे गाने के बाद।

तो दोस्तों, कल के कार्यक्रम की चर्चा का विषय है तकनीकी शिक्षा। साथ ही प्रोफेसर अशोक कुमार कैथल की भेंटवार्ता सुनेंगे, विषय छोटी बचत का बेहतर उपयोग, जिनसे बात करेंगे डॉक्टर नगेंद्र रघुवंशी। और फिर कार्यक्रम में होगी ODOP पर बात। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही अब हो गया है जाने का वक्त। दीजिए अपने दोस्त दिव्यांशु को इजाजत। नमस्कार।

युवा साथी अभी सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत कार्यक्रम नई उड़ान।

साथियों नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम नई उड़ान में। आज आपके साथ मैं हूं आपके रेडियो दोस्त रीना। अच्छा, आज मैं बहुत ही काम की बातें आपको बताने जा रही हूं, इसलिए मैं बिना देर किए एक अपील करती हूँ, ये गुजारिश है कि आप एक पेपर और पेन अपने पास निकाल कर रख लीजिए, जिससे कि जो भी इम्पॉर्टेंट बात आपको पता चले उसे आप नोट कर सकते हैं। बात एक्चुअली ये है कि आज है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक मनी ट्रांसफ़र दिवस, यानी कि जो पैसे हम अपने घर वालों को, कभी अपने पतिदेव को, कभी अपनी पत्नी को, कभी बहन को, कभी मम्मी को, कभी पापा को, कभी दादे को, कभी किसी को भी अपने परिवार में हम ट्रांसफ़र करते हैं, उसके बारे में जागरूकता हमारे पास होनी चाहिए। और इसी बात के लिए आज मनाया जाता है पारिवारिक मनी ट्रांसफ़र दिवस। वैसे भी डिजिटल ट्रांजैक्शंस के मामले में हमारे देश ने दुनिया को चौंका के रखा है, क्योंकि आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि यूपीआई के ज़रिए होने वाले लेन देन जो है वो 200 अरब के आंकड़े को पार कर चुका है, और हर साल यूपीआई के लेन देन में 30% की बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि हम डिजिटल तरीके से जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो मनी का ट्रांसफ़र है, उसको बहुत ज़्यादा अपना रहे हैं। और आपने भी देखा होगा कि हर जगह अब नकद पैसे जो हैं वो कम दिए जाते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर चल रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि जब हम डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा करेंगे तो जो ठगी है वो भी बढ़ेगी। जो ठग लोग होते हैं, जो साइबर अपराधी हैं, उनके भी हौसले बुलंद होते हैं और वो नए नए पैंतरे अपनाते हैं कि किस तरह से लोगों को ठगा जाए। तो आजकल जो नया पैतरा अपनाया जा रहा है वो है जनगणना का। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि अब आजकल जनगणना का काम जो है वो शुरू हो चुका है। तो अब आपको ये बता दूं कि जो साइबर अपराधी हैं या ठग लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि हम जनगणना अधिकारी बोल रहे हैं, मतलब सरकार की तरफ से जनगणना अधिकारी बोल रहे हैं, और आपका जो डिजिटल जनगणना का काम है, जो आपने डिजिटल जनगणना की थी, उसमें आपका कोई डेटा जो है वो इनकम्प्लीट रह गया है, वो अधूरा है, तो हम आपको एक OTP भेज रहे हैं, आप उस OTP को हमें बता दीजिए, आपको एक OTP मिला है, वो OTP हमें बता दीजिए, तो आपका जो डेटा है वो हम फिल कर देंगे। इस तरह से कुछ बातें बना करके आपसे OTP की डिटेल ले ली जाती है। एक्चुअली ये OTP जनगणना के डेटा को फिल करने के लिए नहीं होता, बल्कि आपके बैंक अकाउंट या UPI ID जो आपकी है उससे आपका पैसा निकालने के लिए मांगा जाता है और आपको झांसे में फंसाया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर कोई आपको इस तरह की बात कहता है तो उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करिए। अच्छा, एक तरीका और है जो बहुत ज़्यादा अपनाया जा रहा है साइबर ठगों के द्वारा, वो ये है कि वो ये कहते हैं हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, ये जनगणना का ऐप है, मोबाइल एप्लीकेशन है, और आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन वो जो लिंक आपको मिलता है वो एक्चुअली जनगणना का एप्लीकेशन नहीं होता है, बल्कि वो एक ऐसा वायरस होता है जिससे कि आपके फ़ोन का जो नियंत्रण है, जो मतलब एक्सेस है, वो उस साइबर ठग के हाथों में चला जाता है और फिर वो आपके मोबाइल फ़ोन को कैसे भी यूज़ कर सकता है। तो इस बात पर भी बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे और तरीके हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा पता चल चुका है सभी लोगों को, जैसे कि डिजिटल अरेस्ट की बात करते हैं, फिर ये कहा जाता है कि आपका KYC अपडेट नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम आपको WhatsApp मैसेज पे हमने आपको ये मैसेज किया है, उसमें मैसेज में डिटेल लिखी होती है कि आप अपने पैसों को इस तरह से निवेश करिए, हम आपको अच्छी रिटर्न देंगे, इस तरह के लालच दिए जाते हैं। फिर बहुत सारी और भी तरीके हैं जिससे कि लोगों को झांसे में फंसाया जाता है। तो हमारी उम्मीद तो ये है कि अब हमारी बात सुनने के बाद आप इस तरह के किसी भी झांसे में नहीं फंसेंगे। एक चीज़ और है जो यहाँ पे बता देना ज़रूरी है कि जो हमारे घर के बच्चे हैं और किशोर उम्र के जो बच्चे हैं स्पेशली, वो बहुत तरह के गेम्स जो हैं वो मोबाइल पर खेलते हैं, तो वहाँ पर गेमिंग कॉइन्स के नाम पर या रिवॉर्ड्स के नाम पर भी UPI के ज़रिए और बैंक अकाउंट के ज़रिए उनकी डिटेल्स लेकर अकाउंट खाली हो जाता है। और आपने अगर खबरें सुनी होंगी तो बहुत से बच्चे इस चक्कर में डिप्रेशन में आकर कोई गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो अपने घर के बच्चों को इस बारे में आप अवेयर करें। अब ये तो चीज़ थी कि ठीक है, साइबर अपराधी जो हैं वो क्या क्या हथकंडे अपना रहे हैं, क्या क्या तौर तरीके अपना रहे हैं, वो हमने आपको बता दिया। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसी कोई कॉल आती है तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को ठंडा करिए। ऐसी कोई कॉल आती है और आपको सामने से ऐसा कुछ भी कहा जाता है जिससे कि आप किसी लालच में फंस सकते हैं, तो आप उस कॉल को पहले डिस्कनेक्ट कर दीजिए, जैसे कि आप उस माइंडसेट में जाने से बच जाएं, मतलब मेंटली आप उनके झांसे में फंस

से बच जाएं। कॉल को डिस्कनेक्ट करने के बाद ठंडा दिमाग रखिए और इसकी जानकारी आप साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर जो है, यानी कि साइबर हेल्पलाइन नंबर है 1930, इस पर कॉल करके आप वो नंबर या वो नाम या जहाँ से भी कॉल आपके पास आई है उसकी डिटेल दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास, आपके साथ कोई फ्रॉड हो भी जाता है, आपके अकाउंट से कोई पैसे निकल जाते हैं, तो भी आप 2 घंटे के भीतर बैंक को कॉल करके या वहाँ पर विजिट करके अपना अकाउंट बंद करवाइए, यानी उसको ब्लॉक करवाइए। एक वेबसाइट हम आपको बता रहे हैं, उसे आप नोट करिए, www.cybercrime.gov.in। वेबसाइट में फिर से बता दूँ, www.cybercrime.gov.in, यानी www.cybercrime.gov.in। अगर आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो जाता है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर अपनी जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जो स्क्रीनशॉट आदि हैं, वो इस वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा अगर किसी के साथ भी ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो सबसे अच्छा ये है कि 3 दिनों के भीतर आप FIR अपनी दर्ज करा दें, तो उससे आप नॉमिनल रिस्क पे रहेंगे, यानी कि आपका नुकसान कम से कम होगा। तो इन सब तरीकों को अपनाकर आप डिजिटल ट्रांजैक्शंस बड़े आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि सतर्कता ही बचाव है, आप अपनी सतर्कता से ही अपने आप को बचा सकते हैं। अब अपने आप को बचाते हुए आप चाहे जितना डिजिटल ट्रांजैक्शन करिए, चाहे कुछ भी करिए, अपने परिवार को मनी ट्रांसफ़र करिए, अपनी फैमिली में मनी भेजिए या कुछ भी और करिए, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें आप सावधानी के साथ करें। अब देखिए, समय के साथ हमें बदलना ही पड़ता है, समय के साथ हमें आगे भी बढ़ना पड़ता है और अपने कार्यक्रम में भी हम आगे ही बढ़ेंगे। और अब हम आपको ले चलते हैं कौशल क्रांति श्रृंखला की ओर। इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हमारा विषय है पारंपरिक हुनर का आधुनिक बाजार, हुनर से नए बाजार, माफ़ कीजिएगा, हुनर से नए बाजार तक। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है शालिनी सिंह ने। तो आइए, स्थल ध्वन्यंकन पर आधारित ये प्रस्तुति अब हम आपके लिए सुनते हैं। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया है शालिनी सिंह ने।

0: वो वक्त कुछ और था जब हुनर घर की चौखट तक सीमित रह जाता था, लेकिन आज वही हुनर आधुनिक बाजारों के साथ मुस्कुरा रहा है। कौशल क्रांति के इस श्रृंखला में मैं शालिनी आपको ले चल रही हूँ आपके हुनर के साथ नए बाजार तक, क्योंकि हमारा आज का विषय है पारंपरिक हुनर का आधुनिक बाजार, हुनर से नए बाजार तक।
1: मैंने मंजिल को तलाशा, मुझे बाजार मिले।
0: ये लाइन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ हमारी मंजिल ही बाजार है और हमें बाजार ही मिले। इसी बाजार में हमें मिले कई ऐसे हाथ जो अपने अपने हुनर के साथ अपनी मंजिल को तलाश रहे हैं। तो चलिए पहले जानते हैं इनका हाल।

0: सरिता, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये जो पारंपरिक हुनर है मूंग से बनाने वाली दलिया, टिकोहला, सारी चीजों को बनाने का ख्याल कैसे आया कि इसे व्यवसाय के रूप में लेकर आए हम?
1: तो बनाते तो हम भी थे, हमारी मम्मी भी बनाती थी, पर हम यहाँ अपने ससुराल में आए हैं तो हमारे पति देव पहले कढ़ाई का काम करते थे, पर वो पीट गया तो अब सोचते थे कि कुछ हमें नया करना है। गाँव में कपड़ा उपड़ा बेचते थे घुमाकर, तो वो देखते थे लेडीजों को छांव में बैठकर ये बुनाई करना, तो सोचते थे कि काश हम भी ये बनाकर मार्केट में बेचते तो लोगों को उतना ज्यादा बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो जो हम अपने ससुराल लेकर आए थे, एक मोना, एक डलिया, दौरी लेकर आए थे, तो वही वो लेकर साइकिल से ले जाकर बेचे तो वो बिक गया। तो फिर आए तो बोले कि अपने मम्मी से कहो कि बनाएं और तुम भी थोड़ा बहुत तो इसमें काम करो। जब एक एक करके हम लोग बनाना स्टार्ट किए और ये मार्केट में ले जाकर बहुत घुमा घुमा कर साइकिल पे बेचते थे तो बिकने लगा। तब हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत मेहनत किए, एक एक महिला को कन्विंस किए, पैसा जबरदस्ती ज्यादा ज्यादा देने लगे कि प्लीज आप छोटा छोटा आइटम बनाइए। तो एक एक महिला किसी तरह जुटती गई, मतलब 4 साल 5 साल 6 साल, ऐसे जुटते में 10 हो गई, 20 हो गई, तो इस टाइम तो मतलब 4 हो गए, 12 साल।

0: कि हमको काम करते हुए महिलाओं को एक एक करके जोड़े हैं, तो उनको हम लोगों ने पूरा मुंजाग्रास दिया, ऊपर से धागा वाला जो डिजाइन होता वो भी दिया, तो बनाना स्टार्ट कर दी। तो हम लोग घुमा घुमा कर बेचने लगे, पर हमारे पास मोबाइल नहीं था, तो हमारे भाई साहब वही हमें मोबाइल दिए थे, तो वही उसी मोबाइल पे हमने वीडियो डाल दिया, बहुत सारा वीडियो, उसमें बहुत सारा मुनिया डलिया दिखाए थे हम, बहुत ज्यादा। तब हमारे पास लमसम 150 महिला थी, उन लोगों का प्रोडक्ट पूरा इकट्ठा करके पूरा वीडियो शूट किए, और तब से इतना मतलब इसका डिमांड है, इतना फोन आने लगा है कि हम लोग पागल हो जाते थे, बात नहीं कर पाते थे, और आज भी उतना ही फोन आता है। तो मार्केट से भी लोग आने लगे, भैया हमें दीजिए हमें दीजिए, कोई मोबाइल के द्वारा वीडियो कॉल से खरीदारी करने लगे, और व्यापारी लोग तो बहुत ज्यादा फोन करते हैं, पर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं रहता है एडवांस की हम उन लोगों को दें, तो हम बस ये बोलते हैं कि समूह में बनाते हैं, हमारे पास बचता नहीं। तो इस लेवल पे आ गए हैं, और नेशनल ट्रेड शो में भी गए थे, हमारे ODOP के सर भेजे थे नोएडा में, जो इंटरनेशनल ट्रेड शो लगा था 2022 में, तो हम वहाँ पे गए थे, तो वहाँ से आए हैं, तो थोड़ी ज्यादा जानकारी मिली है, तब आकर अपने ब्लॉक से मिले हैं, ब्लॉक के अधिकारी लोग हैं, जिला अधिकारी लोग आए हैं, पूरा समूह में जोड़े हैं हमको और हमारी महिलाओं को। तो इस टाइम मतलब भगवान की कृपा से बहुत अच्छा से ये काम चल रहा है मेरा, पर अभी हम सोच रहे हैं कि महिलाओं को और जोड़े, तो हम ऑनलाइन से जुड़वा देते हैं, तो घर बैठे पूरे इंडिया में मिलेगा। जान दिए मैम, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग फोन कर चुके कि मैम प्लीज हमें घर के लिए दीजिए।
1: हम यही कह सकते हैं कि कला से किसी सीमा की मोहताज नहीं होती है।
0: जी मैम,
1: ये हम जानना चाहेंगे सरिता कि जैसे आपने अपने प्रोडक्ट को जो है ऑनलाइन डाला, यहाँ से आपका आत्मविश्वास किस लेवल पर बढ़ा?
0: बहुत ज्यादा बढ़ गया मैम, कि अब हमारे पास जो अगर हजारों हजारों 200,000 पीस मेरे पास रहे तो हम बेच सकते हैं, इतना हमारे पास हिम्मत हो गया है।
1: दोस्तों हमारे साथ हैं साधना गुप्ता लखनऊ से ही, जो कि कथाकारी वर्ग के साथ अपने काम को संपादित कर रही हैं। तो कथाकारी के बारे में हम साधना जी से ही जान लेते हैं।
2: कथाकारी ये है कि मैं लखनऊ के बेसिक टाकों को ही लिया है, लखनऊ का पूरा काम लिया है, पर उसको अलग अलग कथा के साथ में मैंने उसको ब्लेंड किया है। मेरे जो बूटे हैं वो मैंने पुराने एंसेस्ट्रल जो बूटे हैं जो अब आपको म्यूजियम्स में मिलते हैं, दिल्ली के म्यूजियम में है, पेरिस के म्यूजियम में है, और बहुत जगह बहुत सारे म्यूजियम्स में है, वहाँ के बूटों को लेकर के और उनको अपने स्टाइल में बना करके मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की।
1: लोगों का रुझान कैसा दिखता है इसमें?
2: लोगों को बहुत पसंद आ रहा है काम मेरा। मैं एग्जीबिशन में भी जाती हूँ, ऑनलाइन भी डालती हूँ, तो लोग देख करके मेरे काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। और मैं पारंपरिक कपड़ों को छोड़कर मैं सिल्क के कपड़ों पर और सिल्क के धागे मैंने मंगाए हैं, और सिल्क के धागों से भी काम करवा रही हूँ।
1: कुछ नयापन देने की कोशिश की है आपने चिकन वर्क?
2: जी हाँ।
1: आज वर्तमान में आधुनिक बाजारों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये जो आधुनिक बाजार है आपके प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाने में आज सहूलियत पैदा कर रहे हैं, या अभी लगता है कि वैसी ही सिचुएशन है जैसा कि पहले हम बनाते थे अपनी चीजों को और फिर उसके लिए दुकान पर ग्राहक के इंतजार में हम बैठते थे?
2: सहूलियत बहुत मिल रही है, लोग देखते हैं काम और उसकी सराहना करते हैं और मेरे सवाल भी डायरेक्टली कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। हम पारंपरिक बाजारों में जब जाते थे तो बहुत कम लोग ही आ पाते थे, बहुत कम लोगों की पहुंच में वो हमारी चीज नजर में आती थी, पर अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत ज्यादा लोगों तक हमारी प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं। हाँ, कई बार होता है लोग अपने हाथ से देख करके महसूस करना चाहते हैं चीजों को, वो थोड़े से एक ड्रॉबैक रह जाता है, अदरवाइज फर्क बहुत पड़ा है।
1: आपका जो प्रोडक्ट है वो ODOP के अंतर्गत आता है, तो इसको जो है अभी आप कहाँ तक ले जाने की तैयारी में हैं?
2: मैं तो इसको ले जाना चाहती हूँ इंडिया के हाईएस्ट लेवल तक, तो इसके अलावा मैं इंटरनेशनल लेवल तक भी ले जाना चाहती हूँ।
1: दोस्तों हमारे साथ है ज्योति मेहरोत्रा। ज्योति, आप सबसे पहले बताइए कि आप क्या प्रोडक्ट लेके लोगों के बीच में आ रही हैं?
3: कि मुझे बचपन से ही शौक था थोड़ा पेंटिंग का, तो उस शौक से मैंने इसको कन्वर्ट किया कपड़ों में लाने, क्योंकि कपड़ों की नेसेसिटी तो ऐसी है कि किसी भी एज की औरत को साड़ी का बड़ा शौक होता है, तो साड़ी विल बी दी बेस्ट, तो मैंने साड़ियों पे ही अपनी पेंटिंग को उकेरना शुरू किया।
1: तो ये साड़ियाँ आप अपनी कैसे सेल कर रही हैं, कैसे लोगों तक पहुँचा रही हैं?
3: मैम आजकल तो देखिए सोशल मीडिया इज दी बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेल आउट दी थिंग्स, तो ये है कि अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली मैंने शोकेस किया। एक वो कह लीजिए ब्लेसिंग है मेरे पास कि मैं इधर बनाती हूँ, शोकेस किया और तुरंत बिक जाती है, या मेरे पास उसी से रिलेटेड ऑर्डर्स आ जाते हैं।
1: आप डिजिटली इसको बेच रही हैं, ये बेचने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है?
3: हाँ जी मैम, बहुत अच्छा, मतलब मेरा रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहता है, मतलब एक आत्मविश्वास हमेशा रहता है मेरे साथ कि हाँ ये मैंने लगाया है तो 2-4-5 दिन के अंदर तो मेरा प्रोडक्ट निकाल ही जाना है।
1: अच्छा एक सवाल मेरे मन में है कि अगर आज का जो मॉडर्न बाजार है अगर ये ना होता तो आप इसको सेल करती अपने इस हुनर को
3: जी,
1: तब ज्यादा सहूलियत होती कि

0: में आप दिखा के बेच रहे हैं या अभी ज्यादा सहूलियत महसूस करते हैं?
1: मैम देखिए, डिजिटल होने का ये फायदा है कि अगर मैं सामने से कोई भी चीज सेल आउट करूंगी तो मुझे उसको दिखाने के लिए भी एक जगह चाहिए होगी। ऐसे मैंने सोशली उस इंसान ने मुझे अप्रोच किया, जो भी क्लाइंट हैं वो, और वो मेरे क्लाइंट भी बन गए हमेशा के लिए। उन्हीं प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अच्छे से निकल जाता है तो मुझे कोई जगह की भी जरूरत नहीं पड़ती। आई एम डूइंग इट फ्रॉम माई होम ओनली।
0: तो आप अपने घर से अपने हुनर को मॉडल,
1: मैंने घर में एक प्रॉपर प्लेस बना रखा है और बस वहीं से मेरी गाड़ी चल पड़ी।
2: भाई इनकी गाड़ी तो निकल पड़ी, लेकिन ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अभी भी अपने हुनर के साथ सही दिशा, सही अवसर और सही मंच की तलाश में हैं। आखिर उनकी गाड़ी कैसे निकलेगी? कौन उन्हें तैयार कर रहा है आधुनिक बाजार की चुनौतियों के लिए? सरकार और उद्यम विभाग की क्या भूमिका है? आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं और मिलते हैं उद्यम विभाग के अधिकारी से।
3: दोस्तों हम पहुंचे हैं उद्यम विभाग लखनऊ में और हमारे साथ हैं डिप्टी कमिश्नर अभिजीत गौतम जी। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं नई उड़ान में। सर आपका बहुत स्वागत है नई उड़ान कार्यक्रम में।
4: सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार
3: जी। हम आज जिस विषय के साथ हैं वो ये कि पारंपरिक हुनर का आधुनिक बाजार, यानी हुनर आज आधुनिक बाजार तक पहुंच रहा है और उद्यम विभाग की बड़ी भूमिका रहती है उद्योगों को बढ़ाने के लिए, उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए। तो ऐसे में सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि पारंपरिक जो हमारे हुनर हैं, कौन कौन से हुनर को लेके उद्यम विभाग जो है क्रियाशील है ज्यादा?
4: लखनऊ जनपद में सबसे पहले तो हम ODOP के प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि चिकनकारी और जरी दरोजी हमारा एक आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट है ODOP के अंदर। तो ये बहुत ही पारंपरिक उद्योग है लखनऊ का। यहाँ लगभग 2 लाख लोग इसमें पारंपरिक उद्योग से जुड़े हुए हैं। और भी उद्योग इसमें ऐड होते जा रहे हैं पारंपरिक, जिसमें कि सरकार ने नोटिस किया है कि और भी क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। तो उसमें विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में उनको लाभान्वित किया जाता है, जैसे कि टोकरी बुनकर है, ये भी बहुत पारंपरिक उद्योग है। सुनार है, लोहार है, कुम्हार, हलवाई, राजमिस्त्री और अन्य हस्तशिल्पी जो हैं किसी और चीज़ में, जैसे कि पॉटरी कर रहे हैं काम, उनको भी हम लोग बढ़ावा देते हैं। इसमें क्या होता है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में हम लोग 10 दिन की उनकी ट्रेनिंग भी कराते हैं, उनको उद्योग कैसे मॉडर्न तरीके से उद्योग किया जाए, कैसे व्यापार किया जाए, वो भी उसके गुण सिखाए जाते हैं। रेसिडेंशियल ट्रेनिंग होती है उनकी 10 दिनों की। उनकी आजीविका का ख्याल रखते हुए उनके खाते में डायरेक्ट 4,500 रुपये पहुँचाए जाते हैं और सक्सेसफुल ट्रेनिंग के बाद उनको टूलकिट्स भी उसी ट्रेड की प्रोवाइड की जाती हैं। हम चाहते हैं कि जो लाभार्थी है वो सिर्फ वहाँ पे ना रुके, उसके आगे जाके अपना व्यापार करे। उसके लिए उसका अगला चरण होता है हमारा CM युवा मिशन, जिसके माध्यम से हम लोग उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज और बिना गारंटी को उपलब्ध कराते हैं
3: जी।
4: इसका होता यह है कि पूरा एक इको सिस्टम बन जाता है कि उसने पहले हमारे से ट्रेनिंग करी, फिर टूल किट ली, फिर उसने लोन लेके उसने अब वो उसको स्वरोजगार की तरफ ले गए। वो खुद भी किसी का रोजगार ना करे और लोगों को रोजगार देना चाहे, तो हमारा पर्पस उद्योग विभाग का यही है।
3: नहीं है तो अब ऐसे में बहुत मायने रखता है कि जो हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक उसकी बिक्री हो, तो इसके लिए क्या प्रावधान किए जा रहे हैं?
4: इसके लिए प्रावधान ये है कि हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ में एक MOU हमारे विभाग का हुआ है। उसमें अगर कोई भी लाभार्थी जो है अपना प्रोडक्ट बनाए कि हमारे पास आता है और दिखाता है कि हमारी डिज़ाइन जो है इसको अच्छी करी जाए, हम उसकी डिज़ाइन को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ में उसको बैठते हैं, वार्ता करते हैं और उसके डिज़ाइन के प्रोडक्ट्स को अच्छा पैकेजिंग करते हैं। बाजार में आज के समय में जो दिखता है वही बिकता है
3: जी,
4: सिंपल सी बात है। तो उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो उसी 100 रुपये के मूल्य को उसको 500 रुपये मिल सकता है बड़े किसी शहर में। तो हमारा पर्पज़ ये है कि उसको पैकेजिंग अच्छी हो जाए, इसी तरीके से उसको और बाज़ार अच्छा मिलने के लिए हमने जो है फ्लिपकार्ट और अमेजन के साथ MOU हमारे विभाग के हैं, उनके अपने वेब पेजेस पे हमारे ODOP प्रोडक्ट्स के इंस्टॉल वो अपना लगा सकते हैं और उसमें फ़ायदा उनको ये मिलता है कि उनको बेसिक चार्जेस ज़्यादा जो ऑनबोर्डिंग चार्जेस होते हैं वो कुछ समय के लिए वेव ऑफ कर रखा उन्होंने, तो ये बेनिफिशियल उनके लिए रहता है। जो जो लोग जुड़ते हैं तो उनको एक प्रकार से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सहारा मिलता है और ऐसे बहुत सारे हैं लोग जिन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है।
3: अगर किसी को अपने प्रोडक्ट को बाजार तक पहुंचाने के लिए सहायता चाहिए उद्यम विभाग से तो वो कैसे सहायता प्राप्त कर सकता है?
4: जैसे विभाग द्वारा बहुत सारे मेले जो हैं देश विदेश से लेके हमारे प्रदेश के सारे मेले नोटिफाई कर रहे हैं, जो कि फेमस मेले होते हैं, उनमें जाने के लिए माल भाड़ा ले जाने के लिए अगर कोई व्यक्ति जा रहा है उसका पैसा रिम्बर्स करते हैं, ट्रेन का पैसा है, एक आदमी का ट्रेन का पैसा है, उसमें कुछ लिमिट्स हैं, 7,500 रुपये का आदमी को माल भाड़ा ले जाने के लिए पैसा मिलता है। अगर विदेश जा रहा है वहाँ तक के लिए पैसा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मेले हैं, जैसे कि वहाँ प्रगति मैदान में एक बहुत बड़ा मेला लगता है तो वहाँ पर भी हमारे यहाँ से लाभार्थी जाते हैं, उनको हम पैसा रिम्बर्स करते हैं। तो इससे उनको बाजार में जाके एक तो बाजार भी मिलता है और उनका जो खर्चा हो रहा है वो भी हम विभाग द्वारा सहन किया जाता है, जिससे उनको और प्रोत्साहन मिले।
3: कोई हमारी ऐसी वेबसाइट जिस पर ये सारी जानकारियाँ उपलब्ध हों और जो लोग पढ़े लिखे हैं कम से कम वो इससे अवगत हो सकें?
4: हमारी वेबसाइट msme.up.gov.in है, उसमें हमारी विभाग की सारी योजनाएं ऑनलाइन हो चुकी हैं। लेकिन अगर किसी को लाभार्थी को हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है तो हमारे पास अपने हमारे जिला उद्योग केंद्र

0: में आए, हम उनको पूरी हैंड होल्डिंग करके फॉर्म भी पूरा भराया जाता है
1: जी।
0: सीएम युवा मिशन में हमारे 2 सीएम युवा फेलोज लगाए गए हैं। इन्वेस्टर फ्रेंडली होने के लिए हमारे पास उद्यमी मित्र हैं जो कि आपको सारी एनओसीज दिलवाने में हेल्प करते हैं ताकि किसी इन्वेस्टर को कहीं इधर उधर जाना ना पड़े, एक ही जगह पे आके उसको सारे लाभ मिल जाए विभाग के थ्रू।
1: कई बार लोग अपना काम शुरू करने से पहले ही हम पता नहीं इस सामान को बेच पाएंगे कि नहीं बेच पाएंगे, मुनाफा होगा कि नहीं होगा, ये बहुत सारा डर होता है कई बार, ऐसे लोगों के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं मैसेज ये देना चाहूंगा कि एंटरप्रेन्योर बनना, सोचना, ये बहुत बड़ी मेहनत, बहुत कॉन्फिडेंस की बात है, करेज की बात है। आज के समय में अगर कोई बच्चा या लाभार्थी इसमें आता है तो स्ट्रगल के लिए तैयार रहे। ये स्ट्रगल है, थोड़े समय का स्ट्रगल है, अगर आप मार्केट में टिक गए तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। परेशानियां आती शुरू में, हमारा विभाग हर समय पे खड़ा हुआ है उनके साथ पे। कहीं कोई अकाउंटिंग की दिक्कत हो रही है, अगर किसी जीएसटी की प्रॉब्लम हो रही है उसमें भी हम उनको हेल्प करते हैं, अगर कोई एनओसी की प्रॉब्लम हो रही है तो उसमें भी हेल्प करते हैं, फायर से लेके सब एनओसीज में हम लोग हेल्प करते हैं। लेकिन उद्यमता उसके अंदर होनी चाहिए, कुछ कर गुजरने की उसके अंदर होगी तो वो कर ले जाएगा लाभार्थी, और अगर शुरू में ही वो हार मान जाएगा तो दिक्कत होगी। अगर आपके कोई भी श्रोता ऐसी कोई दिक्कत फेस कर रहे हो तो वो हमारे कार्यालय आए जिला उद्योग केंद्र लखनऊ में, हम पूरी सहयोग करेंगे उनका।
2: दोस्तों, किसी ने सही कहा है, रास्ते अक्सर वही बनते हैं जहां चलने का हौसला होता है। आज जिन लोगों की गाड़ी चल पड़ी है उनकी कहानी प्रेरणा है, और जिनकी अभी नहीं चली उनके लिए उम्मीद है कि सही जानकारी, सही प्रशिक्षण और सही अवसर के साथ उनका सफर भी जल्द शुरू होगा। इसी उम्मीद के साथ कि हर हुनर को पहचान मिले और हर सपने को बाजार।

तो दोस्तों, अभी आप श्रृंखला कौशल क्रांति के अंतर्गत सुन रहे थे ये प्रस्तुति, जिसके अंतर्गत आज का विषय था पारंपरिक हुनर का आधुनिक बाजार, हुनर से नए बाजार तक। ये कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया था शालिनी सिंह ने। और आइए अब आपको कुछ ऐसी बातें बता दें जिनको सुनकर आपको अच्छा लगेगा। हमारे देश की सुरक्षा के लिए जो हमारी रक्षा प्रणालियाँ हैं उनका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसी क्रम में आपको बता दें कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने उड़ीसा तट के पास APJ अब्दुल कलाम द्वीप से लॉन्ग रेंज अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण पूर्ण कर लिया है। है ना अच्छी बात। अगली अच्छी बात यह है कि मजबूत तरीके से की गई पहल के बाद उत्तर प्रदेश अब देश में सैन्य ड्रोन नवाचार का नेतृत्व करेगा। इस कार्य के लिए IIT कानपुर में नेशनल मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी हब की स्थापना की जाएगी। एक और अच्छी खबर पर्यावरण के क्षेत्र से है। आपको बता दें कि लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर दरोगा खेड़ा के आसपास NHAI की खाली पड़ी जमीनों को ग्रीन बेल्ट के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा, बदला जाएगा। फलदार पेड़ लगाए जाएंगे, छायादार पेड़ लगाए जाएंगे, पार्क बनाए जाएंगे और पार्कों में झूले भी लगाए जाएंगे। तो इतनी अच्छी अच्छी बातें मैंने आपको बता दी। अब एक अच्छा सा गीत हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

तो दोस्तों, अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं अवसरों की जानकारी। आप लिख लीजिए, उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आप आवेदन कर सकते हैं 543 पदों के लिए, जिनमें की समीक्षा अधिकारी का पद भी शामिल है। इसके साथ अन्य पद भी हैं। अंतिम तिथि है 21 जून 2026 और स्नातक और अन्य योग्यताएं जो हैं वो आपके पास होनी चाहिए। आवेदन के लिए वेबसाइट है allahabadhaibadhicourt.in, यानी कि allahabadhaicourt.in, यानी कि उच्च न्यायालय में आप बहुत सारे पद हैं जिनमें से अपने अनुसार किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 395 पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अंतिम तिथि है 23 जून 2026। आयु सीमा में कम से कम आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष तक के व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन भेज सकते हैं। वेबसाइट है rssb.rajasthan.gov.in, यानी कि rssb.rajasthan.gov.in। और बस अब आज समय इतना ही है। दीजिए अपनी रेडियो दोस्त रीना को इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।

जनपद सुल्तानपुर से हमें सूचना मिली है कि कशिश उर्फ खुशी दिनांक 11 मई सन 2026 से लापता हैं। कशिश की आयु लगभग 16 वर्ष है। कद 5 फीट है, गंदुमी रंग है, एक गहरा मजबूत शरीर है, चेहरा लंबा है, आंखों और बालों का रंग काला है। लापता होने वाले दिन कशिश उर्फ खुशी ने आसमानी रंग की जीन्स और पीले रंग का टॉप पहन रखा था। इनके मिलने की सूचना आप हमें इस पते पर दे सकते हैं, थाना अध्यक्ष कूरेभार जनपद सुल्तानपुर।

श्रोताओं, अभी आप नई उड़ान कार्यक्रम सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। स्थान बहादुरपुर, थाना कूरेभार।

शिवगनपुर थाना मेरापुर जनपद फरुखाबाद से हमें सूचना मिली है कि राखी पत्नी उधम सिंह दिनांक 14 अक्टूबर सन 2025 से लापता हैं। इनका आंख, नाक, कान औसत है, एक गहरा शरीर है, कद 5 फुट है, रंग गोरा है और उम्र लगभग 26 वर्ष है। इनके मिलने की सूचना आप कृपया हमें इस पते पर दें। उपनिरीक्षक थाना मेरापुर फरुखाबाद। इनकी मिलने की सूचना आप इस मोबाइल नंबर पर भी हमें दे सकते हैं, 9140239950। इसे पुनः सुन लीजिए, 9140239950।

0: निवासी ग्राम शोगनपुर थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद से ही हमें सूचना मिली है कि मुस्कान पत्नी विकेश ग्राम शोगनपुर थाना मेरापुर जनपद फर्रुखाबाद से दिनांक 14 अक्टूबर सन 2025 से सुबह 10 बजे से लापता हैं। मुस्कान की आयु 22 वर्ष है, कद 5 फुट 5 इंच है, रंग गोरा है। लापता होने वाले दिन इन्होंने गुलाबी साड़ी, छींटदार और पैरों में काली जूती पहन रखी थी। इनके मिलने की सूचना आप कृपया हमें इस पते पर दें, थाना अध्यक्ष थाना मेरापुर फर्रुखाबाद। मोबाइल नंबर नोट कर लें, 9454403328। इसे पुनः सुन लीजिए, 9454403328। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 6:20 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
3: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। G7 शिखर सम्मेलने भागं ग्रहीतुं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य एवियन नगरं प्राप्तवान्। ब्रास्तिसल्लावायाम् आयोजितायाः वाराणसी प्रदर्शिन्याः प्रशंसां कुर्वन् प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय सम्बद्धानां सुदृढीकरणे कला संस्कृतेः भूमिकां रेखांकितवान्। नीट यूजी पुनः परीक्षायाः पूर्वं सर्वकारेण अस्य मासस्य 12 दिनांकपर्यन्तं टेलीग्राम प्रतिबंधितम्।

0: पंचो जय हिंद।
1: ज्योति बहनी।
0: हाँ राजू भैया।
1: बहनी देखो, हम सब जने जानी थे कि स्वस्थ रहे खातिर भोजन के बड़ी भूमिका होत है, और भोजन भी अगर संतुलित होए तब है बढ़िया पोषण मिल पावत है।
0: बिल्कुल भैया, देखो जो है सबसे ज़्यादा जो है पोषण की ज़रूरत जो है अपने बच्चन का हुआ थे और जो है किशोर किशोरियन का हुआ थे,
1: हाँ।
0: है ना। तो इके लिए जो है शुरुआत में, मतलब जैसे एकदम शुरुआत से जन्म से ही हम लोगों का अपने बच्चन का और जो हमारी जो माताएं हैं जो बच्चन की देखभाल करती हैं, स्तनपान करती हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए भैया।
1: सही कहो बहनी, और यही विशेष ध्यान खातिर सरकार भी लगातार प्रयास करत है, और एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है जिसका नाम है राष्ट्रीय पोषण योजना। राष्ट्रीय पोषण योजना में यहाँ जैसे कि हम सभी जने जानी थे कि कहा जाते कि बचपन से जोन मजबूत हो जाते, शरीर मजबूत होते, स्वस्थ अच्छा बच्चा होते, तो वो आगे बढ़ के भी उनका स्वास्थ्य अच्छा रहा थे और अपने काम का बढ़िया से कर पाओ थे। वैसे यहू योजना में यू ध्यान रखा जाते हैं कि 6 साल तक के जो बच्चा हैं, इसके अलावा जो गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, इनके सबके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाए और इनका पोषण के कमी ना हो पावे।
0: बिल्कुल भैया, देखो जो यह योजना है उसका मकसद जो है सिर्फ जो है भोजन उपलब्ध कराए नहीं भैया है,
1: हाँ,
0: बल्कि लोगन में पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ावे है। गांव गांव में आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से इमा मातन और बच्चन के देखभाल का काम होते भैया।
1: सही कहो बहनी, तो इसे का होते कि जो भी घर की महिलाएं हैं वे के बारे में जानकारी आसानी से पाई जाती हैं, उनके आसपास के ही सखी सहेली में से कोनो आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री होते तो वो उनकी भाषा में समझावत है कि पोषण के और का महत्व है। साथ ही साथ वहाँ पर जो भोजन मिलत है या जो मध्यान्ह भोजन है या और तरह के भोजन है, आंगनबाड़ी में भी भोजन के व्यवस्था होते तो वे सब यह सुनिश्चित करते हैं कि खून के कमी ना हो पावे, प्रोटीन का स्तर बना रहा है जिसे कि सही बढ़वार मिल पावे।
0: बिल्कुल भैया, देखो जैसे कि अगर हमका जानकारी रही कि महंगे भोजन में नहीं बल्कि जो हमका चीज़ें आसानी से मिल जाए, जैसे अपने गांवन में है दूध दही हरी सब्जी, है ना, मौसमी फल, ये सब मिल जाए तो हमारे शरीर में जो इनका जानकारी मिल जाए, तो अगर हम इनका अच्छे से खाई अपने बच्चन को खिलाई तो पोषण जो हम लोग का पर्याप्त मिल जाए भैया।
1: सही कहो बहनी, यह बात बिल्कुल ध्यान दे के रहे कि ऐसा जरूरी ना है कि जो चीज़ कम उपलब्ध है, महंगी मिल रही है या दूर से आ रही है वह नीक है। अपने घरों में है, अपने खेतन में है पैदा होने वाली चीज़ें वह सबसे ज़्यादा पौष्टिक होती हैं। बस ज़रूरत यह है कि उनका संतुलित प्रयोग करें के यहाँ है। जैसे हम जब खाना खाई तो उमा जो विशेषज्ञ बतावत हैं कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, ये सारी चीज़ें हो चाहिए। खास तौर से प्रोटीन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, काहे से कि प्रोटीन से हमारा शरीर बनत है और हमका ताकत मिलत है।
0: बिल्कुल भैया, देखो ये सब चीज़ें खाए के बाद भैया जोन तकनीक आजकल आई हैं जिसे जिसकी मदद से बच्चन के लंबाई और उनका वजन और इस तरह से करके उनका स्वास्थ्य पर ध्यान रखे है जैसे, है ना। और दूसरी बात भैया बता दी,
1: हाँ।
0: पोषण योजना में स्वच्छता पर भी बड़ा जोर दिया जाता है ना, साफ पानी, हाथ धोवे पैर धोवे की आदत है ना, साफ सुथरा रहे, वातावरण स्वच्छ रहे, इससे पोषण का दुगना फायदा मिलता है भैया।
1: बिल्कुल बहनी, और जब पोषण अच्छा हो, शरीर स्वस्थ हो, सब मन ही बढ़िया हुई है तो निश्चित रूप से वे अपने काम में बढ़िया मन लगाए पई हैं, और जब हम पंच बढ़िया से अपन काम कर पेबा तो निश्चित रूप से हमार भारत मजबूत बनी, समर्थ बनी। तो भारत के यहाँ समर्थ करे में यहाँ और भी एक वर्ग है जिसकी विशेष भूमिका होते है, जिसका हम पंच श्रमिक वर्ग के रूप में जानी थे। बहुत लोग हैं जो ई माध्यम से काम करते हैं और हर छोटे बड़े काम में यहाँ श्रमिक के जरूरत पड़ते है, तो कैसे एक श्रमिक वर्ग सशक्त हो सकते है और कैसे वो भारत के यहाँ समर्थ बनावे में

0: अपन योगदान कर सकत हे, यही बात पर अपन बात बतावे आए हैं राकेश कुमार सिंह भैया। तो आओ इनसे जाना जाए सशक्त श्रमिक समर्थ भारत ई विषय में है, ई का कहा चाहते हैं।
1: बिल्कुल भैया,
2: सशक्त श्रमिक समर्थ भारत, ये सिर्फ चार शब्द नहीं हैं, ये भारत के भविष्य का मंत्र है। किसी भी इमारत की नींव अगर मजबूत ना हो तो वह इमारत टिक नहीं सकती। ठीक वैसे ही हमारे देश की नींव है हमारे श्रमिक भाई बहन। चाहे खेत में अन्न उगाने वाला किसान हो या फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, सड़क बनाने वाला हो या फिर घर बनाने वाला राजमिस्त्री, हर एक श्रमिक के पसीने से ही भारत का निर्माण हो रहा है। साथियों, जब हम भारत की ताकत की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सेना, वैज्ञानिक, बड़े बड़े उद्योग आते हैं। लेकिन जरा रुकिए, सुबह की जो चाय आप पीते हैं वो पत्ती किसने तोड़ी? जिस सड़क पर आप चलते हैं वो किसने बनाई? जिस बिल्डिंग में आप पढ़ते हैं उसकी एक एक ईंट किसने रखी? इसका जवाब है हमारे श्रमिक, किसान, मजदूर, कारीगर, सफाई कर्मचारी, ड्राइवर, निर्माण श्रमिक। यही भारत की असली सेना है। मौसम की मार हो या समय की चुनौती, हमारा श्रमिक न रुकता है, न थकता है और न ही डिगता है। सर्दी, गर्मी, बरसात और लू, हर विषम परिस्थिति को चीर कर जब श्रमिक के पसीने की बूंद माटी को सींचती है तब राष्ट्र बनता है समर्थ राष्ट्र। इसी कारण आज हमारा श्रमिक गवर्नेंस का एक हिस्सा है। श्रमिकों के श्रम की महत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि प्रयागराज महाकुंभ में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा श्रमिकों को पाथ प्रक्षालन हो या काशी व मथुरा में श्रमिकों पर की गई पुष्प वर्षा। महात्मा गांधी ने कहा था कि श्रम में ही सच्ची पूजा है। जो देश अपने श्रमिकों का सम्मान करता है वही देश वास्तव में आगे बढ़ता है। श्रम साध्य जीवन की साधना में ही समर्थ भारत की परिभाषा साकार होती है। गीता का कर्मवाक्य, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, महामंत्र कर्म प्रधानता का संबल देकर सशक्त श्रमिक और समर्थ भारत को प्राण प्रतिष्ठित करता रहा है। सनातन संस्कृति के साधक, रामचरितमानस के प्रणेता, संत शिरोमणि कवि तुलसीदास जी ने भी कर्म की प्रधानता को श्रेष्ठ बताकर अपने विचारों में सार्थक गुणानुवाद किया है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कहकर श्रम की सार्थकता को समर्थ भारत के लिए स्वर प्रदान किया है। सशक्त श्रमिक का मतलब सिर्फ मजबूत हाथ पैर वाला मजदूर नहीं है। सशक्त श्रमिक वह है जिसे उचित मेहनताना मिल रहा है, जिससे वह अपने परिवार को सम्मान से पाल रहा है, उसे सुरक्षित माहौल मिल रहा है। फैक्ट्री, खदान या खेत में काम करते समय उसकी जान जोखिम में नहीं पड़ रही है। जिसे शिक्षा और कौशल का अधिकार मिल रहा है, वह नए जमाने की मशीनों और तकनीक के साथ कदम मिला पा रहा है। जब श्रमिक सशक्त होगा तो भारत अपने आप समर्थ बन जाएगा, उत्पादन बढ़ेगा, कौशल से लैस और खुशहाल श्रमिक दोगुनी मेहनत करेगा। मोदी जी के महामंत्र मेक इन इंडिया की सफलता का यही कारण है। जब बनाने वाले हाथ मजबूत हो रहे हैं, सड़क, पुल, मेट्रो, रॉकेट सब श्रमिकों की मेहनत से बनते हैं। सशक्त श्रमिक ही भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। आज का जमाना AI और मशीनों का है। अगर हमारा श्रमिक सिर्फ हथौड़ा चलाना जानता है तो वह पीछे रह जाएगा। स्किल इंडिया, PMKVY जैसी योजनाएं इसी सशक्तिकरण के लिए हैं। ड्रोन चलाने वाला किसान, रोबोट चलाने वाला तकनीशियन, यही नए भारत का नया श्रमिक है। हमारी सरकार भी श्रमिकों के लिए कई योजनाएं चला रही है। ई श्रम कार्ड, न्यूनतम मजदूरी कानून, श्रमिक बीमा योजना, कौशल विकास मिशन। ई श्रम पोर्टल पर 30 करोड़ से ज़्यादा श्रमिकों

0: रजिस्ट्रेशन होना बताता है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है। लेकिन सिर्फ सरकार से काम नहीं चलेगा, हमें, आपको, समाज के हर व्यक्ति को श्रम का सम्मान करना होगा। हमें मजदूर शब्द को गर्व का विषय बनाना होगा। विश्वकर्मा पूजा सिर्फ मूर्ति पर नहीं, हर उस हाथ पर होनी चाहिए जो कुछ बनाता है। श्रमेव जयते को सिर्फ नारा नहीं, संस्कार बनाना चाहिए। समृद्ध भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से संपन्न होना नहीं है, बल्कि एक ऐसा समावेशी समाज बनाना है जहां देश के हर नागरिक, विशेषकर मजदूर वर्ग के जीवन स्तर में सुधार हो। जब एक श्रमिक आर्थिक रूप से मजबूत होता है तो उसका परिवार शिक्षित होता है, जिससे संपूर्ण समाज और राष्ट्र की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्रम कानूनों में सरलीकरण करते हुए 4 लेबर कोड लागू कर दिए हैं। आज़ादी के बाद यह श्रमिकों के हित में किया गया सबसे बड़ा परिवर्तन है। यह देश के कामगारों को बहुत सशक्त बना रहा है। इससे जहां नियमों का पालन करना बहुत आसान होगा, वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड जैसी योजनाओं के संचालित होने से श्रमिक बंधुओं को पूरे देश में कहीं भी जाकर रोजगार करने में आसानी प्राप्त हुई है। अब वे अपने राशन कार्ड से देश के किसी भी हिस्से में काम करते हुए सरकारी सस्ती दरों पर राशन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समर्थ भारत के लिए विकास की जो परिभाषा गढ़ी है, उसमें श्रम को ही प्रधान माना है। यही कारण है कि श्रमिकों के सशक्तिकरण के लिए पुराने कानूनों को बदलकर नई परिभाषा को आकार देकर श्रमिकों को सशक्त संवर्धन प्रदान कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को समर्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका में भारत के विकास का नया मॉडल तैयार हो गया है, जिसे पूरी दुनिया के लोग चमत्कार के रूप में देख रहे हैं। जो श्रमिक दूसरों के आश्रित होकर कार्य कर रहे थे, आज वो खुद स्टार्टअप्स या अन्य योजनाओं को संचालित करके दूसरों को रोजगार प्रदान कर खुद के साथ भारत को भी समृद्ध बना रहे हैं। वहीं डबल इंजन सरकार के रूप में कार्य करते हुए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कई प्रभावी योजनाओं को लागू कर दिया है, जिसमें श्रमिकों को रोजगार के लिए डिजिटल लेबर चौक ऐप, स्वास्थ्य के लिए जनपदों में 300 बेड के ESIC अस्पतालों की स्थापना, श्रमिक डोरमेट्री और कैंटीन भी शुरू की जा रही है। श्रमिकों के बच्चों के लिए उत्तम शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं, ताकि श्रमिकों के बच्चों का भी भविष्य उज्जवल रहे। साथियों, याद रखिए, जिस देश में श्रमिक के चेहरे पर मुस्कान है, उस देश को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम श्रम का सम्मान करेंगे, श्रमिक का सम्मान करेंगे। देश का एक एक व्यक्ति राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देगा तो फिर वो दिन दूर नहीं जब हम प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित विकसित समर्थ भारत के लक्ष्य को समय से पहले ही प्राप्त कर लेंगे।
1: ज्योति बहनी।
2: हाँ राजू भैया।
1: बहनी, राकेश कुमार सिंह भैया सशक्त श्रमिक समर्थ भारत ये विषय पर बड़ी निकी तरह से अपन बात कहीं, एक ही लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
1: और बहनी देखो, हम सभी जने जानी थे कि कुछ करे खातिर सबसे जरूरी होते है कि हमार काम काज बढ़िया होए, और काम काज के यहाँ बढ़िया बनावे खातिर हमका पंचन के यहाँ अपने आप के यहाँ समय के साथ जोड़े रहे के यहाँ होते। तो यह हम कही थे सभी पंचन सने और हमूँ पंचन के यहाँ यह कोशिश रहा चाहिए कि जो भी काम हम करी थे उमा अपनी क्षमता के यहाँ बढ़ाई, अपने कौशल के यार विकास करी, और अगर कोई प्रशिक्षण मिल रहा है आसपास तो उका जरूर ले ली, क्योंकि वह से हमारे काम आगे बढ़ सकत है।
2: बिल्कुल।
1: और कौशल कहाँ बढ़ावत भय, हम पंच अब तो देखे थे कि सरकार बहुत ऐसी चीज़ें लेके आवत है कि जिमा कोई

0: खर्चा भी ना हो रहा है, और जो भी हमारे अंदर हुनर है उसका निखारे खातिर हम पंच कहीं जो अलग अलग प्रशिक्षण केंद्र हैं, कौशल विकास केंद्र हैं, उन पर जाए के यहाँ प्रशिक्षण ले सकी थे।
1: बिल्कुल भैया,
0: तो
1: देखो
0: हाँ
1: इके लिए सबसे बड़ी जो हम लोगों का चाहिए वो है कि हम जानकारी रखें और अपन जागरूकता बढ़ावा करी।
0: बिल्कुल बहनी, और जागरूकता और उन्नति के साथ साथ परंपरा भी हमारे जीवन का एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल भैया,
0: और यही समय देखो समय चल रहा है कि हम पंच जो जेठ का महीना होते हैं इमा हर मंगल के यहाँ भगवान हनुमान जी जो हैं उनका हम पंच याद करी थे, और लखनऊ में है और पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ मंगलवार के यहाँ लोग भंडारा करते हैं, तरह तरह के भजन गावत हैं, सड़क पर निकलो तो देखते बन परत है। तो आज अपनी बैठकी में यहाँ हम पंच एक लोक भजन लेके आए हैं जिमा हम पंच बजरंग बली के यहाँ याद करी थे। स्वर है डॉक्टर के कल्पना एस बर्मन बहनी का, तो आओ सुना जाए।
1: बिल्कुल।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivy.ac.in के प्रवेश पृष्ठ पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
3: ज्योति बहनी।
4: हाँ राजू भैया।
3: बहनी हम पंच देखो खूब अपने काम काज करत रहे थे और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जो उन काम करी थे वो खेती से जुड़ा भुआ हुआ थे और खेती के काम कभू यू है कि एक के बाद दूसरा लगे रहा थे। ऐसा ना होते कि जैसे दफ्तर में छुट्टी हो जाते या कोनो अध्यापक है तो उसका गर्मी में छुट्टी मिल गए, जाड़े में छुट्टी मिल गए, मूल किसानन खातिर कभी छुट्टी ना होते।
4: हाँ भैया देखो एक के बाद एक जो है फसलें आवत जाती हैं और हम लोग करत जाई थे और समय समय पर, मतलब फसल का मतलब है कि खेती किसानी का मतलब है कि एकदम सही समय पर और सही जो है काम करे पड़ी खेत।
3: बिल्कुल बहनी। और सब काम करे के बाद एक ऐसा काम है जो सातों दिन 24 घंटा करे पर थे वो होते निगरानी।
4: बिल्कुल भैया।
3: कि अगर काम दिन में खेत में करी आए हो, फसल अगर तैयार है आपके खेत में लगी है तो निश्चित रूप से आपका रातियों में सतर्क रहा के यहाँ है कोनो मवेशी ना आ जाए या कोनो मौसम के अचानक से ऐसा उथल पुथल ना हो जाए जो कि नुकसान पहुँचाया जाए। तो यही खातिर हमारे जो खेती है वो बहुत अच्छा काम भी है लेकिन लगातार सतर्कता चाहत है, लगातार जोखिम के प्रति सचेत रहे के बात साचत चाहत है। और वो जो सजगता है वो हर जगह है, खेत में भी है और खेत में इस्तेमाल होए वाले चीजन कहाँ लाभों में है।
4: बिल्कुल भैया देखो अब जैसे हम लोग फसल जैसे अब हमारा आवे वाली है, जैसे हम लोग धान लगे हुए ना, तो पहले से हमारा जो है एक महीना पहले से खेतन का तैयारी शुरू हो जाते है। उसके बाद भी हाँ, अगर जो कर नर्सरी डायरेक्ट नर्सरी सीधी बोआई है, सीधी बोआई बोआई मगर भैया इका जो है पूरा जो है क्रम से करे है ना। जैसे लगाओ एक बात ध्यान दिया कि घास फूस ना हो गए, घास फूस ना हो गए तो आराम से उसका जैसे टाइम टाइम पर समय समय पर उसका पोषण जरूरी है भैया।
3: बिल्कुल बहनी। और पोषण के खातिर हम पंच तरह तरह के उर्वरक खाद और घरेलू उर्वरक जैसे कि गोबर की खाद ये सब इस्तेमाल करे थे लेकिन जोनी चीज़ें हम बाजार से खरीद लाए थे तमाम तरह के उर्वरक जैसे ज़्यादातर यूरिया, DAP, पोटास ये सब लोते हैं।
4: बिल्कुल भैया।
3: तो उनकी शुद्धता के पहचान होना बहुत ज़रूरी होते
4: हैं। बहुत ज़रूरी है भैया। देखो इमा कबो गलती ना करे चाहिए, काहे से जब एकदम मौके पर हम उर्वरक खरीदे जाइबे तो हमका बहुत ज़्यादा संभावना रहता है कि हमका गलत मतलब खाद मिल सकता है। यानी कि हम अगर जोनी आधिकारिक वाली जो बना जाए दुकान पर,
3: हाँ, सरकारी दुकान से लाओ तो ठीक है,
4: गलती हो सकत
3: लेकिन हो सकत है जब तुमका जरूरत है तब है सबका जरूरत हुई तो अगर तुरंत पहुंचो तो हो सकत है कि दिक्कत हो मिले में यहाँ। तो इसलिए पहले से योजना बनावे चाहिए। और दूसरी चीज यह है कि जब हमारे हाथ में कोई उर्वरक आवत है तो वह केर पहचान तब हूँ कर सके थे हम। जैसे यूरिया है, हम सब है जने जाने थे कि बढ़िया गोल चमकदार सफेद दाना होते, दाना लगभग बराबर होते और अगर पानी

0: करो तो बढ़िया घुल जाते, आसानी से घुल जाते। और साथ ही साथ अगर उनका गर्म करो तो गर्मी पाए कहाँ, पिघलते हो फिर भाप बन के उड़ जाते हैं, यानी
1: बिल्कुल
0: कुछ
1: भैया।
0: बचत नहीं है।
1: हाँ, और देखो एक और हम जानी थे कि पहचानने को उपाय है कि अगर यूरिया जैसे अच्छी है तो कब पानी में डरी हो, फिर हाथ डरी हो तो बिल्कुल ठंडा पानी रही।
0: हाँ बहनी, बिल्कुल सही बात है। नमी के साथ में अगर आवत है तो उसका तापमान कम हो जाते हैं। अब ऐसा देखो, डीएपी है तो डीएपी भी इसे थोड़ा सा अलग होते हैं। यूरिया के दाना थोड़ा मुलायम होते, लेकिन डीएपी के दाना कठोर होते, साथ ही साथ हल्के काले भूरे या धूसर रंग के होते।
1: और देखो भैया, जैसे डीएपी के यहाँ तुम एक और तरीका है एक जाने का कि अगर दानन के यहाँ तवा गरम करी हो ना तो ये फूल जाई है। इके
0: हाँ
1: अलावा डीएपी में यहाँ खाने वाला चूना मिला एक रगड़ी हो तो तीखी गंध, बहुत
0: हाँ
1: तीखी गंध तुमको आई, तो
0: हाँ
1: इसका मतलब
0: क्योंकि
1: समझो वो असली है।
0: हाँ अमोनिया गैस बताओ थे विशेषज्ञ बने थे, वो
1: हाँ
0: बहुत तीखी गंध दे थे। और उसके बाद अगर पोटास की बात करो तो पोटास देखत में इस लागत है कि जैसे नमक के रे पाउडर में यहाँ लाल रंग मिला हुआ हो, यानी कि
1: बिल्कुल
0: लाल रंग का बारीक पिसा हुआ नमक होए, तो वही इस लागत है। उसका पानी में घोलो तो उसके जो लाल लाल कण है वो पानी के ऊपर तैरे लागत है।
1: और भैया देखो, अगर पानी में डाले पर दाने आपस में चिपक जाएं तो समझ लियो नकली है।
0: तो बहनी ये सब चीजन के रे पहचान करे के रे बाद निश्चित रूप से हम सबका सही उर्वरक जरूर मिली। और बहनी जब हमका उर्वरक मिलत है तो हम सीधे अपने खेत अपनी फसल तरफ जाई थे। और अब जो आवे वाली फसल है वह खरीफ के रहे। और जैसा कि अब हम सब जने जाने थे कि पुरान खेती जोन रहा है वह पारंपरिक रहा है, लेकिन अब खेती में नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कुछ प्रयोग तो ऐसे हैं जो पुरानी चीजन के फिर से लाए रहे हैं।
1: बिल्कुल भैया।
0: जैसे कि पहले हमारे पुरखा जो ने मोटे अनाज के यहाँ पैदा करते रहे, बीच में हम पंच ज्यादा उत्पादन ले के लिए उका कहूँ भूल गए, लेकिन अब फिर से उका श्री अन्न के रूप में प्रचार करा जा रहा है।
1: बिल्कुल भैया, देखो यही लिए जो है एक भेंट वार्ता अपने कार्यक्रम में आया हुआ है जिसका विषय है खरीफ माँ मोटा अनाज उत्पादन। तो भैया देखो, जरूरी नहीं कि गेहूं चावल ही उगाए जाए, इसके अलावा हम लोग बहुत तरह के जो है मोटा अनाज उगा सकते हैं खरीफ की फसल में। तो देखो यही लिए ये विषय पर जो है जानकारी देने के लिए आए हैं डॉक्टर विष्णु प्रताप सिंह, और भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया।
0: तो बहनी सुना जाए इनकी बातचीत।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खरीफ में जहां मोटा अनाज उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं कृषि विभाग उत्तर प्रदेश से पूर्व निदेशक डॉक्टर बीपी सिंह साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जहां खरीफ में श्री अन्न पैदा करना चाहते हैं किसान भाई बहन, मोटा अनाज यानी पोषक अनाज पैदा करना चाहते हैं, तो क्या सलाह है?
3: नमस्कार किसान भाइयों, जो मोटा अनाज था पहले जब हमारे पास सिंचाई के संसाधन कम थे तो लगभग इसी की खेती पूरे प्रदेश में और देश में होती थी। धीरे धीरे सिंचाई के संसाधन जब बढ़े तो धान गेहूं गन्ना का एरिया बढ़ा है और इसको हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अब इसकी जो उपयोगिता है और जो जलवायु परिवर्तन सबसे बड़ा चिंता का विषय है और पोषण की भी बात है कि लोगों को बहुत सारी जीवन शैली की जो बीमारियां हो रही हैं, डायबिटीज हो रहा है, हार्ट अटैक, मोटापा, इन सब के दृष्टिगत अब ये फसलें बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई हैं और इनकी खेती के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार बहुत ही प्रोत्साहित कर रही हैं। और इसके जो प्रसंस्कृत उत्पाद हैं उसको भी कैसे आप तक और आपके जो अन्य भाइयों हैं हमारे जो शहर में रह रहे हैं उनको कैसे पहुंचाया जाए, इस पे विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। तो आज की तारीख में इन फसलों के लिए बाजार भी उपलब्ध है, तकनीकी भी उपलब्ध है, प्रजातियां भी विकसित की जा रही हैं बहुत तेजी के साथ ताकि इनका उत्पादन भी अच्छा हो। और तकनीक के साथ साथ मिलेट स्टोर वगैरह भी खोले जा रहे हैं, जो हमारे किसान उत्पादक संगठन है उनको हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि एक प्रचुर मात्रा में उत्पादन हो, वहीं प्रसंस्कृत हो आपके लेवल पे और फिर इसको बाजार भी उपलब्ध कराया जाए।
2: डॉक्टर साहब, खरीफ में पोषक अनाज की बात करें तो कौन कौन सी फसलें हैं और उनकी कौन कौन सी उन्नत प्रजातियां चुने किसान भाई बहन इस साल?
3: जी, जैसे मोटा अनाज में पहले तो हमारा मक्का और जौ भी आता था,
2: जी
3: उसको सरकार ने अब कोर सीरियल करके कर दिया। और इन बाकी जो बचे हैं बाजरा, ज्वार, मड़ुआ, कोदो, सावा, टांगुन, ककुनी, ये सब इनको जो है श्री अन्न के नाम से सरकार ने इसको परिभाषित किया है।
2: जी
3: और इनके खेती के बढ़ावा देने के लिए हर तरह से हर संभव प्रयास हो रहे हैं। और प्रजातियों के बारे में हम लोग जरूर चर्चा करेंगे जब विषय आएगा, लेकिन एक चीज़ ये बता दें कि इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है धान और गेहूं के मुकाबले, फाइबर बहुत अच्छा है जो आपके पेट के

0: लिए अच्छा है, और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो जल्दी पच जाता है वो आपके ब्लड की शर्करा बढ़ा देता है। डायबिटिक के मरीजों के लिए बहुत अच्छा है, धीरे धीरे पचता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 के नीचे है। तो इसका मतलब जो हमारे शर्करा जो शुगर के रोगी हैं उनके लिए इसका बहुत ही अच्छा उपयोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ इसमें विटामिन्स बहुत सारे हैं। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इसका प्रयोग करना या भोजन में इसको मिक्स करके इसको भी थोड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत है।
1: खेत का चुनाव और खेत की तैयारी कैसे हो?
0: जहाँ बहुत ज़्यादा पानी लगता है वहाँ तो हम जरूर कहेंगे कि किसान भाई अपना धान की खेती करें, लेकिन उपरहार के जितने खेत हैं या जो बहुत बलुअर जमीन है, सैंडी लोम है, जहाँ बालू की मात्रा अधिक है, वो खेत इन फसलों के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं।
1: या वर्षा के सहारे जहाँ खेती है?
0: हाँ, जहाँ वर्षा आधारित खेती जैसे बुंदेलखंड है हमारा, सोनभद्र है, मिर्जापुर या अन्य इलाके जहाँ पे सिंचाई के संसाधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ पे इसकी खेती की जा सकती है। और बहुत कम अवधि की ये फसलें हैं, 80, 85, 100, 105, 110 दिन में सारी फसलें हो जाती हैं। तो जो वर्षा का हमारा मौसम है उसी के तहत इनका पूरा का पूरा विकास हो जाता है, फसलें कट जाती हैं और रबी के लिए खेत बहुत समय से खाली हो जाता है।
1: खेत की तैयारी कैसे करें किसान भाई बहन?
0: खेत की तैयारी तो सामान्य जैसे किसान भाई करते हैं, एक मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें, उसके बाद 2-3 बार कल्टीवेटर लगा दें, अगर उनके पास गोबर की खाद उपलब्ध है या और किसी प्रकार कंपोस्ट वगैरह है तो उसको जो है अंतिम जुताई के पहले खेत में डाल के उसको मिक्स कर दें प्रॉपरली।
1: जी,
0: इनकी सबकी बुआई लगभग लगभग समझिए कि 15 जून से 15 जुलाई तक ऑप्टिमम है,
1: यानी मानसून आने के साथ ही,
0: मानसून के साथ ही। और बाजरा वगैरह जो 80-85 दिन की प्रजाति है उसको तो लोग 10 अगस्त तक भी लगाते हैं और फिर भी समय से उनका खेत खाली हो जाता है।
1: तो प्रजातियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
0: जी, अब आप देखें तो बाजरा सबसे ज्यादा होता है अपने प्रदेश में, करीब 9 लाख हेक्टेयर में होता है।
1: जी,
0: ज्वार उसके बाद 3 लाख हेक्टेयर में होता है, और बाकी श्री अन्न है जिनको हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, राज्य सरकारें दे रही हैं, केंद्र सरकार, तो अब ये 31,000 तक जो पिछले साल है
1: जी,
0: इतना इसका क्षेत्रफल बढ़ा है
1: और दिनों दिन बढ़ ही रहा है
0: और बढ़ रहा है। और अब किसान भाई भी आगे आ रहे हैं और वो खुद मांग कर रहे हैं कि अब हमें बीज दिया जाए उन्नतशील प्रजातियों का। तो बाजरा में देखें तो बाजरा जो सबसे जो प्रमुख फसल है इसमें आजकल जो है बहुत अच्छी हाइब्रिड प्रजातियां आ गई हैं, संकर प्रजातियां, जिसमें 86M90 और कावेरी सुपरवास, ये दोनों बहुत अच्छी हैं, 85 दिन में तैयार हो जाती हैं और प्रति एकड़ कम से कम किसान भाई को 12 से 15 कुंटल के आसपास उनको उत्पादन भी मिल जा रहा है, और साथ ही साथ 20 से 25 कुंटल उनको चारा का भी उत्पादन हो रहा है।
1: और ज्वार में?
0: ज्वार में प्रजातियां हमारी हाइब्रिड की काफी अच्छी आ गई हैं, CSH 9, 13, 14, 15, ये सब CSH की वैरायटी है। जो लेटेस्ट है वो 23 है, CSH 23, 115 से 125 दिन में तैयार हो जाती है CS 23 और CS 18। शेष जो CSH की वैरायटी है वो 105 से 115 दिन में तैयार हो जाती हैं। इनका उत्पादन भी लगभग लगभग 35 से 40 कुंटल पर हेक्टेयर, यानी समझे कि 15-16 कुंटल पर एकड़ मिल जाता है किसान भाइयों को।
1: और जो अन्य श्री अन्न है जैसे कोदो है, टांगुन है, मड़ुआ है?
0: मड़ुआ तो अपने यहाँ पहले भी होता था, प्रचलित नाम इसका रागी है
1: जी,
0: और दक्षिणी भारत में तो ये मुख्य भोजन है, वहाँ पे बहुत होता है।
1: हाँ।
0: तो इसका भी जो है 110 से 120 दिन में हो जाता है। और प्रजातियां हमारे पास एक तो GPU 45 है, सुभ्रा है, और BL 149 और BL 369, ये चार प्रजातियां हैं जो प्रचलित हैं, और ये भी 25 जून से लेके आप जो है 15 जुलाई तक इसकी जो है बुआई कर सकते हैं। इसका उत्पादन करीब करीब समझे कि 8 से 10 कुंटल
1: पर एकड़
0: एकड़ हो जाता है।
1: और सावा?
0: सावा बहुत प्रचलित हो रहा है और इसकी काफी डिमांड है, सावा की खीर, सावा का हलवा, सावा की रबड़ी बहुत प्रसिद्ध हो रही है। इसका भी प्रजातियां, एक मंदिरा है, मंदिरा 21, मंदिरा 29, और एक है IP 149, UPT 8, IPM की बहुत प्रजातियां हैं, IPM 100, IPM 148 और 151, ये भी प्रजाति सब अच्छी हैं और 75 से 80 दिन में ये तैयार हो जाती है। 8 से 10 किलो करीब बीज लगता है प्रति हेक्टेयर और 15 जून से 15 जुलाई इसका भी क्विक समय है बुआई,
1: यानी 3.5 किलो से लेकर के 4 किलो बीज।
0: हाँ जी, जी
1: प्रति एकड़,
0: एक एकड़ में। कोदो के भी JK सीरीज की वैरायटी है, 2 JK 6, JK 62 और एक GPVK 3। ये प्रजातियां जो है जितनी भी कह रहे हैं कृषि विभाग उपलब्ध करा रहा है
1: जी।
0: शुरुआत में हम लोगों ने इसको प्रचार प्रसार करने के लिए मिनी किट के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुंचाया है
1: और इस साल भी प्रोविजन है,
0: इस साल भी है। केंद्र सरकार की तो एक योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में न्यूट्री सीरियल करके इन प्रजातियों को इन फसलों के बढ़ावा देने की योजना चल रही है

0: जी
1: साथ ही साथ राज्य सरकार ने भी एक उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम चलाया है
0: जी,
1: जिसमें मिलेट स्टोर, प्रशिक्षण, प्रदर्शन, बीज की उपलब्धता, मिनी किट देना, ये सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं ताकि किसान भाइयों तक इसकी तकनीकी पहुंचे, बीज उत्पादन वो अपने स्तर पे करें ताकि उनका लाभ और बढ़ सके।
0: और इसमें किसान उत्पादक संगठन काफी अच्छा काम कर रहे हैं।
1: किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से इस प्रोजेक्ट को चलाने के प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि एक किसान उत्पादक कम से कम 1000 किसान भाई जुड़े हुए हैं
0: जी।
1: तो उनके तक पहुंच बनाना, और किसी के पास छोटा खेत है किसी बड़ा, लेकिन एक वॉल्यूम हो जाता है तो उसको प्रसंस्कृत करके जो बाजार में भेजने के जो सबसे बड़ा संकट है, 2 किलो 4 किलो तो आपको बिकेगा नहीं
0: जी।
1: जब उसमें मात्रा अच्छी रहेगी और फिर एक ही जगह इकट्ठा होकर सबको रोजगार के भी संसाधन वहाँ उपलब्ध हो रहे हैं और मिलेट स्टोर में सब कुछ दिया जा रहा है। उनको एक स्टोर बनाने के लिए जगह दी जा रही है, उसके लिए पैसा है, जितने मशीनरी चाहिए उसके लिए व्यवस्था की जा रही है, प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, और जहाँ पर उन्नत खेती हो रही है अपने प्रदेश में या प्रदेश के बाहर वहाँ भी किसान भाइयों को भेजा जा रहा है कि आप देखिए कैसे खेती हो रही है। हैदराबाद में जो मिलेट स्टेशन वहाँ पे जाके बताया जाए कैसे किसान भाई इसका प्रसंस्करण कर रहे हैं, कैसे पैकेजिंग हो रही है और कैसे बिक्री हो रही है। अब उत्पाद आप देखें तो इतने बढ़िया बढ़िया हो रहे हैं कि मिक्स आटा
0: जी
1: ये बहुत प्रचलित हो गया, जिसमें रागी का कोदो का भी लोग मिला रहे हैं। चूंकि ग्लूटेन फ्री है तो इसकी वजह से, और लो कोलेस्ट्रॉल है इसमें होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, तो जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं उसमें लोग बहुत इसको पसंद कर रहे हैं। साथ ही साथ बेकरी के उत्पाद बहुत सारे बन जा रहे हैं, बिस्किट बन जा रहा है, केक है, मठरी है, कुकीज बन जा रहे हैं और पास्ता लोग बना रहे हैं, सेवई इसकी बन जा रही है
0: जी। संभावनाएं बहुत,
1: संभावनाएं बहुत हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं।
0: डॉक्टर साहब, जहां भी खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन करना है तो बुआई में क्या बारीकी है और फसल की भूख मिटाने के लिए पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे हो, कितना हो, कब हो?
1: इसमें किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि जो मृदा परीक्षण परिणाम उनके पास हैं उसके आधार पे ही संतुलित मात्रा में उस फसल विशेष के लिए उर्वरकों का प्रयोग करें, और यथासंभव जहाँ से कम एक तिहाई व्यवस्था ये करेंगे वहाँ पे जो है गोबर की खाद, कंपोस्ट या कहीं से मिल जाए वो करें। अगर नहीं है तो ज्वार और बाजरा में थोड़ा जो हाइब्रिड प्रजातियां ही चल रही हैं, चूंकि अब देसी प्रजातियों का धीरे धीरे लोग छोड़ रहे हैं, उसका उत्पादन इनका बहुत अच्छा है, तो वहाँ 80 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और 40 किलो जो है पोटाश, ये व्यवस्था करनी है
0: ढाई एकड़ में।
1: और अगर वो देसी प्रजाति कर रहे हैं तो यही मात्रा आधी हो जाती है, 50 किलो नाइट्रोजन, 20-20 किलो
0: फास्फोरस और पोटाश। और जो अन्य
1: जो हैं जितने भी उसके बाद बचते हैं, हमारा जो है कोदो है, सांवा है, रागी है, मड़ुआ, तो इसमें हम 40 किलो नाइट्रोजन, 20 किलो फास्फोरस और 20 किलो पोटाश। लेकिन ये जरूर अगर 5 से 10 कुंटल भी अगर आप उसमें खाद एक एकड़ में डाल देते हैं तो उससे खेत की भी जीवंतता बनती है, और दूसरा ये फसलें ऐसी कि बहुत ज़्यादा मिट्टी से न्यूट्रिएंट नहीं लेती हैं तो ये अपनी मिट्टी को भी संरक्षित करती हैं। C4 प्लांट ये होता है जो कम पानी में हो जाता है, उसकी बढ़वार अच्छी होती है, तो हर तरह से फायदेमंद है। तो जो उपरहार के खेत हैं, जो बलुअर भूमि है, वहाँ सिफारिश यही है कि आप जो है मोटे अनाज की खेती करें, और चूंकि इसका प्रचार प्रसार लगातार बढ़ रहा है तो इसका मार्केट बाजार आगे निरंतर बढ़ता रहेगा, और इसको राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों चूंकि इसको प्रोत्साहित कर रही हैं तो भविष्य इसका बहुत अच्छा है, और प्रसंस्कृत उत्पादों की ओर भी जाएं, अपने खाएं और दूसरों को भी खिलाएं।
0: यानी श्री अन्न उत्पादक जरूर बने। डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: जी नोट करें, 9450334778, 9450334778, 9450334778।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन के बारे में? डॉक्टर साहब,
1: ये बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनको हम लोग छोड़ चुके थे, लेकिन आज इनकी उपयोगिता और विशेष करके मानव स्वास्थ्य के लिए जो उपयोगिता है, जो हम दवाइयों पे खर्चा कर रहे हैं, मात्र इनके पोषण मात्र से हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा जाएंगे। साथ ही साथ जो जलवायु परिवर्तन की समस्या है, पर्यावरण की जो समस्या आ रही है, साथ ही साथ जो भूमि की जो उर्वरा क्षमता कम हो रही है, ये सारी चीज़ों

0: का निराकरण ये करता है और कम लागत में अच्छा मुनाफा आपको देता है। इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए और जो भी योजनाएं हैं सरकार की उसका लाभ उठाएं। जनपद के जो उपकृषि निदेशक हैं, जिला कृषि अधिकारी हैं, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे बात करिए और योजना का लाभ लीजिए। राज्य सरकार इसके लिए बहुत ही बड़ा बजट एक रखी हुई है और जितना भी आवश्यकता होगी धन की उसकी कमी नहीं है।
1: डॉक्टर बीपी सिंह साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में पोषक अनाज उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, यानी श्री अन्न पैदा करके उसकी अच्छी मार्केटिंग कैसे करें, मूल्य संवर्धन कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: ज्योति बहनी,
3: हाँ राजू भैया,
2: देखो कति निकी तना से डॉक्टर बिशुन प्रताप सिंह भैया बताएं और इनसे बढ़िया तरह से पूछें डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया। विषय है खरीफ में मोटा अनाज उत्पादन। तो इतने बढ़िया तरह से जानकारी दे खातिर दोनों पंचन का बहुत बहुत धन्यवाद। और
3: धन्यवाद
2: बहनी,
3: भैया।
2: हम पंच देखे थे कि खेती तो हम पंच घर रह के करी थे, मूल तबहू कामे काजे खातिर बहुत मन इनके यहाँ अपने घर गांव से बाहर जाए पड़े थे और कबो कबो परिवार के साथ बाहर रहा थे। तो ऐसे में जो उन घरवाला है घरवाली है दोनों आपस में चर्चा करत हैं कि गांव कब चलियो और गांव में बड़ा निक लागत रहा है। देखो ऐसन बात बतकही के रे माध्यम से ये सतीश चंद्र श्रीवास्तव भैया अपन खेमटा प्रस्तुत कर रहे हैं। आओ उनका ये गौनई का आनंद लीन जाए और देखा जाए कि कैसे जो घर से दूर रहते हैं वो गांव का याद करते हैं।
3: बिल्कुल भैया।

0: ज्योति बहनी।
1: हाँ राजू भैया।
0: कई सराय गो नहीं।
1: अरे भैया सुन के तो बहुत तो आनंद आएगा।
0: बहनी बिल्कुल आनंद तो आईबे करा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी खेती में आनंद तब आवत है जब हमार मौसम हमार साथ दे थे।
1: बिल्कुल भैया।
0: अगर मौसम साथ न दे तो फिर खेती में है उतना आनंद ना आवत है। तो यही खातिर जान लीजिए मौसम के जो जानकारी मिली है, तो मौसम विभाग से जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से अगले 3 दिन तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों क्षेत्रों में कहूँ कहूँ पर वर्षा गरज चमक के साथ बौछार पड़े के संभावना है और कोई विशेष चेतावनी ना है।
1: तो बिल्कुल भैया देखो किसान पंचन का अपना बिल्कुल तैयार रहे चाहिए।
0: हाँ।
1: है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तैयारी कर लिए कि कोनो जो है अनाज दाना कोनो बाहर ना हुए, अपना छप्पर उप्पर सही कर लिए ताकि
0: हाँ
1: कबो भी बरखा आ सकत है ना,
0: हाँ
1: तो इसके लिए पहले से तैयार रखें और जानवरन का विशेष ध्यान रखें भैया।
0: बिल्कुल बहनी। और एक बात और है जिसकी खातिर हम पंच अक्सर तैयार होके जाए थे, वो होते बाजार। अगर बाजार जाए रहने चाहे खरीदे जाए चाहे बेचे, तैयारी तो करहेक पड़त है।
1: बिल्कुल भैया।
0: तो उसकी पहल तैयारी तो यह होते कि उसका भाव जान ली कि कौनी बाजार में सही भाव है हुए चला जाए।
1: और भैया देखो ये बाजार भाव जो है जो हम लोग रोज बताई थे तो इसका सबका बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, कहे हम लोगों का मोटा मोटी तो पता हुए चाहिए कि बाजार में का भाव चल रहा है
0: हाँ बहनी। तो
1: इसे
0: आज
1: हम।
0: देखो जो उन बाजार भाव मिला है वही माँ गेहूँ दड़ा चार मंडिन क्यार, क्योंकि हम पंच बताए थे, तो लखनऊ माँ है 2590 रुपया प्रति क्विंटल, कानपुर माँ 2585, गोंडा माँ 2535, अयोध्या माँ 2590 रुपया, और चावल क्यार भाव लखनऊ माँ है 3500 रुपया, कानपुर माँ 3450, गोंडा माँ 3000 रुपया, और गोंडा माँ 3080 रुपया प्रति क्विंटल।
1: तो भैया चना कार जो है भाव बता दें, चना कार जो है लखनऊ मंडी में भाव है 6660 रुपये प्रति कुंटल भैया, कानपुर में है 6410 रुपये प्रति कुंटल, गोंडा मंडी में है 6800 रुपये प्रति कुंटल और अयोध्या मंडी में है 6400 रुपये प्रति कुंटल। और देखो काली जो उड़द है उसका
0: हाँ
1: दाम भाव बता दें भैया, देखो लखनऊ मंडी में का भाव नहीं आवा है मगर कानपुर मंडी में है 8800 रुपये प्रति कुंटल, गोंडा मंडी में है 9650 रुपये प्रति कुंटल और अयोध्या मंडी में है 9200 रुपये प्रति कुंटल।
0: तो भैया यूँ तो है बाजार भाव। और अब काल अपने कार्यक्रम में हाँ हो थे विशेष कार्यक्रम हेलो किसान, किसानन खातिर सजीव फोन इन कार्यक्रम जीमा हम पंच अपने सवालन के जवाब फोन करके विशेषज्ञ से पूछे थे। तो काल बात करे खातिर विषय है गन्ने की फसल में सामयिक प्रबंधन, समन्वित नाशी जीव प्रबंधन और कृषि रक्षा रसायन का सुरक्षित प्रयोग। जानकारी दे हैं विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यानंद सुशील, जो कि निदेशक भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, और कार्यक्रम के प्रस्तुति और संचालन है डॉक्टर सुशील कुमार राय भैया का। बात करे खातिर फ़ोन नंबर है 0522-2238-825। तो ई नंबर पर फ़ोन करके विषय से संबंधित अपने सवाल करके उके जवाब पाए सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: और
1: भैया।
0: जोन पंच भाई हमका पाती लिखा चाहें तो पता है कार्यक्रम लोकायतन खेती किसानी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ। और ईमेल करे खातिर भी ईमेल आईडी जोन है वह का है बहनी?
1: भैया देखो ईमेल आईडी है farmandhome@lucknow.gmail.com। तो कहीं का जो है का हम बता दें जिसका एक एक अक्षरन में farmandhome@lucknow.gmail.com।
0: तो बहनी यही के साथ है अपनी बैठकी का समय पूर्ण हो रहा है, तो पंचन से लीन जाए विदा। जय।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन और खेती किसानी, आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।

0: रीमा सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
4: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं।
5: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात। छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर उन्नयन हुआ है। उन्होंने देश के लोगों के लिए अगली पीढ़ी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि विकसित भारत के स्वप्न को साकार किया जा सके। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आधुनिक अवसंरचना किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के यशस्वी नेतृत्व में भारत ने बीते 12 वर्षों में इस दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धियां अर्जित की हैं। इस उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने देश भर में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5,37,00,000 आवास का आवंटन किया है, जिसमें से 62,00,000 से अधिक परिवार यूपी के शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।
6: 2014 से पहले हमारे देश में इतने मेडिकल कॉलेज नहीं थे, इतने डॉक्टर्स नहीं थे कि हम ठीक प्रकार से सभी लोगों को इलाज की सुविधा दे सकें। तो उसके पहले उन्होंने ये मन बनाया कि हम ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स पैदा करेंगे, और डॉक्टर्स पैदा होते सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में 818 मेडिकल कॉलेज, जिसमें से 431 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का उन्होंने मन बनाया। और MBBS में कुल 1,28,976 सीटें थी, जिसमें से 77,628 सीटों की वृद्धि की गई।
5: केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने आज मिर्जापुर में जिला प्रशासन और सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के विकास के जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
7: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में

0: पदभार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आगामी 19 जून को पूर्वांचल को रेलवे की तरफ से कई रेल सेवाओं की सौगात प्रदान करेंगे। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री बिहार के छपरा से ऑनलाइन जुड़कर जनता को संबोधित करेंगे। प्रदेश के नगर विकास और ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने इसकी जानकारी देते हुए आज बताया कि हाल ही में उन्होंने पूर्वांचल की रेल सेवाओं के विस्तार और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए रेल मंत्री से कई महत्वपूर्ण मांगे की थीं, जिसे मंजूर कर लिया गया है। इन सुविधाओं में दोहरीघाट और यहार नई मेमो ट्रेन का वाराणसी तक संचालन, मऊ आनंद विहार स्पेशल ट्रेन का मऊ से नियमित संचालन शामिल है। इसके अलावा छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का संचालन मऊ के रास्ते किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का परिणाम आज घोषित किया गया, जिसमें वंदना सिंह ने प्रदेश में टॉप किया है। परिणाम में कुल 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को रैंक जारी की गई है। इनमें महिला अभ्यर्थियों की संख्या अधिक है। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने सफल अभ्यर्थियों को बधाई दी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे से 17 जून को पहला कार्गो विमान उड़ान भरेगा। पहले दिन एक कार्गो उड़ान होगी। 1 जुलाई से एयरपोर्ट से वाणिज्यिक और कार्गो सेवाएं नियमित रूप से उपलब्ध हो जाएंगी। कार्गो सेवा शुरू होने से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रदेश के साथ उत्तर भारत की आर्थिक को भी गति मिलेगी। प्रदेश के कई जिलों में 7वें बड़े मंगल के अवसर पर भक्त हनुमान जी के मंदिरों में सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। अयोध्या में भी भक्त हनुमान गढ़ी सहित कई अन्य मंदिरों में दर्शन कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: अयोध्या में आज ज्येष्ठ माह के 7वें बड़े मंगल पर हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भक्तों ने बजरंग बली के दर्शन पूजन कर अपनी श्रद्धा निवेदित किया, साथ ही सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। शहर के कई स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया जा रहा है, जहां हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए हैं। भक्ति, सेवा और श्रद्धा के इस पावन माहौल से अयोध्या पूरी तरह राम और हनुमानमय नजर आ रही है। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
1: भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: इकाना क्रिकेट स्टेडियम में कल 17 जून को होने वाले श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय मैच के लिए दोनों टीमें लखनऊ पहुंच चुकी हैं। आज मैदान पर पहले अफगानिस्तान की टीम ने अभ्यास किया और इस समय भारतीय टीम पसीना बहा रही है। भारतीय टीम अभी श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इस अंतरराष्ट्रीय मैच के मद्देनजर स्टेडियम के अंदर और बाहर

0: सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस ने स्टेडियम के आसपास कई मार्गों पर यातायात डायवर्जन भी लागू किया है, जो कि सुबह 9 बजे से रात में मैच की समाप्ति तक लागू रहेगा। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर कहा, पिछले एक दशक में बुनियादी ढांचे का रिकॉर्ड स्तर पर हुआ उन्नयन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है आधुनिक अवसंरचना। नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक लगाया प्रतिबंध, संदेश संपादन सुविधा 30 जून तक रहेगी बंद। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 19 जून को पूर्वांचल को देंगे 3 रेल सेवाओं की सौगात, छपरा आनंद विहार सुपरफास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच, स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया

तीन रेल सेवाओं की सौगात, छपरा आनंद विहार सुपर फास्ट ट्रेन का मऊ के रास्ते होगा संचालन। और भारत और अफगानिस्तान के बीच कल लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा दूसरा एक दिवसीय मैच। स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के व्यापक प्रबंध। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
1: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

श्रेया घोषाल और आतिफ असलम की आवाज़ों में आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। फिल्म का नाम है रामैया वस्तावैया।

बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ, जिसे स्वर दिए हैं अमाल मलिक, अरमान मलिक और पलक मुच्छल ने। फिल्म का नाम है सनम रे।

0: उड़ान हौसलों की, उड़ान सपनों की, उड़ान उन मंजिलों की ओर जो बाहें फैलाए आप सबका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही हैं।
1: इससे बड़ा प्रेम और कुछ नहीं कि कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए, उसकी दोस्ती के लिए अपना प्राण दे दे। जैसे तेल और खुशबू से, वैसे ही एक दोस्त के दिल की अच्छी दोस्ती और साथ से दोस्त का मन आनंदित हो जाता है। प्यारे श्रोताओं, नमस्कार। कार्यक्रम उड़ान में मैं प्रियंका आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ खुश और आनंदित होंगे। दोस्तों, इससे पहले हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही प्यारे विषय में प्रोग्राम लेके आए हैं। जी हाँ, एक बहुत ही सुंदर रिश्ता दोस्ती का, दोस्ती जो जीवन को महका देती है, या यूं कहें कि जीवन को आसान कर देती है। दोस्ती, दोस्ती नाम है शरारत का, मुस्कुराहट का, उम्र भर की चाहत का। दोस्ती एक एहसास है, न भूल सको वो ख्वाब है, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, वो हर कहीं मिल जाता है। कोई आए न आए, दोस्त हर मुसीबत में दौड़ा चला आता है। दोस्ती सुकून है जो हमें हर तकलीफ से निजात दिलाता है। दुख की तपन में दोस्त शीतल बयार बनकर आता है। कभी छेड़छाड़ कभी इकरार, हर दिन की तकरार, मगर दिलों में है प्यार, दोस्ती इसी का नाम है सरकार। जी हाँ दोस्तों, दोस्ती बहुत ही खास और गहरा रिश्ता है, और हम सबके जीवन में ये रिश्ता होता ही है, या हम सब इस रिश्ते को अपनी जिंदगी में चाहते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच्चे मित्र हीरे की तरह कीमती और दुर्लभ होते हैं, जो आसानी से नहीं मिलते, और अगर मिल जाते हैं तो हमको इसको बहुत संभाल कर, सहेज कर रखना चाहिए। हमको इस रिश्ते की कदर करनी चाहिए। कुछ भी हो, हमको बस अपने दोस्त के लिए वफादार रहना चाहिए। कई बार ऐसा वक्त आता है कि हमारी जिंदगी में, हम जिंदगी में उलझ रहे होते हैं और जिंदगी में हार रहे होते हैं, और आसपास कोई ऐसा नहीं दिखता जिसको हम अपने दिल की बात बता सके। और ऐसे वक्त पर अगर कोई होता है जहां हम सहज महसूस करें, तो वो होता है दोस्त का साथ। और आज ऐसे ही एक प्यार भरे रिश्ते की कहानी लेकर मैं आई हूँ। ऐसी दोस्ती जो अद्भुत थी, जहाँ प्यार, विश्वास सब कुछ था, जहाँ सिर्फ एक दूसरे का होना ही सब कुछ था। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा।
2: मेरी

बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम सुमा था। काफी बड़ा राज्य था उसका। उसके बड़े बेटे का नाम जीवा था। बहुत सुंदर, योग्य, हर बात में उत्तम था। राजा का बड़ा बेटा था तो आगे चलकर आने वाला राजा उसी को होना था। और उसी राज्य में एक लड़का था जिसका नाम देव था। वह एक चरवाहा था और वीणा बजाता था। एक बार की बात है, इस राज्य में एक दिन संकट आ गया। एक दुश्मन ने इस राज्य में हमला कर दिया और वह दुश्मन इतना खतरनाक था कि कोई भी उससे युद्ध करने को नहीं जा पा रहा था। राजा की हिम्मत भी नहीं थी कि वह उससे युद्ध करे और ना ही प्रजा के किसी इंसान में हिम्मत थी कि कोई जाकर उससे युद्ध करे। सब डरे हुए थे। तब देव को पता चला, वो चरवाहा था और अपने घर में सबसे छोटा था। उसके बड़े भाई भी राजा की सेना में ही थे, पर पूरे राज्य में किसी के अंदर युद्ध करने का साहस नहीं था। तब ये बात देव तक पहुंची और देव ने राजा से कहा कि वह युद्ध करने को जाएगा। राजा ने और सब ने उसको बहुत मना किया और कहा कि वह अभी छोटा है और ना ही उसे

युद्ध की समझ है, और जिससे युद्ध करना है वो तो बहुत बड़ा योद्धा है। तब देव ने कहा कि वह रोज जंगल में अपनी भेड़ बकरियों को चराने जाता है, और वहां पर कई बार वो जंगली जानवरों से अपनी भेड़ बकरियों की रक्षा करता है। तब समय आया कि राजा ने देव की बात मान ली और देव ने उस दुश्मन को मार गिराया, और हुआ यूं कि वह देव देखते देखते सबका चहेता हो गया, और राजा का बड़ा बेटा जीवा देव को अच्छा मानने लगा, और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई, और जीवा देव को बेहद प्यार करने लगा। वो राजा का बेटा था और देव चरवाहा था, पर दोनों के बीच बेहद प्यार था। तब ऐसा हुआ कि प्रजा के बीच देव काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, और यह देखकर राजा को अच्छा नहीं लगा, और राजा को देव से जलन होने लगी। दूसरी तरफ जीवा और देव की दोस्ती बहुत ही गहरी होती जा रही थी। कुछ समय बीतता गया और राजा के अंदर की जलन बढ़ती गई, क्योंकि राज्य के लोगों के लिए देव एक नायक के समान हो गया था। तो राजा की ईर्ष्या और क्रोध देव के लिए इतना ज्यादा हो गया कि राजा ने देव को मार डालने का निश्चय किया, और राजा देव को मारने का बार बार प्रयत्न करने लगा, और हर बार देव बच जाता था। राजा का बेटा जीवा देव को सब कुछ बता देता था, जो भी उसका पिता योजनाएं बनाता था देव को मारने के लिए, जीवा सब कुछ देव को बता देता था। जीवा ने अपनी तलवार, अपने राजकीय वस्त्र, अपना धनुष, सब कुछ देव को दे दिया, और दोनों ने वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो दोनों हमेशा दोस्त रहेंगे। कुछ भी हो जाए, हालात कुछ भी क्यों ना हो, उनकी ये दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे जीवा को बुलाकर कहा कि वे देव को मार डाले, पर जीवा ने ऐसा नहीं किया और उल्टा राजा से वचन ले लिया कि वह देव को कुछ नहीं करेंगे। पर एक दिन राजा ने सेना भेज दी देव को मारने के लिए, और देव वहां से भाग गया। तब देव ने और जीवा ने गुप्त में एक बैठक की, और उस गुप्त बैठक में दोनों ने मिलकर एक दूसरे से वादा किया कि कुछ भी हो पर वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा वफादार रहेंगे, एक दूसरे के परिवार पर दया करेंगे और एक दूसरे के परिवार की हिफाजत करेंगे। तब देव के पास राजा के घर से दावत का निमंत्रण आया, क्योंकि देव राजा के सेना में था, देव को राजा के उस भोज में शामिल होना था। तब देव ने और जीवा ने तय किया कि जीवा अपने घर जाकर पता लगाएगा कि कहीं भोज में देव की जान को खतरा तो नहीं है, और अगर हुआ तो देव को जीवा सब कुछ बता देगा। तब भोज का समय निकट आया और देव भोज में नहीं गया। तब राजा ने पूछा कि देव क्यों नहीं आया। तब जीवा ने राजा को कुछ बहाना बता दिया। तभी राजा क्रोधित हुआ और राजा का सारा क्रोध जीवा पर निकला। राजा ने अपने बेटे से कहा कि तुम क्यों नहीं समझते हो कि जब तक देव जिंदा है तुम राजा नहीं बन सकते। प्रजा के अंदर देव के लिए प्यार है, और देव के होते हुए तुम कभी राजा नहीं बन पाओगे, इसलिए जाओ और देव को लेकर आओ ताकि मैं उसको मार दूं। तब जीवा ने कहा, आप क्यों देव को मारना चाहते हैं? तब क्रोध में राजा ने अपने बेटे के ऊपर ही भाला फेंक दिया, पर जीवा बच गया। तब जीवा को समझ आ गया कि देव की जान को खतरा है, और जीवा वहां से चला गया और उसने जाकर देव को सब कुछ बता दिया, और देव से कहा कि उसकी जान को खतरा है और वो वहां से भाग जाए। दोस्तों, तब दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और वे बहुत रोए। तब जीवा ने देव से कहा कि तुम यहां से भाग जाओ, पर हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी, ईश्वर तुम्हारे और मेरे वंश के बीच में हमेशा रहेगा। तब दोनों ने एक बार और एक दूसरे को गले लगाया और वो दोनों लिपट लिपट कर रोने लगे, और फिर देव वहां से दूर सुरक्षित जगह पर चला गया और जीवा अपने घर वापस आ गया। तब कुछ वक्त के बाद अचानक फिर उस राज्य पर आक्रमण हुआ और युद्ध होने लगा। देव वहां नहीं था

उस युद्ध में राजा और उसके पुत्र मारे गए और जीवा भी उस युद्ध में मारा गया। तब देव तक ये समाचार गया, देव टूट गया, उसने अपने एक अच्छे सच्चे भाई जैसे दोस्त को खो दिया। तब देव ने उस इंसान को मार डाला जिसने राजा और उसके पुत्रों को मारा था।

तब उस देश का नया राजा देव को बनाया गया। और फिर देव ने सबसे पहले जीवा के परिवार से उसके बेटे को बुलाया और जितना कुछ राजा का था और जीवा का था सब कुछ उसको लौटा दिया और उसको अपने साथ अपने महल में रखा। और इस तरीके से देव ने अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा किया। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, एक अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जी हाँ, एक वफादार दोस्त 1000 रिश्तेदारों से बेहतर होता है। देखा दोस्तों, सिर्फ दोस्त कह देने से दोस्ती नहीं हो जाती। दोस्ती निभाने के लिए सच्चाई, वफादारी और अटूट प्यार का होना बहुत जरूरी है, विश्वास का होना बहुत जरूरी है, जैसा देव और जीवा के बीच में था। जीवा दोस्ती के कारण अपने पिता के खिलाफ चला गया क्योंकि उसको पता था कि देव सही है। जीवा को भी पता था कि देव के होते हुए जीवा कभी राजा नहीं बन सकता, पर फिर भी उसके लिए राजगद्दी जरूरी नहीं थी, अपना दोस्त जरूरी था। और बदले में देव ने अपना वचन पूरा किया और जीवा के परिवार की देखभाल की।

हाँ दोस्तों, आज हमको भी जरूरत है कि अगर हम दोस्ती करते हैं तो ऐसी पवित्रता होनी चाहिए हमारी दोस्ती में, विश्वास होना चाहिए हमारी दोस्ती में। किसी ने इस प्रकार कहा है कि दोस्ती करो तो ऐसी करो कि भगवान भी आपको दोस्त बनाना चाहे। दोस्तों, ऐसे ही हमारे कुछ दोस्त हैं आज जिनका नाम हम हमारे प्रोग्राम में साझा करना चाहते हैं। जी हाँ, हमारी दोस्त हैं ज्योति शर्मा जी हरदोई यूपी से, नीलिमा द्विवेदी जी बाराबंकी यूपी से, हमारे दोस्त रोशन सिद्दीकी नवादा बिहार से, और हमारे दोस्त कामेश्वर सिंह समस्तीपुर बिहार, अरुण कुमार उन्नाव यूपी से, और राम प्रहलाद सुपौल बिहार से। हम आप सबका हमारे प्रोग्राम को सुनने और प्रशंसा करने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सब भी आपके विचार, परामर्श, सुझाव या आपके सवाल हमको लिख सकते हैं। तो हमारा पता नोट करें। हमारा पता है कार्यक्रम उड़ान, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1, और हमारा फोन नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो दोस्तों, ऐसे ही दोस्ती निभाते रहिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। अब आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक अपनी दोस्त प्रियंका को दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का, ये लखनऊ केंद्र है। हिंदी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं भेंटवार्ता, खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार कैथल से बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी।
1: भारतीय अर्थव्यवस्था को एक पंख लगा 1992 में, जब यहाँ ग्लोबलाइजेशन का दौर शुरू हुआ, यानी खुली अर्थव्यवस्था का इंतजाम किया गया और उसी के आधार पर हमारी विकास की गति काफ़ी कुछ निर्धारित होने लगी। जो पहले स्वकेंद्रित थी वह पूरे विश्व के पटल पर आते हुए तमाम तरह के आयाम से गुजरते हुए आगे बढ़ती गई। आज स्थिति हम देख ही रहे हैं कि कहाँ पर हम हैं। कुछ स्थितियाँ, परिस्थितियाँ हैं, बातें हैं और शिकायतें भी हैं जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी है या फिर औसतन है या फिर किसी किसी क्षेत्र में बिल्कुल बुरी है। तो इन तीन तथ्यों के बीच से हम आगे जब सोचते हैं तो निश्चय ही किसी न किसी विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है। और आज आपने सुना कि आज हमारे स्टूडियो में डॉक्टर अशोक कुमार कैथल साहब हैं जो कि प्रोफेसर हैं यहाँ लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग के। तो बेहतर से बेहतर जानकारी आपके पास है। कैथल साहब, स्वागत करते हैं स्टूडियो में।
2: जी नमस्कार।
1: जानना चाहेंगे आपसे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था जिसे हम कहते हैं, वह किस रूप में है?
2: जब हम बात करें कि भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या है, तो हम थोड़ा सा इसका ऐतिहासिक पक्ष देने की कोशिश करेंगे कि इसके बारे में आम जनमानस जान सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जनसंख्या बहुल राष्ट्र बन चुका है, और अगर आप इसके बारे में बात करें, चाइना को भी हमने पीछे छोड़ दिया है। 147 करोड़ के लगभग भारतवर्ष की जनसंख्या इस समय भारतवर्ष में निवास कर रही है, और ये बहुत बड़ा चुनौती के रूप में भारतीय जो सरकारें हैं उनके समक्ष एक चुनौती दे रहा है। और दूसरी बात जो जानने ज़रूरी है कि हम बार बार बात करते हैं कि GDP ग्रोथ रेट हमारी बढ़ रही है, तो वर्तमान में 4.15 ट्रिलियन डॉलर की नॉमिनल GDP भारतीय अर्थव्यवस्था की है, और प्रति व्यक्ति आय 2,813 नॉमिनल पर कैपिटा इनकम इस समय लोगों के पास आ रही है, और GDP ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन है वो लगभग 6.5% से 7.5% के मध्य देखने को मिल रहा है, जो आने वाले समय में बढ़ने की तरफ रुझान को प्रेरित कर रहा है कि हम लोग शायद विकसित राष्ट्र की श्रेणी में भी सम्मिलित हो जाएंगे।
1: बहुत अच्छी बात है, विकसित राष्ट्र की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो अभी आपने उदाहरण दिया चीन की अर्थव्यवस्था का पॉपुलेशन की दृष्टि से, तो चीन सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश हुआ करता था, अब हम हैं, तो ऐसी स्थिति क्या हम खोज सकते हैं कि अर्थव्यवस्था जो हमारी है उसको सुदृढ़ करने के लिए कहीं ना कहीं यह लाभकारी भी है, अगर चीन की दृष्टि से देखा जाए तो?
2: देखिए, चाइना की जो हम बात करते हैं, चीन की अर्थव्यवस्था का जो सकारात्मक पक्ष है वो ये है कि चीन ने अपने जो मानव संसाधन है उसकी स्किल, जिसे बोलते हैं दक्षता, निपुणता, परिपक्वता, उस पे सुधार किया है, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दिया है, इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको इम्प्रोवाइज किया है। तभी आप देखते हैं कि कभी माना जाता था कि IT सेक्टर में इंडिया डोमिनेट कर रहा है, इंडियन लोगों को ज़्यादा डिमांड होती है, लेकिन आज वो नज़रिया बदलता हुआ आपको दिखता है वैश्विक पटल पे। चाइना के लोगों की जो मांग है टेक्नीशियंस की, IT सेक्टर के लोगों की, वो लगातार बढ़ती जा रही है, और भारतवर्ष कहीं पीछे नज़र आता है। तो हमें मानव संसाधन की दक्षता, निपुणता, टेक्निकल एजुकेशन पे जोर देने की ज़रूरत है, उसके बिना हम चाइना को पीछे नहीं छोड़ सकते।
1: शायद इसीलिए कौशल विकास कार्यक्रम जो शुरू किया गया है संभवतः एक कदम हो सकता है उस तरफ, लेकिन उधर से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे कि किसी भी जगह पर ऊर्जा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होता है, चाहे वह परिवार की बात करें, समाज की बात करें या देश स्तर पर बात करें, हर जगह ऊर्जा के बिना विकास उतना तेज गति नहीं पकड़ पाता है जितना कि होना चाहिए। आजकल स्थितियां, परिस्थितियां आप देख ही रहे हैं कि कैसी है, खाड़ी युद्ध को लेकर के। ऐसे में आप क्या एक मूल्यांकन देख पा रहे हैं या फिर संभावनाएं तलाश पा रहे हैं?

0: देखिए, खाड़ी युद्ध वैश्विक प्रभाव डाल रहा है आर्थिक पक्ष पे, और आपने जैसा देखा कि यूएसए के द्वारा और इसराइल के द्वारा जो ईरान पे अटैक किया गया, उसका एक नेगेटिव नकारात्मक जो प्रभाव है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, जहाँ से आपका आवागमन है, जो वाटरवे है, जिसे आप जल डमरू कहते हैं,
1: जी
0: जलमार्ग कहते हैं, वो ओमान और ईरान के बीच का जलमार्ग है, जिससे लगभग जितना भी क्रूड ऑयल का जो संचालन आवागमन है, वो लगभग 20% जो वैश्विक पटल पे जाता है, प्रेशर होता है उसका, वो वहीं उसी के थ्रू होता है। तो उसका असर आपको वैश्विक अर्थव्यवस्था पे देखने को मिलेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे अछूती नहीं है, उसका दुष्प्रभाव आपको दिख रहा है और लगातार वो बढ़ता जा रहा है। अगर इसको थोड़ा सा और मैं एलाबोरेट करूं तो इसको समझने
1: जी
0: की कोशिश करिएगा। जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि 90% ऊर्जा स्रोत जो क्रूड ऑयल है, उसका हम आयात कर रहे हैं। और जब लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात होती है, तो हमारी डिपेंडेंसी लगातार कतर जैसे राष्ट्र पे है। और जब हम एलपीजी की या क्रूड ऑयल की बात करते हैं, तो यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सब का भी प्रभाव है। इसको ज़रा सा मैं और स्पेसिफाई कर दूं,
1: बिल्कुल
0: 34% जो आयात है वो कतर से कर रहे हैं हम, 26% आयात हम यूएई से कर रहे हैं, 8.3% का जो आयात है कुवैत से हो रहा है, 11% सऊदी अरेबिया से। तो ये जो पक्ष है, हम जब इतना, हमारी जो निर्भरता है गल्फ या खाड़ी देशों पे जब बनी हुई है, तो उसका इम्पैक्ट, जो प्रभाव है, चाहे वो दुष्प्रभाव हो चाहे अच्छा हो, दोनों पक्ष आपको देखने को मिलते हैं, और अर्थव्यवस्था उसके प्रभाव से अछूती नहीं रह पाती।
1: लेकिन इस खाड़ी युद्ध के आधार पर अगर हम देखें तो क्या केवल तेल या फिर गैस के क्षेत्र को छोड़ें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था हमारी जो है केवल इन्हीं दो पर तो है नहीं, क्या इसका असर जो शेष अवयव हैं उस पर भी पड़ रहा है?
0: देखिए, जब भी हम ऊर्जा की बात करते हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, आपको पता है कि जब हम आर्थिक क्षेत्रों की बात करते हैं तो उसमें कृषि क्षेत्र है, उद्यम है, सेवा क्षेत्र है, सभी का अपना रोल है, भूमिका है। और अगर कोई भी पक्ष अर्थव्यवस्था का पीछे रह जाता है, तो फिर आप देखेंगे कि उसका दुष्प्रभाव आपको दिखता है, आपको जीडीपी ग्रोथ रेट के रूप में, सोशल सेक्टर के वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स के उन्नयन में, उसके विकास में। और जो मेन है, यानी आप अगर देखेंगे कि जो क्रिएशन ऑफ जॉब्स है, वो एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी के साथ आता है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, यानी कृषि क्षेत्र का विस्तार होगा, उद्यमों का विस्तार होगा, सेवा क्षेत्र का विस्तार होगा, तो साथ ही साथ आप देखेंगे कि रोजगार का सृजन भी आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, सेवा क्षेत्र भी बढ़ता हुआ दिखेगा, सोशल सेक्टर का एक्सपेंशन होगा, जिससे कि सोशल सिक्योरिटी जैसे प्रावधान आपको दिखते हैं, और वो सकारात्मक ऊर्जा के साथ अर्थव्यवस्था के विकास को आगे बढ़ाता है। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि क्या दूसरे क्षेत्र इस प्रभाव से, जो खाड़ी युद्ध हो रहा है उससे प्रभावित है, तो मैं आपको बताऊं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर जो सेवा क्षेत्र का है, यानी 75% फूड सर्विसेज इंडस्ट्री है वो एलपीजी पे निर्भर है, और एलएनजी का इंपोर्ट आपका लगातार प्रभावित हुआ है। और 2024-25 में भारतवर्ष के द्वारा 27 मैट्रिक मिलियन टन का लिक्विफाइड नेचुरल गैस का आयात किया गया था, जिसमें से 50% केवल कतर से था, जैसे मैंने बताया। और कतर की जब हम बात करें, ये जो एलएनजी है, ये फर्टिलाइजर के प्लांट में उपयोग की जाती है, गैस के नेटवर्क को बढ़ाती है, साथ ही साथ इसकी जो सप्लाई अगर प्रभावित होगी, तो इसका दुष्प्रभाव आपको हर जगह दिखेगा।
1: कहने का मतलब ये हुआ आपका कि तेल और गैस पर जितनी भी चीजें आधारित हैं वो तो हैं ही, लेकिन तेल का खेल जो कहते हैं कि बहुत व्यापक होता है, वह निश्चय ही प्रत्येक का जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन की चीजें हैं उन सब पर पड़ रहा है, तो इससे हमारे ऊपर असर पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जितना कुछ मैनेज किया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसमें यह देखा जा रहा है कि 6 से 6.5% की ग्रोथ हमारी बनी रह सकती है जो वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं उसके कारण, और भविष्य में एथेनॉल वगैरह की बात है ही, देखा जाएगा आगे क्या होता है कैसा होता है, तो फिर से आप

0: से बात करेंगे। आज आपने समय निकाला, स्टूडियो आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सर।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे भेंटवार्ता, खाड़ी युद्ध का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार कैथल से बातचीत कर रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है किशोर चतुर्वेदी के स्वर में कुछ भजन। सबसे पहले प्रस्तुत है सूरदास की रचना किशोर चतुर्वेदी के स्वर में।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं किशोर चतुर्वेदी के स्वर में भजन। आइए सुनते हैं एक और रचना सूरदास की।

0: पर जाकर शीघ्र आवेदन करें। स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 20 जून 2026 तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए 25 जून 2026 निर्धारित है।
1: पलक मुच्छल और अल्तमश की आवाजों में आइए सुनते हैं ड्रीम गर्ल फिल्म का ये गीत।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
4: उत्तर प्रदेश के प्रथम NAC A++ मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में अध्ययन के माध्यम से विद्यार्थियों को उत्कृष्ट शैक्षणिक एवं रोजगार परक अवसर प्राप्त हो रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप सत्र 2026 से 27 में मैनेजमेंट, ज्योतिष, योग, विधि, एग्रीकल्चर, BCA, फार्मेसी, इंजीनियरिंग, कला, ललित कला, विज्ञान तथा वाणिज्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपना करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट www.lkounivi.ac.in के प्रवेश

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: ये जवानी है दीवानी, आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत तोची रैना और रेखा भारद्वाज के स्वर में।

0: चित्रपट से कार्यक्रम में अभी आपने ये गीत सुना। अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। अब दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या प्रसारित होगी।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमेरिका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान।

0: 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियाम में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए, भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।

0: है द टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल के मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है, वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की

0: पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैन्ड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
1: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश-ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लो ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
2: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
3: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
2: नो टेररिज्म एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
1: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर

0: प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराखची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France, also to hold bilateral meetings tonight with heads of Canada, UK and UAE to meet US President tomorrow. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan holds high-level meeting to review preparations for this Kharif season. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces Eastern Frontier Rifles will soon be revived and over 1,000 Gorkha youths to be recruited. India and Japan adopt rule of implementation for joint crediting mechanism under Paris Agreement to boost cooperation on greenhouse gas emission reduction and sustainable development initiatives. Iran says deal to end war with US would also require Israel to withdraw from Lebanon. IMD forecasts thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds over North India tomorrow. And Indian squad

0: ही खत्म हो गए क्योंकि लीडरान सिर्फ 1 घंटे 15 मिनट के लिए जमा हुए थे। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में आला सतह की ज़राअत से मुतालिक एक मीटिंग में शिरकत की और 2026 की खरीफ की फसल के लिए मुल्क भर में तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ारत ज़राअत ने एक बयान में कहा कि एलनिनो की मुमकिन सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर मौसूफ़ ने कपास की पैदावार में इजाफ़े, दालों में खुद किफालत को हासिल करने और कम बारिश वाले ज़िलों में हंगामी नौइयत के मनसूबे तैयार रखने पर खसूसी ज़ोर दिया। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ज़राअत के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में किसानों के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। मीटिंग में सीज़न के दौरान नामवाफिक मौसमी सूरत हाल से ज़राअत और किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पर तमाम ज़रूरी इकदाम किए जाने को यकीनी बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की गई है। जनाब चौहान ने हिदायत दी है कि उन अज़ला में जहां कम बारिश या गैर मुसावी बारिश होने का इम्कान है पेशगी तौर पर तमाम इकदामात किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे अज़ला की शनाख्त की जानी चाहिए और रियासतों के साथ मिलकर फसल के हिसाब से हंगामी मंसूबे तैयार किए जाने चाहिए ताकि मौसमी चैलेंज की सूरत में फौरी तौर पर किसानों को मुतबादिल आलात और ताउन फराहम की जा सके। नई दिल्ली से सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल हफीज़।
0: मगरबी बंगाल के वज़ीर आला शुभेंदु अधिकारी ने आज ऐलान किया है कि तारीखी ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR को जल्द ही नई जिंदगी अता की जाएगी और इस फोर्स में 1000 से ज़्यादा गोरखा जवानों को भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग के कुर्सियांग में एक अवामी रैली से खिताब करते हुए जनाब अधिकारी ने मुल्क के दिफा में गोरखा फ़ौजियों के जोश व जज्बे और क़ुरबानियों के तई खराज अकीदत पेश किया। जनाब अधिकारी ने मज़ीद ऐलान किया कि रियासती पुलिस फ़ोर्स में जल्द ही भर्ती शुरू की जाएगी जिससे गोरखा जवानों को बड़ी तादाद में रोज़गार के मौके मिलेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि रियासती भर्तियों में कम से कम 30% सीटें ख़वातीन के लिए रिज़र्व होंगी। भारत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की काबिल बसीरत 12 साल दौरे हुकूमत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के उसूलों से तहरीक पाकर ज़बरदस्त तब्दीली रुनुमा हुई है। आकाशवाणी के ख़बरों का शोभा एक खसूसी फ़ीचर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के पेश कर रहा है। आज हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ नरेंद्र मोदी हुकूमत की कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी पर तवज्जो मरकूज कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। पिछले बरस 6 और 7 मई की दरमियानी शब को ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को एक वाज़े पैगाम दिया कि भारत जंग नहीं चाहता लेकिन दहशतगर्दी को बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई सुर्ख लाइन खींच दी कि अगर दहशतगर्दी किसी की स्टेट पॉलिसी है तो उसे एक बराह रास्त और क़ुव्वत से भरपूर रद्द अमल का सामना करना होगा। लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के मजबूत ठिकानों को निशाना बनाते हुए भारत ने पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाके में वाक़ दहशतगर्दों के 9 बड़े लॉन्च पैड्स को कामयाबी के साथ तबाह कर दिया। इस कार्रवाई में 100 से ज़्यादा दहशतगर्द हलाक हुए। इधर 7 पड़ोसी मुल्कों तक फैली 15,000 किलोमीटर से ज़्यादा अपनी ज़मीनी सरहदों के तहफ़ के लिए आज भारत मुल्क को अवलियत देने के असूल की रहनुमाई में अपनी मुअसर खारजा पॉलिसी पर अमल कर रहा है। साथ ही वो दिफा के शोबे में खुद कफील होने की जानब पेशरफ कर रहा है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने कहा कि आसाम में खुली सरहद एक बड़ा मसला था और नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस मामले से निमटने के लिए तेज़ी के साथ काम किया है। एनडीए हुकूमत दहशतगर्दी को कतई बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के तई पूरी तरह पुरअज़्म है। नई दिल्ली से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने पेरिस मुआहदे की दफ़ा 6.2 के तहत मुश्तरका क्रेडिटिंग मैकेनिज्म JCM पर अमल आवरी के जवाबित को इख्तियार किया है ताकि आब व हवा से मुतालिक कार्रवाई, जहरीली गैसों के अखराज में कमी और पायदार तरक्की की स्कीमों के मुतालिक तआवुन को फ़रोग़ दिया जा सके। माहौलियात, जंगलात और आब व हवा की तब्दीली की वजारत के मुताबिक अमल आवरी के जवाबित को क्रेडिटिंग के मुश्तरका मैकेनिज्म के लिए पिछले बरस दोनों मुल्कों के दरमियान तय पाए तआवुन के मुफाहमत नामे

0: इसी करीब इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल इतने दिल से इतने प्यार से लगाई। लेकिन ये बताइए कितने दिनों बाद आपकी कॉल लगी?
0: मैम 2 महीने बाद लगी, लेकिन मैं 1 महीना आप में 1 महीना लगाऊंगा मैम। आज आधा जेठ की पलमा है, आधे साल की।

0: रिसीव करी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ मैम।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कॉल इतने दिल से इतने प्यार से लगाई। लेकिन ये बताइए कितने दिनों बाद आपकी कॉल लगी?
0: मैम 2 महीने बाद लगी, लेकिन मैं 1 महीना आप में 1 महीना लगाऊंगा मैम। आज आधा जेठ की पलमा है, आधे साल की मास के बाद में लगाऊंगा मैम मैं अब।
1: जी जरूर, चलिए तो ये तो अच्छा है ना।
0: 1 महीना बाद में लगाऊंगा, जितने श्रोता लोग सुन रहे हैं भले सभी सुन ली, 1 महीना बाद में कॉल लगाऊंगा मैम मैं।
1: अच्छा जी, लेकिन आज के इस कार्यक्रम में आपकी कॉल लग गई तो भाई आज तो पहले ही नंबर पे आपकी कॉल लग गई, आप बहुत खुश होंगे।
0: जी मैम खुश तो मैं।
1: अच्छा अमर सिंह जी, करते क्या है वैसे आप?
0: खेती किसानी करते हैं मैम।
1: अच्छा जी, वहाँ कैसा मौसम हो रहा है इस समय?
0: कल बारिश होती, परसों रविवार दिन 12 बजे से 4 बजे तक बारिश होती मैम दिन भर।
1: अच्छा जी, किस चीज की खेती करते हैं आप?
0: जी मैम
1: खेती किस फसल की करते हैं, क्या फसल आप उगाते हैं?
0: करते हैं सुबह भी लगाएंगे आप सुबह भी।
1: अच्छा जी तो खेती किसानी करते करते रेडियो भी साथ चलता रहता होगा?
0: जी मैम।
1: चलिए बहुत बढ़िया,
0: जुड़े रहते हैं मैम। और आप कौन मैम बोल रही मैम? मेरा रेडियो अभी बंद है मैम, हवा में टावर मावर छतरी माथी सब घूम गई, इसलिए मतलब मैं नहीं सुन पा रहा हूँ। जैसे आप कौन मैम बोल रही है?
1: जी मुझे शाइस्ता कहते हैं, शाइस्ता बोल रही हूँ मैं।
0: शाहिद कपूर?
1: शाहिद कपूर तो भाई बॉलीवुड के बहुत बड़े हीरो हैं। अब हम तो मतलब
0: वो दीप्ति जोशी दीदी को हम सबको जानते हैं, उनकी आवाज़ पहचानते हैं, आपकी आवाज़ मुझे मतलब मैं।
1: कोई बात नहीं, आप जब अगली बार कॉल करेंगे तो हो सकता है, अगर आप 2 महीने बाद कॉल करेंगे तो फिर तो पहचानना मुश्किल ही होगा। वैसे मुझे शाइस्ता कहते हैं, शाइस्ता। हाँ जी, तो आप आज कौन सा गीत सुनना चाहते हैं अमर सिंह जी? मैं तो आपको पहचान गई जी। आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं ये बताएं पहले।
0: तो मूवी का नाम है माफ के लिए बोले ओके जुदा मुझसे, तुझे लौट के आना है पल भर की जुदाई, ऐसे कुछ मैंने बोले मैं भूले जाऊँ।
1: नहीं आप भूल रहे हैं, लेकिन मैं समझ गई, हम आपके हैं कौन, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत आप सुनना चाहते हैं। क्यों, मैं सही हूँ?
0: जी मैम, पहले तो मैम आपको
1: जी
0: और माईलाल चंदेल है, अनुकुमार भट्टाचार्य जी है, और गोल्डी है, पूरन जी है, गजराज जी है, रमेश प्रजापति है, और अविनाश जी है त्रिपुरा से, जितने श्रोता लोग सुन रहे हैं ना, किसी का नाम रह गए हो सबके लिए।
1: चलिए बाकी सबके नाम आप मन में रखिए और सोचिए कि उन सब के लिए आपने ये समर्पित किया है ये गीत, लता मंगेशकर और SP बाला सुब्रमण्यम का गाया हुआ गीत आपके लिए आपके रेडियो सेट पर। नमस्कार।

0: हेलो हेलो
1: नमस्कार मैम
0: जी, नमस्कार। कौन साहब और कहाँ से?
1: जी, मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बीबीपुर से मकसूद हुसैन बात कर रहा हूँ मैम।
0: जी, मकसूद हुसैन साहब, जिला मुरादाबाद से आप यहाँ पे कॉल लगा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: बहुत खुशी की बात है। ये कॉल आपकी पहली बार लगी है या फिर आप पहले भी कॉल कर चुके हैं हमें?
1: मैम, मैं करीब करीबन 40-45 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ मैम। मेरी 58-59 वर्ष की उम्र है मैम, और मैं आपके तो केंद्र से जो है वो जो किशोर है, क्या नाम है उनका, वो
0: राजकिशोर जी।
1: राजकिशोर जी, आनंद जी, नूतन जी
0: जी
1: और ये राजेश बरी जी आकाशवाणी रामपुर से गए हुए हैं हमारे यहाँ के। तो
0: जी जी जी
1: हाँ, तो मैं तो काफी पुराना लिसनर हूँ मैम। मेरी
0: क्या
1: तो अक्सर
0: बात है।
1: फोन कॉल लगती रहती है यहाँ पर।
0: देखिए, ये जो आपने नाम लिए अभी, ये सब हमारे सम्माननीय वरिष्ठ उद्घोषक रहे हैं।
1: जी जी
0: हमारे
1: जी
0: इनमें से कुछ अभी रिटायर हो चुके हैं और कुछ अभी भी
1: हाँ,
0: पद पर हैं।
1: और मैम नूतन जी जो थी वो तो प्रस्तुत करता बहुत ही हंसमुख और बहुत ही खुश मिजाज थी। बात बात में वो तो हंसती थी, मुस्कुराती थी मैम, बहुत
0: बिल्कुल,
1: बड़ी अच्छी मुस्कान थी उनकी।
0: क्या बात है, आपको सब कुछ याद है। लेकिन देखिए, हम लोग भी जो है इस प्रोग्राम को पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए और आपकी पसंद का गीत ज़रूर बजे।
1: मैम,
0: जी
1: आपकी आपसे जो मेरी बात हो रही है वो पहली मर्तबा हो रही है मैम। मीनू जी से और दूसरे जो हैं उनसे बात होती रहती है मैम, और एक एक रामपुर के उद्घोषक वो गए हुए हैं उनसे भी बात होती रहती है। विकास है जिन्हों, कौन है वो?
0: जी जी जी नहीं देखिए,
1: हाँ
0: यहाँ पर तो ये है ना कि ऑन एयर इस समय जो भी ड्यूटी पर होगा और वो आपसे
1: जी,
0: बात करेगा और पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से आपको आपकी पसंद के गीत सुनाने की कोशिश करेगा, मनोरंजन करने की कोशिश करेगा। तो इस समय मेरा भी यही धर्म है कि जो आप कहें वो मैं आपकी पसंद का गीत लगाऊं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहते हैं।
1: मैम एक फिल्म है मेरे सनम पुरानी वाली, उसमें बहुत ही प्यारा आशा जी का गीत है, जाइए आप कहाँ जाएंगे ये नजर लौट के फिर आएगी। और
0: वाह,
1: सुनने वाले कुछ साथ में है डॉक्टर अख्तर हुसैन, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी, रजा हुसैन है, हाजी गफ्फार खां है,
0: जी
1: मांगीलाल चंदेल है, सभी जो है सुनने वाले, और साथ में मैम आप भी रहेंगे मैम।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये
1: धन्यवाद
0: फिल्म
1: मैम।
0: जो थी, आशा पारेख और विश्वजीत चटर्जी इसमें हीरो और हीरोइन के किरदार में थे। अपने ज़माने की सुपर डुपर हिट फिल्म थी।
1: हाँ मैम,
0: और
1: शम्मी कपूर की फिल्म है ये।
0: जी, मेरे हिसाब से तो विश्वजीत इसमें थे और आप इसको तस्दीक कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि इस फिल्म के सभी गीत बहुत ज़्यादा
1: सभी गीत
0: पसंद
1: बोल
0: किए
1: सभी
0: गए।
1: गीत आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा,
0: जी
1: और
0: जी तो
1: आगे है
0: चलिए,
1: कातिल मेरा और मैं पीछे पीछे, बहुत से गीत है जो हम तो मेरे मान भी जाओ, बहुत से गीत है मैम।
0: जी तो चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का, आपके रेडियो सेट पे ये गीत।
1: थैंक
0: ठीक है,
1: यू, धन्यवाद मैम।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

0: रात का ये खूबसूरत समा और उस पर से पुराने रोमांटिक फिल्मी गीत, क्या खूबसूरत सा, क्या बेहतरीन ये प्रोग्राम चल रहा है। और हमारे श्रोताओं का इसमें बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि उन्होंने ही पसंद किए हैं ये प्यारे प्यारे से गीत। तो चलिए देखते हैं अब हमारे कॉलर कौन है और कौन से गीत की फरमाइश करते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार बहन जी।
0: जी नमस्कार भाई साहब, कौन साहब और कहाँ से?
1: जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका भाई मांगीलाल चंदेल बोल रहा हूँ।
0: मांगीलाल जी, जी मांगीलाल जी, आपने जैसे ही जिला गुना कहा ना तो मैं पहचान गई कि मांगीलाल जी हमारे आ चुके हैं ऑन एयर। और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप तो हमारे बहुत पुराने लिसनर हैं।
1: हाँ बहन जी, मैं बहुत पुराना लिसनर हूँ। मैं सन 1980 से रेडियो से जुड़ा हूँ और मैं जब भी सभी आकाशवाणी केंद्रों को सुनता रहता।
0: क्या बात है, क्या बात है। लेकिन मुझे लगता है आकाशवाणी लखनऊ से आपका विशेष प्रेम है।
1: हाँ, बहुत ज्यादा है आकाशवाणी लखनऊ से। मैं बहुत सालों से जुड़ा हुआ हूँ, जो हफ्ते में एक ही दिन आता था ना
0: जी, जी।
1: जब से बहुत सालों से जुड़ा हुआ।
0: क्योंकि आपका यहाँ लगातार कॉल बराबर आता रहता है और हमारे कुछ ऐसे कॉलर हैं जो बराबर कॉल करते हैं तो हम लोगों को भी नाम उनके याद हो गए हैं, स्मृत
1: बिल्कुल
0: में है।
1: याद होगा बहन जी।
0: जी
1: और आपकी प्रस्तुति है ना बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा लगता है जब भी आप आती हो ना। वैसे हर मंगलवार को आ रही हो आप।
0: हाँ पिछले
1: बहुत
0: कुछ समय
1: अच्छा
0: से
1: लग रहा है, मतलब आप
0: ये तो
1: बहुत
0: आपका
1: बढ़िया
0: बहुत
1: कॉलर से
0: बड़पन,
1: संतोषजनक
0: आपका
1: बातें कर
0: आभार
1: रही
0: है,
1: हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप वैसे मांगीलाल जी हर बार कुछ बढ़िया सा गीत लेके, मतलब फरमाइश लेके
1: हाँ
0: आते
1: बहन
0: हैं।
1: जी, मेरी तो कुछ चॉइस ऐसी होती है यार, कुछ हटके
0: जी
1: पुरानी ज्यादा सुनता हूँ
0: क्या
1: सदाबहार
0: बात है
1: गाने।
0: भाई, ये तो वक्त ही है थोड़ा सा ऐसी तरह के गीतों का, फास्ट सॉन्ग्स के बजाय थोड़े से अच्छे से सुन, मीठे से सॉन्ग जो होते हैं। पुराने तो इसके बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते, पुराने सभी
1: जी,
0: गीत बहुत ही
1: सही है बहन जी,
0: सुरीले हैं। और
1: सुरीले
0: रात,
1: होते हैं
0: जी,
1: सदाबहार गाने।
0: तो
1: और इस मौसम में कुछ मौसम के हिसाब से भी गाना होना चाहिए, वो भी अच्छा लगता है। आज
0: वाह
1: क्या है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, बिल्कुल काले काले आसमान में बादल छाए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं,
0: क्या बात है,
1: मौसम
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: सुहावना है, बहुत
0: जी।
1: अच्छा लग रहा है। तो ऐसे में मुझे ये गाना याद आ गया बहन।
0: कौन सा गीत मुझे भी बताइए।
1: फिल्म का नाम है मेरा साया।
0: ओहो, मैं कुछ कुछ समझ गई आप कौन से गीत की
1: समझ
0: बात
1: गई
0: कर
1: आप,
0: रहे
1: समझ
0: हैं।
1: गई।
0: क्या मैं सही समझ रही हूँ, आप कृपया
1: बिल्कुल सही
0: बताएं।
1: समझ रही हैं आप, सही समझ रही हैं
0: क्योंकि आपने बादलों की बात की तो मेरा
1: जी।
0: साया फिल्म का तो एक गीत बहुत ही ज्यादा,
1: बस वही
0: मतलब
1: लगा देना,
0: पसंद
1: वो
0: करते
1: आप
0: हैं लोग।
1: समझ रही हैं, वही गाना लगा था, नैनों में बदरा छाए,
0: क्या बात है, मतलब आपने
1: बिजली
0: मौसम के
1: सी
0: हिसाब से
1: चमकी
0: गीत
1: आए,
0: चुना है।
1: ऐसे में बलम कुछ ऐसा ही बोल है।
0: जी, बहुत अच्छा गीत है। लता जी की आवाज़ में इस गीत के और चार चांद लग गए और आज तक लोग रेडियो सेट पे सुनते हैं। देखिए आपने भी फरमाइश की है, बहुत अच्छा लगा। तो चलिए
1: बहन जी,
0: मांगीलाल जी,
1: कुछ मित्रों को याद कर सकता हूँ इसी गाने पर।
0: जी ज़रूर, मगर
1: हाँ,
0: समय का ध्यान रखते
1: गजराज
0: हुए।
1: गजराज लोधी जी हैं
0: जी
1: और फूलचंद पाल जी हैं
0: जी
1: और

0: दिनकर सिंह जी हैं, बेटा सिंह जी हैं, बेटा सिंह यादव जी,
1: जी
0: प्रेमदास बाबा जी हैं, कृष्ण जी, राजपूत जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, रामबाबू शर्मा जी हैं, रमेश प्रजापति जी हैं, राहुल कुमार जी,
1: बहुत लंबी लिस्ट है आपकी,
0: मोहम्मद बख्तार जी हैं और मकसूद हुसैन भाई साहब हैं, अमर मिसाऊ जी हैं।
1: चलिए कुछ को अगली बार डेडिकेट कर दीजिए। चलिए बाकी आप सबको बता दिएगा, थोड़ा कहा ज्यादा समझना, और हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये सुरीला सा लता जी का गाया हुआ गीत। नमस्कार।

0: हेलो हेलो जी, नमस्कार।
1: हेलो
0: हेलो
1: जी मैम, मैं ग्राम गुनौरे जिला सतारा महाराष्ट्र से तनुश्री सर्वे बात कर रही हूँ
0: तनुश्री,
1: जी। थैंक
0: तनुश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: यू मैम, और मेरा पहली बार इस कार्यक्रम में कॉल लगाया तो मुझे बहुत खुशी हो रही है
0: मुझे भी बहुत खुशी हो रही है तनुश्री। वैसे आप अपने बारे में कुछ तो
1: जी
0: बताइए हमें,
1: जी
0: अपने बारे में कुछ तो बताइए, अपना परिचय दीजिए भाई।
1: जी मैम, मुझे 10वीं से भी टाइम नहीं देता और मैं शास्त्रीय संगीत सीख रही हूँ
0: अच्छा, वाह क्या बात है। और
1: जी।
0: इसके अलावा आपको क्या क्या पसंद है? गीत सुनना, रेडियो सुनना?
1: जी
0: रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी मैम, रेडियो तो बहुत सुनना पसंद है, और आपका सुबह जो 11 बजे कार्यक्रम आते हैं ना, कुछ तुमको कुछ हमको, वो कार्यक्रम भी मुझे बहुत सुनना अच्छा लगता है। मैं उस पर भी कॉल लगाती हूँ, पर क्या होता है, रिसीव तो होता है, पर हम इतने दूर से कॉल कर रहे होते हैं तो हमारा आवाज आपके पास इतना अच्छा नहीं पहुँचता, तो हमारा फोन कट हो जाता है,
0: कोई बात नहीं
1: तो मुझे
0: तनुषी।
1: बहुत बुरा लगता है क्योंकि आपकी आवाज तो हमारे पास बहुत अच्छी आती है, पर हमारे आवाज आपके पास अच्छी नहीं आती, तो मुझे बहुत बुरा लगता है
0: हाँ, बुरा तो लगता है जब कोई काम आप मन में सोचे हो और वो पूरा ना हो, लेकिन देखिए हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए ना, कोशिश करने वालों की जीत हो जाती है। देखिए आपकी आज जीत हो गई, आज मिल गया आपका नंबर फौरन, तो आज तो आप खुश बहुत होंगे।
1: जी मैम। फिल्म का नाम है सलामी और गाने के बोले क्या देखते हो।

0: क्या बात है। आहा, आप तो बहुत सुरीली हैं भाई तनुश्री, और आपने बिल्कुल ट्यून पकड़ ली असल गीत की। ये गीत मैंने भी बहुत सुना है और बहुत प्यारा गीत है, इसके शब्द लिरिक्स
1: और
0: बहुत अच्छे
1: मैम
0: हैं।
1: डेडिकेट, मेरे पापा भी लाइव सुन रहे हैं, तो मेरे पापा को और हमारे बहुत आकाशवाणी के श्रोता है उनको और भगवान सिंह परमार उनको सुनाना
0: क्या बात है
1: चाहिए।
0: भाई, ज़रूर, मुझे लगता है वो सब भी सुन ही रहे होंगे क्योंकि आपने उनके नाम लिए हैं, तो उनको भी और आपको भी। आइए सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। नमस्कार।
1: ओके।

0: पुराने गानों की एक ख़ास बात शायद याद रखने की ये भी थी कि उनके लिरिक्स बहुत अच्छे होते थे, दिल में उतर जाने वाले होते थे, बिल्कुल बड़े अर्थपूर्ण होते थे, भावपूर्ण होते थे, फिर उसके साथ बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुरीला मन भावन म्यूज़िक। तो एक साथ जब दो चीज़ें अच्छी अच्छी जुड़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है कि उन गीतों में एक अपने आप वो अमर हो जाते हैं, वो अमरत्व प्राप्त कर लेते हैं। तो इसी तरीके के गीत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज के इस प्रोग्राम में हम लोग शामिल कर रहे हैं। चलिए देखते हैं हमारे अगले श्रोता कौन से गीत की फरमाइश करते हैं और कहां से और कौन है। हेलो हेलो जी, नमस्कार।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, कौन साहब और कहां से?
1: बात कर रहा हूं, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है।
0: आप बताइए, थोड़ी तेज हुई कि नहीं?
1: अब तो नहीं, उतनी धीमी आ रही है, लेकिन चलो टाइम भी खत्म होने वाला है तो कुछ गाना बता दो। गाना मूवी का नाम है साथी, गाने बोल आज हम तुम मिलके सनम वादा कर लो कि आपके इधर मौसम कैसा है।
0: जी आपने तो एक साथ बहुत सारे बातें कर डाली, लेकिन हम एक एक वन बाय वन बताते हैं आपको।
1: मौसम में गर्मी का मौसम चल रहा है
0: जी। हाँ, अभी तो यहाँ पर थोड़ा सा मौसम जी, यहाँ थोड़ा मौसम गर्म है।
1: आपके जैसे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। कुछ लोग डबल फोन लगाते हैं, ऐसा ना करें, कृपया करके नाम चेंज करके कुछ फोन बताते हैं, कुछ फोन बताते हैं, ऐसा बहुत गंदे करते हैं इसीलिए तो बहुत दिक्कत देते हैं, इसीलिए कॉल किसी की लग नहीं पाती है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन देखिए हमारे बहुत से श्रोता ऐसे भी हैं आपके जितने समझदार भी हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं।
1: शिकायत करने से कुछ भी नहीं होगा, ना किसी का आकाशवाणी किसी का, वो तो सरकारी

0: वो तो सबका है, वो कोई शिकायत
1: बिल्कुल
0: करने से
1: बिल्कुल
0: उसका कभी फायदा नहीं मिलेगा, कितने भी शिकायत करो कुछ भी नहीं होगा,
1: जी बिल्कुल। नहीं नहीं ऐसा
0: ऐसा
1: नहीं
0: नहीं
1: है,
0: होता
1: आप
0: है।
1: ये ना कहिए,
0: तो
1: देखिए
0: ऐसा शिकायत
1: अगर
0: में, हाँ
1: जायज़ शिकायत होती है तो उस पर पूरा विचार किया जाता
0: तो ज्यादा शिकायत होती है तो
1: है
0: ज्यादा ज्यादा प्रोग्राम बंद हो जाएगा, ये होता है,
1: ना।
0: किसी को प्रोग्राम
1: चलिए,
0: चेंज करके डालना है तो
1: आपने
0: उसको
1: शुरू में जैसा कि मुझे बताया साथी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, और देखिए कितनी अच्छी बात है कि प्रोग्राम के अंत में आपका कॉल लग गया, तो हम भी मतलब
0: दोस्तों का नाम लेना चाहता हूँ भाई जी।
1: जी जल्दी बताया, कार्यक्रम का समय निकलता जा
0: मैडम
1: रहा
0: जी
1: है।
0: सबसे पहले आपके लिए गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ, बसंत बसंत जी लाल
1: बहुत बहुत
0: सूर्यवंशी
1: धन्यवाद
0: आएंगे और
1: जी।
0: विजय पांडे जी आएंगे बलरामपुर से, और उसका नाम क्या है, लोकेंद्र गुर्जर आएंगे द्वितीय मध्य प्रदेश से, आएंगे
1: जी
0: प्रेम बाबा जी हैं, जितने तमाम सुनने वाले सबको गाना डेडिकेट करना चाहता हूँ मैडम जी,
1: जी बिल्कुल, आपको पूरा
0: और
1: अधिकार है, आप
0: मेरा पूरा
1: डेडिकेट
0: गाना सुनवा
1: कीजिए
0: दीजिए मैडम जी।
1: जी। देखिए मैंने आपके रेडियो सेट पे धीरे धीरे ये गाना बजना शुरू हो चुका है, ठीक
0: हाँ
1: है।
0: हाँ बजना शुरू
1: तो
0: हो चुका है,
1: सतीश जी चलिए, आपके रेडियो सेट पर और हमारे सभी श्रोताओं के रेडियो सेट पर पेश खिदमत है साथी फिल्म का ये गीत। नमस्कार,
0: जी धन्यवाद मैडम,
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
1: नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, समय इजाजत नहीं दे रहा कि ये गीत हम आपको पूरा सुनवाएं। आज के लिए हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए शायस्ता जाहिद को इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।
2: नमस्कार श्रोताओं, खेल दर्पण का आज का अंक लेकर मैं रमनप्रीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का कार्यक्रम दो भागों में है। पहले भाग में फीफा वर्ल्ड कप 2026 और दूसरे भाग में भारत के लोकप्रिय खेल कुश्ती पर भेंटवार्ता को लिया गया है।

मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रमनप्रीत सिंह, और आज अगले कुछ मिनटों में अपनी सीट की पेटी कस लीजिए, क्योंकि हम आपको ले जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जहां धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें थम जाती हैं और पूरी दुनिया एक गेंद के पीछे दीवानी हो जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द ग्रेटेस्ट शो ऑन अर्थ, फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप की।

हवा में उत्साह है, मैदान तैयार है और इस वक्त उत्तरी अमेरिका के तीन खूबसूरत देशों अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में फुटबॉल का ऐसा बुखार चढ़ा है जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया। चाहे आप मेसी के जादुई ड्रिबल्स के दीवाने हों, रोनाल्डो की बुलेट जैसी फ्री किक के मुरीद हों या एम्बापे की बिजली जैसी रफ्तार के फैन, आज का यह खास प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज हम न सिर्फ इस साल चल रहे वर्ल्ड कप के रोमांच पर बात करेंगे बल्कि उस इतिहास के पन्ने भी पलटेंगे जिसने इस खेल को दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बना दिया।

तो जुड़े रहिए हमारे साथ, चलते हैं सीधे मैदान की ओर।

दोस्तों, इस बार का फीफा वर्ल्ड कप सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, यह एक उत्सव है जो सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। क्यों? चलिए आपको इसके पीछे के दिलचस्प आंकड़े बताता हूँ। सबसे पहली बात, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्ल्ड कप की मेजबानी तीन देश मिलकर कर रहे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा। कड़ाके की ठंड से लेकर चिलचिलाती धूप तक 16 अलग अलग शहरों के शानदार स्टेडियमों में यह जंग चल रही है। और बात सिर्फ तीन देशों की नहीं है, इस बार फीफा ने फुटबॉल प्रेमियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। अब तक हम और आप सिर्फ 32 टीमों को वर्ल्ड कप में भिड़ते देखते थे, लेकिन इस बार दिल थाम लीजिए, पूरे 48 देश इस सुनहरी ट्रॉफी के लिए जी जान लगा रहे हैं। 48 टीमें, 12 ग्रुप्स और कुल मिलाकर 104 मुकाबले, यानी एक पूरा महीना सिर्फ और सिर्फ शुद्ध फुटबॉल का रोमांच। इस नए फॉर्मेट ने टूर्नामेंट को और भी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बना दिया है। ग्रुप स्टेज से टॉप दो टीमें तो आगे जाएंगी ही, साथ ही तीसरे स्थान पर रहने वाली 8 सर्वश्रेष्ठ टीमें भी नॉकआउट स्टेज यानी राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बनाएंगी। इसका मतलब है कि हर एक गोल, हर एक सेकंड और हर एक कॉर्नर किक किसी भी टीम की किस्मत बदल सकती है। कोई भी टीम खुद को सुरक्षित नहीं मान सकती।

लेकिन दोस्तों आज हम 48 टीमों के इस महाकुंभ को देख रहे हैं, तो जरा सोचिए इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते

हैं और चलते हैं साल 1930 में। जी हाँ, आज से करीब 96 साल पहले उरुग्वे की धरती पर पहला फीफा वर्ल्ड कप खेला गया था। उस समय ना तो आज जैसी सुख सुविधाएं थीं और ना ही रंगीन टेलीविजन। सिर्फ 13 टीमों ने उसमें हिस्सा लिया था और मेजबान उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर पहला खिताब अपने नाम किया था। वहां से शुरू हुआ यह सफर हर 4 साल में और बड़ा और बेहतर होता गया। इस सफर ने हमें ऐसे महानायक दिए जिन्हें दुनिया कभी भी भुला नहीं सकती। पेले, ब्राजील के वो जादुई खिलाड़ी जिन्होंने अपनी कलात्मक फुटबॉल से 3 बार 1958, 1962 और 1970 में अपनी टीम को विश्व चैंपियन बनाया। उन्हें आज भी फुटबॉल का राजा कहा जाता है, डियोगो माराडोना। साल 1986 का वो वर्ल्ड कप, इंग्लैंड के खिलाफ वो हैंड ऑफ गॉड गोल और उसके ठीक बाद 5 खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गया सेंचुरी का सर्वश्रेष्ठ गोल। माराडोना ने फुटबॉल को एक कला से ऊपर उठाकर जुनून बना दिया। लियोनेल मेसी, और भला हम साल 2022 के कतर वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक फाइनल को कैसे भूल सकते हैं। लियोनेल मेसी का वो आंसू भरा चेहरा और जब उन्होंने आखिरकार उस सुनहरी ट्रॉफी को चूमा और अपने देश अर्जेंटीना को विश्व विजेता बनाया, वह आधुनिक फुटबॉल का सबसे भावुक पल था। फुटबॉल का इतिहास ऐसी ही कहानियों, आंसुओं, जीत और हार के रोमांच से भरा पड़ा है। चलिए इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर वापस आते हैं वर्तमान में। इस वक्त जो वर्ल्ड कप अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में खेला जा रहा है, वहां पहले ही हफ्ते में धमाके शुरू हो चुके हैं। बड़ी बड़ी टीमों के पसीने छूट रहे हैं और जिन्हें कमजोर समझा जा रहा था वो दिग्गज टीमों की आंखों में आंखें डालकर खेल रही हैं। शुरुआती दौर के मुकाबलों पर नजर डालें तो कई रोमांचक नतीजे देखने को मिले हैं। जहां जर्मनी ने कुराकाओ के खिलाफ 7-1 की प्रचंड जीत दर्ज की है और अपने इरादे साफ कर दिए हैं, वहीं स्वीडन ने भी ट्यूनिशिया को 5-1 से हरा कर एक तरफा अंदाज में अपनी ताकत दिखाई है। लेकिन हर मैच एक जैसा नहीं है। कनाडा और बोस्निया हर्जेगोविना का मैच 1-1 पर छूटा। ब्राजील जैसी 5 बार चैंपियन रही टीम को मोरक्को ने 1-1 की बराबरी पर रोक दिया और नीदरलैंड तथा जापान के बीच हुआ मुकाबला भी 2-2 की रोमांचक टक्कर के बाद बराबरी पर खत्म हुआ। यह दिखाता है कि इस बार मैदान पर कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। हर गुजरते दिन के साथ टूर्नामेंट और भी ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। फ्रांस, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, पुर्तगाल और स्पेन जैसी दिग्गज टीमें अब अपने अगले मुकाबलों के लिए कमर कस चुकी हैं। फुटबॉल पंडितों का मानना है कि इस बार का चैंपियन वही बनेगा जो 19 जुलाई को न्यूयॉर्क, न्यूजर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में होने वाले ग्रैंड फिनाले तक अपने धैर्य को काबू में रखेगा।

अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हम भारत में बैठकर इस महामुकाबले का मजा कैसे लें, क्योंकि मैच तो आधी रात को या सुबह सुबह आते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारतीय फैंस के लिए फुटबॉल का यह बुखार अब पूरी तरह से मुफ्त होने जा रहा है। जी हाँ, भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर डीडी स्पोर्ट्स पर इस वर्ल्ड कप के कई चुनिंदा और बड़े मुकाबले, खासकर नॉकआउट और बड़े मैचेस बिल्कुल फ्री प्रसारित किए जा रहे हैं। तो अगर आपके पास महंगा सब्सक्रिप्शन नहीं भी है, तब भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। बस अपना टेलीविजन ऑन कीजिए और डीडी फ्री डिश लगवा लीजिए। दुनिया के सबसे बड़े खेल के गवाह बनिए।

भारत में भले ही हमारी क्रिकेट टीम दुनिया पर राज करती हो, लेकिन जब फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात आती है तो कोलकाता के सॉल्ट लेक से लेकर केरल के मल्लपुरम तक और मुंबई की गलियों से लेकर दिल्ली के पब्स तक पूरा देश फुटबॉल के रंग में रंग जाता है। चाय की टपरियों पर इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि इस बार ट्रॉफी अर्जेंटीना ले जाएगी या फ्रांस जीतेगा या फिर ब्राजील छठी बार बाजी मारेगा।

घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हमारे इस सफर का समय अब समाप्त होने वाला है, लेकिन फुटबॉल का यह सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। अगले कुछ हफ्तों तक नींदें उड़ने वाली हैं, दफ्तरों और कॉलेजों में सिर्फ गो गो गो गोल का शोर सुनाई देने वाला है।

0: आइए कार्यक्रम के अगले भाग में सुनते हैं कुश्ती पर भेंटवार्ता, जिसमें हमारे मेहमान हैं ऋषि श्वेत सिंह, जो कुश्ती कोच एवं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के सदस्य हैं, और भेंट करता है राघवेंद्र सिंह।
1: श्रोताओं, जब हम बात करते हैं कुश्ती की तो गांव के वो अखाड़े याद आ जाते हैं जिनमें पहलवान अपने शरीर पर मिट्टी लगाकर अपने दांव को सामने वाले पहलवान पर आजमाते थे और आज भी आजमाते हैं। तो किस तरह से जब हम इतिहास को देखते हैं तो मल्ल युद्ध नाम से इसे जाना जाता था, तो मल्ल युद्ध से कुश्ती और कुश्ती से मैट वाली कुश्ती का एक लंबा सफर तय किया है इस खेल ने, इस विधा ने। तो कुश्ती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक ऋषि श्वेत सिंह जी। ऋषि श्वेत जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद सर।
1: ऋषि जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने कोचिंग करियर की शुरुआत कैसे की, किस बात ने आपको एक रेसलर से कोच बनने के लिए प्रेरित किया?
2: पहले तो मैं बता देना चाहूँ कि मैं लगभग 30 साल हो गए मुझे कुश्ती करते हुए। मैं 10-11 साल की उम्र से मैंने कुश्ती शुरू की थी और कुश्ती का रुझान मेरा इसलिए उसकी तरफ गया क्योंकि मेरे पिताजी भी वरिष्ठ कुश्ती प्रशिक्षक रहे
1: जी।
2: तो मेरा अखाड़े से बचपन से मेरा और मैट की कुश्ती से मेरा नाता रहा
1: जी।
2: और मैंने फिर स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर में अपना कुश्ती प्रशिक्षण किया। उसके बाद मैं लखनऊ आया और लखनऊ विश्वविद्यालय की टीम से भी मैं बतौर खिलाड़ी और कुश्ती प्रशिक्षक के रूप में भी जुड़ा हुआ हूँ वर्तमान में
1: जी जी।
2: और मैं लगभग 15-16 साल से कुश्ती प्रशिक्षण का कार्य कर रहा हूँ। मैंने उत्तर प्रदेश कुश्ती खेल निदेशालय के अंतर्गत अंशकालिक प्रशिक्षक के रूप में कार्य किया है और भारतीय खेल प्राधिकरण में भी मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनारस में अखाड़े पे मेरी पोस्टिंग रही है
1: जी जी।
2: और इस वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के साथ जुड़ा हुआ हूँ और उनकी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्तर प्रदेश की टीम का प्रतिनिधित्व करता हूँ प्रशिक्षक के रूप में।
1: ऋषि जी, आपने जैसा कि बताया कि आपके पिताजी भी कुश्ती प्रशिक्षक थे, तो आपने बहुत बड़ा समय, एक बड़ा लंबा समय आपने देखा हुआ है और इस क्षेत्र में जुड़े रहे हैं आप, तो बचपन में पिताजी को भी आप देखते रहे होंगे और आज खुद एक कोच के तौर पर हैं, तो तब से लेके अब तक आप इस खेल में क्या अंतर पाते हैं, खिलाड़ियों के मनोदशा में या परिस्थितियों में क्या अंतर पाते हैं आप?
2: देखिए, मैंने जब बचपन में कुश्ती देखी थी और कुश्ती खेलता था पिताजी के साथ अखाड़े में जाना, मैट पर जाना, तो वर्तमान समय में और उस समय के बीच में अंतर हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का बहुत फर्क आया हुआ है
1: जी।
2: पहले जो कुश्तियाँ थी हमारे पास मैट तो थे
1: जी।
2: मगर हमारे पास जैसे आज के समय में वीडियो एनालिसिस है या ऑनलाइन इंटरनेट पे या सोशल मीडिया के थ्रू हम किसी भी चीज को बहुत आसानी से देख लेते हैं, उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से कर लेते हैं। उस समय ये चीजें नहीं थी
1: जी।
2: उस समय आपके पास सीमित संसाधन थे और खेल की जो सुविधाएं थी वो भी बहुत सीमित थी
1: जी।
2: हर जगह मैट नहीं होते थे, ज्यादातर हमारे पहलवान

0: मिट्टी के अखाड़ों में ही प्रैक्टिस किया करते
1: जी,
0: थे,
1: जी.
0: मगर आज वर्तमान के समय में हमें लगता है कि मिट्टी के अखाड़े के साथ साथ हमारे पास हर अखाड़े के पास लगभग मैट भी हैं, और जो हमारे यहाँ एक पारंपरिक कुश्ती की मानसिकता थी, लोगों ने अब उससे बाहर आकर आधुनिक ओलंपिक कुश्ती की तरफ भी रुझान किया है, जिससे हमारी देश की कुश्ती दिन प्रतिदिन बहुत बेहतर होती जा रही है।
1: ऋषि जी, आपकी कोचिंग फिलॉसफी क्या है? आप एक अच्छे पहलवान में किन बुनियादी गुणों को देखते हैं?
0: देखिए, कोच के लिए फिलॉसफी का मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा जो होता है वो अनुशासन।
1: जी।
0: किसी भी खेल में आपको अनुशासन बहुत जरूरी है।
1: जी।
0: और ये चीज सिर्फ खिलाड़ी के ऊपर नहीं लागू होती, इस चीज का सबसे पहली शुरुआत जो होती है वो प्रशिक्षक के रूप में ही शुरू होता है। अगर प्रशिक्षक अनुशासित है, नियमित है और अपने काम के प्रति समर्पित है, तो उसका खिलाड़ी उस चीज को देख के मोटिवेट होता है या प्रेरित होता है और उसमें अपने अच्छा योगदान देने की कोशिश करता है।
1: कई बार ऐसा भी होता है कि खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं में हार जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको मानसिक तौर पर टूट जाता है। तो जब कोई अगर ऐसी परिस्थिति है, तो आप अपने खिलाड़ी को जो आपका शिष्य है उसे किस तरह समझाते हैं, या आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: देखिए, हम खेल के अंदर हार और जीत, खिलाड़ी को हम हमेशा पहले जब प्रैक्टिस सेशन में रखते हैं तभी ये बहुत प्रिपेयर करके रखते हैं कि जरूरी नहीं कि आप जो प्रैक्टिस करके जा रहे हैं आप हमेशा इससे जीतेंगे। तो आप अपने आप को पहले भी ये तैयार करके रखिए कि हो सकता है कि हम हारेंगे, तो हम इस चीज की तैयारी पहले से भी करके रखते हैं, जिससे कि उसके हारने पर उसके ऊपर उसका बहुत नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। और खिलाड़ी को हम एक प्रशिक्षक के रूप में एक चीज हमेशा तैयार रखते हैं कि बेटा ये आखिरी नहीं है, ये आपकी हो सकता है शुरुआत हो, क्योंकि हर जीत का आनंद आपको हार से ही मिलेगा। तो आपने अगर कुछ हारा है तो आपको ये देखना है कि हमारे अंदर कहाँ कमी रह गई, उसको आजकल आधुनिकता की, जैसे मैंने बात की, तो हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहा है या बहुत ज़्यादा निगेटिविटी हो रही है तो हम काउंसलर रखते हैं और उनसे काउंसलिंग करवाते हैं साइकोलॉजिकल, और बाकी बतौर कोच हम एक गार्जियन के रूप में या उसके बेस्ट जो होता है उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि ये आखिरी नहीं है, इससे आगे भी मिलेगा। और हमारे बहुत से खिलाड़ियों ने देखिए ओलंपिक दर ओलंपिक पिछले में कुछ रहा, उससे आगे अच्छा किया और आगे अच्छे करते गए हैं।
1: अब जो वर्तमान कुश्ती जो होती है, रेसलिंग होती है, उसमें भार वर्ग का बड़ा महत्व होता है, तो ऐसे में वेट मैनेजमेंट भी एक समस्या बन जाती है खिलाड़ियों के लिए, इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाते हैं?
0: हम लोग बच्चों को एक प्रॉपर वेट में पहले से डिसाइड होता है कि हाँ आपको इस वेट में करना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग जब हम लोग उसका प्रशिक्षण चल रहा है उसमें उसी समय हम उसके वेट के ऊपर बहुत नजर रखते हैं, डाइट प्रोग्राम क्या है
1: जी,
0: उसको किस वेट में लड़ना है, क्योंकि आज के समय में हमारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो सुबह शुरू होती हैं, ड्यूरिंग सेम डे वेट होता है और सेम डे ही पूरा टूर्नामेंट लगभग खत्म होता है। एक्सेप्शनल कुछ जो गेम्स हैं उसमें नेक्स्ट डे मेडल बाउट्स होती हैं, जैसा कि भी लास्ट ओलंपिक में हमारे साथ एक दुर्घटना हुई जिसमें हम लोगों ने अच्छा अपना मेडल खो दिया। तो उसके लिए हम बहुत प्रयास करते हैं और हमेशा वॉच रखते हैं बच्चों के ऊपर, और उनके साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं कि बच्चे की आखिर बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से वो किस वेट कैटेगरी के लिए फिट है। अब ऐसा नहीं कि बहुत बच्चा वेट जो है उसका स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो 60-70 किलो तक कर सकता है, अब उसको हम माइनस करके 55 में नहीं लाने की कोशिश करते। और ट्रेनिंग के दौरान हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वेट बढ़ तो नहीं रहा, घट रहा है, हमारे पास फिजियोथेरेपिस्ट की टीम होती है, न्यूट्रिशंस की टीम होती है, वो उसको एनालिसिस करती रहती है।
1: आजकल कुश्ती में वीडियो एनालिसिस और विरोधी खिलाड़ियों की कमजोरियों को समझने के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है, आप अपनी ट्रेनिंग में इन तकनीकों का उपयोग कैसे करते हैं?
0: आज अपनी गेम को सुधारने के लिए ये कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में है कि वीडियो एनालिसिस, कौन खिलाड़ी आया हुआ है प्रतियोगिता में, उसके पिछली बाउट्स परफॉर्मेंस क्या थी, उसकी वीकनेस कहाँ है, अपने खिलाड़ी की वीकनेस क्या है, अपना खिलाड़ी कहाँ पे स्ट्रांग है, इसको हम बहुत अच्छे से उसको यूज करते हैं। और टाइम टू टाइम हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अब वीडियो एनालिसिस का बकायदा एक सेशन रखते हैं कि हम अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में एक सेशन हमारा वीडियो एनालिसिस का है, जिसमें हम सेशन वाइज या वीकली वाइज बच्चे की पूरी ट्रेनिंग रूटीन और उसके ऊपर हम एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हैं और बच्चों को भी बैठाते हैं कि हाँ आपने यहाँ गलती की है, आपकी ये पॉइंट आपका स्ट्रांग है, अपोनेंट आपके कंपटीशन में ये आएगा तो इसका लड़ने का तरीका ये है, इन सब चीज़ों के ऊपर हम बारीकी से अध्ययन कर लेते हैं जो हम ड्यूरिंग ट्रेनिंग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग के लिए हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, 2 घंटे 2.5 घंटे का हमें सेशन करना है, तो हमें उसमें ट्रेनिंग करानी है, तो क्या गलतियां हो रही हैं, बार बार गलतियां हो रही हैं, तो उनको कैसे सुधारा जाए, तो ये चीज़ हम रिकॉर्ड करके लाते हैं, अदर टाइम में उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, फिर उस पे जाके हम नेक्स्ट सेशन में फिर काम करते हैं।
1: रेसलिंग में चोटों का जोखिम बहुत अधिक बना रहता है, खिलाड़ियों को इंजरी से बचाना पड़ता है, तो आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल में किस तरह के सुरक्षा उपाय और वार्म अप रूटीन शामिल किए जाते हैं?
0: प्रॉपर ये है कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि खिलाड़ी प्रॉपर वार्म अप हो, और उससे पहले उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन कि आज ट्रेनिंग के लिए वो कितना रेडी है,

0: हो सकता है कि लास्ट सेशन उसके ऊपर बहुत ओवरलोडिंग हो गई हो, या
1: जी
0: मेंटली कोई और भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वजह से वो ट्रेनिंग में ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो हमें सबसे पहले ट्रेनिंग सेशन शुरू करने से पहले उसकी मेंटल स्टेटस को देखना पड़ता है कि ये मेंटली वो कितना फिट है।
1: जी
0: उसके बाद अगर उसको कोई मेंटली दिक्कत है या कुछ है तो उसके हिसाब से हम ट्रेनिंग लोड कम कर सकते हैं या अवॉइड करते हैं।
1: जी
0: नेक्स्ट ये आता है कि ट्रेनिंग से बचाना है तो प्रॉपर वार्म अप किया, एरर्स कम करें उसके ऊपर ध्यान देते हैं।
1: जी
0: अगर स्किल प्रॉपर तरीके से कर रहा है, अगर एरर नहीं है उसमें, तो वो इंजरी कम से कम लगने के चांसेस हैं। जब गलतियां करेगा, और उसका
1: जी
0: सबसे बड़ा जो चीज होती है, मैंने जो बोला लोड,
1: जी
0: ट्रेनिंग लोड क्या है, मेन ये होता है। अगर ओवरलोड होके आया हुआ है प्लेयर, तो आप लोग भी जैसे काम करते हैं, अगर ओवरलोड है तो नहीं कर
1: बिल्कुल
0: पाएंगे उस चीज
1: बिल्कुल
0: को,
1: बिल्कुल
0: और गलतियां होती हैं। तो
1: जी।
0: हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में गलतियों का मतलब फिर चोट होता है।
1: अच्छा, अब जब कोई गेम चल रहा होता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि आखिरी मिनट बचे हुए हैं, आखिरी कुछ सेकंड्स बचे हुए हैं और सिर्फ 1-2 पॉइंट्स का ही अंतर है, तो ऐसे में आपने मेंटल स्ट्रेंथ की बात की, तो ऐसा अगर जब कोई मौका आता है तो चूंकि ये आम बात है खेल में आना, तो उसके लिए खिलाड़ियों को आप किस तरह से तैयार करते हैं?
0: देखिए, कंपटीशन में तो हम प्लेयर्स को बहुत मेंटली स्ट्रांग करके भेजते हैं।
1: जी
0: हम मैच चल रहा है, कभी हो सकता है कि आप 1-2 पॉइंट से आगे हैं, 1-2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं, लास्ट है। जैसा कि हमारे उस समय पे खिलाड़ी की मेंटल स्ट्रेंथ कितनी है,
1: जी
0: छोड़ना नहीं है। हमारे वर्ल्ड में 2 मेडल आए, एक ओलंपिक में और एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में,
1: जी
0: और जो कंडीशन आप बता रहे हैं मेन कंडीशन वही थी। हमारे रेसलर्स साक्षी मलिक 2016 लास्ट मिनट मेडल बाउट एकदम लूज कर रही, मेंटली स्ट्रांग थी,
1: जी
0: उसने अपना पूरा परफॉर्मेंस देने की कोशिश। तो एज ए कोच हम ये कहते हैं, बेटा आप अपना जो बेस्ट कर सकते हो, जितनी आपके पास, वो आप वहां पर लगाओ। साक्षी मलिक ने लगाया था, मेडल लाया। नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, 12-4 से हार रहे थे
1: जी
0: लास्ट में, बाई फॉल करके 30 सेकंड अंदर उन्होंने कुश्ती जीती। तो उस समय मेंटल हेल्थ और मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर प्लेयर डिपेंड करता है, और एज ए कोच जो भी साथ में होता है, हमें अदर कोच है, जो भी टीम कोच गया, वो फिर उस कंडीशन में ये कहता है, बेटा आप अपना ऑल आउट करो, जितना है आप अपना पोटेंशियल या जो भी आपने सीखा है आप वो लगा दो वहां पे।
1: ऋषि जी, अभी आपने साक्षी मलिक जैसे बड़े महिला रेसलर की बात की,
0: जी
1: तो भारत में महिला कुश्ती का ग्राफ पिछले कुछ सालों से बहुत तेजी से ऊपर आ रहा है। आपके अनुसार महिला पहलवानों को जमीनी स्तर पर आगे लाने में क्या मुख्य चुनौतियां हैं और उनका क्या समाधान है?
0: मुख्य चुनौतियां तो देखिए हमारे पास सबसे यही थी कि लोग महिलाओं को कुश्ती में भेजना नहीं चाहते थे,
1: जी
0: मगर आज के परिवेश में जो माहौल चल रहा है हमारे यहाँ, लोग डोमिनेट हैं कि हाँ हमारी बच्चियां जाएं,
1: जी
0: और जिसका परिणाम आप अगर हम राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की बात करें तो विगत वर्षों में हमने ये देखा है कि पहले था कि हरियाणा की गर्ल्स ज्यादा डोमिनेट कर रही थी, और जबकि हरियाणा एक ऐसा राज्य था जहां महिलाओं के लिए बहुत पाबंदी हुआ करती थी,
1: जी
0: मगर
1: जी
0: महिला, और उत्तर प्रदेश आज के डेट में, महाराष्ट्र भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है,
1: जी
0: बिहार है, झारखंड जैसे प्रदेशों से भी हमारे यहाँ महिला कुश्ती बहुत
1: जी
0: ज्यादा डोमिनेट कर रही है उसके ऊपर।
1: जी जी जी
0: और हम चाहेंगे कि ये गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि आप बच्चों को लाएं,
1: जी जी
0: कुश्ती बहुत अच्छा गेम है महिलाओं की, जहां तक लोग कहते हैं कि सेल्फ डिफेंस के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए भी बहुत अच्छा गेम है। आप ना लाइए मेडल के लिए, मगर आप बच्चे को अपने शारीरिक रूप से, मानसिक
1: जी
0: रूप से मजबूत करने के लिए लेकर
1: जी
0: आइए।
1: अच्छा है, अगर कोई माँ बाप अपने बच्चे को रेसलर बनाना चाहते हैं तो किस उम्र में बच्चों को इस खेल में डाल देना चाहिए, प्रवेश करा देना चाहिए?
0: देखिए, एक कुश्ती के विषय में कहा जाता है कि बहुत पावर गेम है,
1: जी
0: स्ट्रेंथ बहुत चाहिए होती है, मगर स्किल भी है। तो स्किल सीखने की एज हमारे यहाँ बच्चों की लगभग 10 साल से शुरू हो जाती है।
1: जी
0: 10 साल तक बच्चा हर चीज को समझने लगता है, उसको सोचने की क्षमता अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। तो हमारा कहना है कि 10-11 साल की उम्र से आप
1: जी
0: बच्चे को, बाकी बचपन से बच्चे अखाड़े आते हैं जाते हैं, तो
1: जी
0: वो है 10-11 साल की एज से प्रॉपर उसको, यहाँ अभी ये प्रोफेशनली इस तरफ जाना चाहता है
1: जी जी
0: तो उस तरफ आप उसको डाइवर्ट करें।
1: इस वर्ष आप एशियन गेम्स में भारतीय कुश्ती का भविष्य किस प्रकार देख रहे हैं?
0: एशियन स्तर पे देखिए हमारी कुश्ती बहुत अच्छी है,
1: जी
0: ओलंपिक में हमारे पास मेडल कम रहते हैं, मगर विगत कुछ वर्षों से हमारे पास एशियन गेम में काफी अच्छे मेडल्स आए हैं, गोल्ड मेडल्स लेके, और हम अच्छी कंपटीशन में रहे हैं।
1: जी
0: इस बार भी टीम का सिलेक्शन हो चुका है, और हमें लगता है कि इस बार भी हमारे 5 से 6 गोल्ड मेडल और बाकी और सिल्वर ब्रॉन्ज में हम रहेंगे।
1: जी ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी हैं प्रदेश के स्तर पर भी
0: जी
1: जिनके बारे में कहना चाहेंगे कि नहीं, वो कुछ बेहतर ही करेंगे इस एशियन गेम्स में?
0: एशियन गेम में से अभी तो जो सिलेक्शन हुआ, जो टीम हमारी बनी है, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा उम्मीद अपने अमन सहरावत, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं,
1: जी
0: उनसे उम्मीद है। अभी एक 65 kg में सुजीत कलकल,
1: जी
0: अभी एक इंटरनेशनल लेवल पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है, मुकुल दहिया है, दीपक पुनिया ओलंपियन है जो लास्ट ओलंपिक में
1: जी जी
0: एक
1: जी
0: दो अंकों के अंतर से
1: आ रहे रहे
0: मेडल से रह गए थे,
1: जी
0: उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है। और लड़कियों में बात करें तो निशा दहिया है,
1: जी
0: अंतिम पंगाल
1: जी
0: और मानसी, ये कुछ महिला पहलवान है हमारी, जो हमें पूरी उम्मीद है कि ये

0: मेडल और गोल्ड मेडल तक के लिए हमारी दावेदारी ये लोग करती हैं।
1: उत्तर प्रदेश में आप कुश्ती या रेसलिंग का भविष्य किस तरह से देख रहे हैं? कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो भविष्य में अपने आप को निखार सकते हैं, देश का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं?
0: हमारे उत्तर प्रदेश से अभी तो एक सीनियर वर्ग में जॉन्टी है, बहुत अच्छा सीनियर लेवल पे परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी एशियन गेम्स ट्रायल में वो दीपक पुनिया से ही हारा
1: जी।
0: और बाकी जूनियर स्तर पे भी हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी एक जयवीर लड़का है जिसने एशियन बहरीन में हुए थे उसमें गोल्ड जीता था देश के लिए, यूपी का है, सौरभ है, और कई बच्चे ऐसे हैं जो हमें लगता है कि आगे चल के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर
1: जी।
0: चंचल सिरोही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की है और यूपी की टीम से खेलती है, वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है और बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी टीमें हैं, हमारे पास बहुत से अच्छे खिलाड़ी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्म कर रहे हैं, इंटरनेशनल पुलिस टूर्नामेंट में जिन्होंने देश के लिए भी मेडल जीता था, और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भारतीय टीम में भी आएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: जी। ऋषि जी, कुश्ती विषय पर हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आपने सुना खेल दर्पण का आज का अंक। चलते चलते मैं आपसे बस यही कहूंगा कि खेल चाहे कोई भी हो, वह हमें जोड़ता है, दीवारें तोड़ता है और सिखाता है कि आखिरी सीटी बजने तक कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। उम्मीद है श्रोताओं को कार्यक्रम के दोनों ही भाग पसंद आए होंगे। आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जरूर दीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा कुछ और कड़क खबरों और खेल के रोमांच के साथ कार्यक्रम खेल जगत में। तब तक देखते रहिए फुटबॉल, सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ और मुस्कुराते रहिए और जोश से कहिए लेट्स फुटबॉल। शब्बा खैर, बाय बाय, नमस्कार।
3: खेल दर्पण, खेल दर्पण, खेल दर्पण।
4: अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र पर तैयार किया गया और प्रसारित किया गया। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। ये आकाशवाणी लखनऊ है। लीजिए प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान का पहले राग बिहाग में और उसके बाद राग रईसा कान्हड़ा में ख्याल गायन। तो आइए पहले सुनते हैं राग बिहाग में ख्याल गायन उस्ताद विलायत हुसैन खान का।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उस्ताद विलायत हुसैन खान का राग रईसा कान्हड़ा में ख्याल गायन।
1: ख्याल बनाकर पूरा किया, राग के चलन और विस्तार को आगे बढ़ाया जा सका। इससे शास्त्रीय संगीत की एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया। रईसा कान्हड़ा जैसा अक्षोभ यानी अपरिचित राग गिने चुने उस्तादों ने ही गाया। एक ही बिल्मपत रचना हमारे सामने थी। खान साहब ने रईसा कान्हड़ा में प्राण प्रिया के उपनाम से एक द्रुत ख्याल रचा।

0: शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आपने राग रईसा कान्हड़ा में उस्ताद विलायत हुसैन खान का ख्याल गायन सुना। अब आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्यसत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ

0: मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की पहली जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Maa Ke Naam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security,

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं अनुभा रोहतगी।
1: नमस्कार। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश के नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाली थी। तब से अब तक इन 12 सालों में भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं और हर क्षेत्र में अनगिनत उपलब्धियां हासिल की गई हैं। आकाशवाणी की इस विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के जन कल्याण के में आज हम पर्यावरण के क्षेत्र में हुई उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव। मंत्री जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: भूपेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हाल ही में 12 वर्ष पूरे किए हैं। इस पूरी यात्रा में, इन 12 सालों में आप किन बदलावों को सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मानते हैं जिन्होंने भारत में गुड गवर्नेंस की एक नई परिभाषा गढ़ी है?
2: आपने जो शुरुआत में दो शब्द कहे थे
1: जी,
2: विश्वास और जन कल्याण
1: जी,
2: मुझे लगता है 12 साल की कहानी विश्वास और जन कल्याण की है। विश्वास इस बात का कि सरकार ऊपर से जो 100 रुपए भेजेगी वो जन

0: खाते में पूरा 100 रुपया जाएगा। ये पहली बार हुआ है, वरना खुद देश के प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 100 रुपया भेजते हैं 85 रुपया गायब हो जाता है। विश्वास इस बात का कि सरकार जिस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेगी उसका उद्घाटन भी यही सरकार करेगी। 12 साल पहले जब प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक प्रगति नाम का कार्य शुरू किया तो कई सौ समय से पड़े हुए प्रोजेक्ट नहीं पूरे हुए
1: जी।
0: मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में केन बेतवा प्रधानमंत्री जी के समय में पूरा हुआ, राजस्थान में ERCP प्रधानमंत्री जी के समय में प्रारंभ हुआ, या आपके ऊपर पुल बनाने का विषय हो या गुवाहाटी के पुल बनाने का विषय हो। तो दूसरा विश्वास कि सरकार जिसका उद्घाटन करेगी उसको जनता को समर्पित भी करेगी। तीसरा जो लोगों का विश्वास है कि भारत का आत्मसम्मान और गौरव दुनिया में बड़ा है। फिर ऐसा जब अच्छा समय होता है तो आपकी परीक्षा भी ली जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो दुनिया में जब कोरोना की महामारी का संकट आया तो इस बात का विश्वास कि हम अपनी दवाई भी खुद ढूंढ सकते हैं और अपना रास्ता भी खुद तय कर सकते हैं। फिर भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनी तो इस बात का विश्वास कि हम जिस रास्ते पे चले हैं वह रास्ता विकसित भारत की ओर जा रहा है। और दूसरा जो शब्द आपने कल्याण कहा था, कल्याण
1: जी,
0: गरीब कल्याण, 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी के खाते से निकाला, 80 करोड़ लोगों को समय पर राशन पहुंचाने का काम किया, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया। और कल्याण के इस कार्य में जो कभी लोहिया जी 60 के दशक में कहा करते थे कि पानी और पखाना, ये भारत के महिलाओं की इतनी बड़ी त्रासदी रही है कि उनको मीलों दूर से पानी लाना पड़ता है और अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपने नेचुरल क्रिया को रोकना पड़ता है, घर घर शौचालय बनाने जैसा छोटा लेकिन एक लंबा कार्य, और जल जीवन मिशन को पहुंचाना। और इसलिए विश्वास और जन कल्याण ये 12 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और सफलता को बताता है।
1: भूपेंद्र जी, जलवायु संरक्षण के प्रयास के क्षेत्र में भारत एक बहुत बड़ी वैश्विक आवाज बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इसके बहुत बड़े पक्षधर हैं। तो आपके मुताबिक भारत ने विकास की अपनी जरूरतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया है?
0: विषय ये उठता है कि हम वैश्विक आवाज किसकी बने? हम वैश्विक आवाज ग्लोबल साउथ की बने
1: जी।
0: तो जलवायु परिवर्तन के संकट की असमानता और असंतुलन क्या है? जलवायु परिवर्तन संकट की असमानता ये है कि जो विकसित देश हैं उन्होंने अपने स्पेस से ज्यादा धरती का कार्बन स्पेस घेरा हुआ है, और आज अगर वो पर्यावरणीय विषयों में विकासशील देशों को कुछ निर्देशित करना चाहते हैं तो पहले उनको जो उनका हिस्टोरिकल रॉन्ग है वो देना पड़ेगा
1: जी।
0: और भारत ने इसलिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ग्लोबल साउथ की आवाज को प्रखरता के साथ उठाया है, लेकिन हमने ग्लोबल साउथ की आवाज को केवल लड़ने के लिए नहीं उठाया। प्रधानमंत्री जी हमेशा हमें निर्देशित करते हैं कि भारत दुनिया की जलवायु परिवर्तन वार्ताओं में समाधान का मार्ग प्रशस्त करे, समस्या ना बने
1: जी।
0: और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम, चाहे कोलेशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अकाल सूखे और बाढ़ के कारण होने वाले दुष्परिणामों के कारण दुनिया में कैपेसिटी बिल्डिंग और नॉलेज शेयरिंग का विषय हो, चाहे इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक वैकल्पिक ऊर्जा जिसको नवकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसका विषय हो, चाहे जो कार्बन एमिशन जिन इंडस्ट्रीज से निकलता है उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा विषय हो, और चाहे बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जैसा विषय हो। तो भारत ने दुनिया में ग्लोबल साउथ की आवाज बन करके उनके हकों की बात करी है, क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम का हिस्सा बनकर और उसका नेतृत्व करके समाधान, नॉलेज शेयरिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग का विषय अपनाया है, और मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियान चलाकर ये समस्या हम सबकी समस्या है और अपनी अंतरचेतना को जगाकर अपना व्यक्तिगत योगदान क्या दे सकते हैं उसमें एक बड़ी भूमिका प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निभाने का कार्य किया है।
1: आपने अभी जो कुछ पॉइंट्स कहे हैं, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की बात की, आपने नेट जीरो एमिशंस की बात की, इन पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे, पर उससे पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, खासकर कि दिल्ली जैसे महानगरों में, और ये जो है वो हमारे पर्यावरण पे बहुत इसका बुरा असर पड़ रहा है। सरकार अपनी तरफ से इसके लिए कई प्रयास कर रही है, जैसे भी हमने हाल ही में देखा कि यूनियन कैबिनेट ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रकों और बसों को फेज आउट करने के लिए एक स्कीम जो है

0: प्रूफ की है। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीज को बहुत बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है, आप खुद भी ईवी में ट्रैवल करते हैं, तो इन प्रयासों को आप कैसे देखते हैं?
1: नहीं, ये सकारात्मक प्रयास है, जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव, भौगोलिक परिस्थिति के कारण पर्टिकुलर समय में दिल्ली में वातावरण में प्रदूषण फैलता है जी। अभी तो आपको अच्छा लगा होगा कि मई तो हमारा क्लीनेस्ट डे रहा है, अखबारों में भी आया है जी। लेकिन जहां पर मनुष्य आधारित गतिविधियां होती हैं वहां पीएम 2.5 और पीएम 10 ये दो जो तत्व है, मतलब पीएम 2.5 में कार्बन, ओजोन, बाकी जो गैसेस निकलती हैं उद्योगों से, व्हीकल से, और पीएम 10 में जो डस्ट पार्टिकल होते हैं उसके कारण ये प्रदूषण फैलता है। और जब मौसम में ऐसी स्थिति आती है, विशेष रूप से दिल्ली में जब हवाएं चलनी बंद होती है और सर्दी होती है, और सर्दी भी हो हवा भी ना चले, तो वो जो वायु में जो तत्व है इसको एयर पार्टिकल कहते हैं, वो जम जाता है, और जमने के कारण वो एक वातावरण का जो AQI है उसको खराब करता है। तो इसका उपाय विभिन्न क्षेत्रों में है। व्हीकल पॉल्यूशन के स्तर पर क्लीन और फ्यूल की बात कही गई है, पुराने व्हीकल्स को समाप्त किया गया है, स्मार्ट ट्रैफिकिंग की ओर सरकार का ध्यान गया है, दिल्ली से कमर्शियल व्हीकल के लिए ईस्टर्न और वेस्टर्न पैरेलल एक हाईवे बना करके बड़ा ट्रैफिक वहां से निकालने की बात की गई है, मेट्रो का विस्तार करके सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने का काम किया गया है, इंडस्ट्री के मॉनिटरिंग के लिए हर इंडस्ट्री में OCM लगाने की बात की गई है, और उसके साथ ही साथ जो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो अनधिकृत क्षेत्र में हैं उनको सख्ती से बंद करने की बात की गई है। उसके साथ ही दिल्ली के ग्रीनिंग के अभियान को चलाया गया है, डस्ट के लिए जो मैकेनाइज मशीन की जो सफाई है उसके लिए लगभग 100 से ज़्यादा मशीनें मंगाई गई हैं, फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम किया है, फिर आर्टिकल जो P10 है इसका बड़ा कारण डस्ट है, तो कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन के लिए साइट्स को बनाने का काम किया गया है। इन सारे विषयों को करते हुए आज शाम को ही कृषि मंत्रालय में हमारी बैठक है कि पराली के बारे में अभी से प्रबंधन के विषयों के लिए बाकी राज्यों से बात करने की बात की गई है। दिल्ली के आसपास जो कॉरपोरेशंस हैं, चाहे गाजियाबाद हो, नोएडा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, मानेसर हो, गुड़गावा हो या फिर अलवर हो, वहाँ के जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उनको अपना एडवांस में प्लानिंग बनाने को कहा है। व्हीकल पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, डस्ट कंट्रोल, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इन सब विषयों में एक अच्छे तरीके की नीति बनाने की बात की गई है, और पब्लिक के सहयोग के लिए भी इस कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है
0: जी। प्रधानमंत्री का एक संकल्प है भारत को विकसित भारत बनाना 2047 तक। इस विजन में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पिलर है, तो भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में आपकी मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मिनिस्ट्री जो है, मैं कहूंगी कि सबसे अहम है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
1: सबसे पहले तो सतत विकास का अर्थ है कि विकास की धारा निरंतर चलती रहे, इसमें इम्बैलेंस ना है, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी रहे। लेकिन हम धरती से जो संसाधन निकालते हैं उन संसाधनों का हमें वापस से पुनः उपयोग करना चाहिए, इसलिए हमारा मंत्रालय जो है सर्कुलर इकोनॉमी पे बल देता है। सर्कुलर इकोनॉमी में चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे यूज्ड ऑयल से निकलने वाला पदार्थ हो, चाहे फ्लाई ऐश जो होती हैं उनके साथ बेकार फ्लाई ऐश का विषय हो, और ऐसे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जो कि हम पहले क्या करते थे, मेक टेक एंड वेस्ट, वो क्या करते थे, अब जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो एक नए कंसेप्ट को लेकर चलती है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो उसके लिए रेगुलेशन के लिए हमारे मंत्रालय ने रेगुलेटरी मिनिस्ट्री के नाते सारे रूल्स के फ्रेमिंग करने का काम किया। दूसरा, जो एक लंबे समय से इंडस्ट्री में बात की जा रही थी कि भाई आप इंडस्ट्री चला रहे हैं, आपकी मॉनिटरिंग कौन करेगा, तो जैसे आपको अपना अकाउंट्स का ऑडिट देना पड़ता है, अब एनवायरमेंट ऑडिट की भी बात करी है, और उनके ऑडिटर वो ऑडिट देंगे, ताकि हम जैसे आजकल रोज सुबह उठकर अपना इंसुलिन नाप लेते हैं ना, कि हमारा आज कितना इंसुलिन है, हमारा आज कितना BP है, तो ये जो पर्यावरण का प्रदूषण भी एक किस्म का डायबिटीज ही है, इसके लिए अपना आपको एनवायरमेंट ऑडिट कराना चाहिए। और हमारे मंत्रालय ने रिफॉर्म्स के मानकों को काफी सरल करने का काम किया है, ताकि लोग

0: नियम कठिन होने के कारण नियम को तोड़ते हैं। नियम जब सरल होते हैं और कॉन्शियसनेस होती है, उसके प्रति अवेयरनेस होती है, तो लोग उसको अपनाने का काम करते हैं। तो सर्कुलर इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी का उपयोग, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, देश के इको सेंसिटिव जोन का संवर्धन, देश में जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका प्रोटेक्शन, एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने का विषय, उसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन और कॉरपोरेट पार्टिसिपेशन को लेने के लिए ग्रीन क्रेडिट फंड जैसा प्रोग्राम, कैंपा के माध्यम से ग्रीन इंडिया मिशन पे कार्य, बायोडायवर्सिटी संरक्षण के लिए गांव गांव में बायोडायवर्सिटी रजिस्टर बनाने का कार्य, इन सब विषयों को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं।
1: शुरू में आपने बात की इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में फ्रांस के साथ मिलकर इसकी शुरुआत की थी और ये आज दुनिया की सबसे बड़ी क्लाइमेट इनिशिएटिव्स में से एक है। तो वैश्विक जलवायु संरक्षण के प्रयास और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत करने में इस तरह के पहल के बारे में आप क्या कहेंगे?
0: ऐसा है कि दुनिया भर में ये कहा जाता है कि भाई आप दुनिया में अगर आपको कार्बन एमिशन कम करना है तो आपको फॉसिल फ्यूल जो है वो कम उपयोग करना पड़ेगा। भारत ने जो अपने एनडीसी टारगेट दिए थे उसमें हमने कहा था कि हमारी जो ऊर्जा की कैपेसिटी है उसका 50% हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे, और रिन्यूएबल एनर्जी से हमने ये प्राप्त करने के लिए सोलर के क्षेत्र को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। भारत ने सोलर के क्षेत्र में अपने 53% जो है ग्रोथ किया है। मैं जब G20 में कैपटाउन में गया था तो UNFCCC के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल बाद दुनिया में कहाँ पर नया और अच्छा नवाचार हुआ, और उसमें भारत की इस बात की प्रशंसा की गई कि भारत ने दुनिया को सोलर क्षेत्र में अपनी उपलब्धि से बताया है कि जिसको रिन्यूएबल एनर्जी या नवीनकरणीय ऊर्जा कहते हैं उसमें भारत ने अच्छा कार्य किया है। और अभी तो जो इरना की जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी की, वो भी ये बताता है कि भारत दूसरे नंबर पे पहुंचा है। तो हम भी मानते हैं कि कार्बन एमिशन कम होना चाहिए, रिन्यूएबल के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया है इसका अब तो हेडक्वार्टर भी गुड़गांव है। एक समय होता था कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के हेडक्वार्टर हमें दुनिया के दूसरे देशों में दिखते थे। 12 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उपलब्धि हुई है तो इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर भी अब भारत में बनने लगे हैं। और रिन्यूएबल के क्षेत्र में भारत ने विशेष रूप से सोलर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 साल में एक अच्छे मुकाम को हासिल किया है।
1: अगले सवाल के लिए मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहूंगी कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक देश में फॉरेस्ट और ट्री कवर यानी कि वन क्षेत्र और वृक्षों का दायरा बढ़कर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% हो गया है और पिछली रिपोर्ट की तुलना में इसमें लगभग 1425 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, और साथ ही फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक जो है उसमें भी 8 करोड़ 10 लाख टन से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। बहुत बड़े बड़े आंकड़े हैं, लेकिन अगर हम इसको समग्र रूप में देखें और अगर हम पर्यावरण की सुरक्षा और के रूप में देखें तो इन उपलब्धियों के पीछे आप कौन सी प्रमुख नीतियों और पहल की बात मानते हैं कि कौन सी पहल और उपलब्धियां रही हैं?
0: ऐसा है कि सतत विकास के साथ समग्र विकास भी होना चाहिए
1: जी।
0: और नेचर का ये नियम होता है कि जहाँ प्योरेस्ट नेचर होती है वहां पर जो अपेक्स प्रेडेटर है वो सर्वाइव करते हैं
1: जी।
0: नेचर जो है उसमें जैसे एक छोटा माइक्रो जो स्पीशीज है उससे लेकर और जो अपेक्स प्रेडेटर है, तो इसमें 7 बिग कैट्स हैं। तो भारत ने पिछले 12 साल में दिखाया है कि हमारे टाइगर की संख्या में वृद्धि हुई है, लेपर्ड की संख्या में वृद्धि हुई है, स्नो लेपर्ड का एस्टिमेशन हम लोगों ने कराया है, लॉयन जो है पूरे अफ्रीका में कम हो रहे हैं, भारत में उसकी संख्या में वृद्धि हुई है, और एक स्पीशीज जो हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट हो गई थी चीता उसका भी हमने वापस से रीइंट्रोडक्शन किया है। तो हमने ये जो फॉरेस्ट कवर बढ़ा है ये इस बात को दर्शाता है कि हमने अपने यहाँ ये अभियान चला करके वो नेचर के बैलेंस को बनाने का काम किया है। यही कारण है कि आप ये देखोगे कि 2014 के पहले कांग्रेस के समय में ये इको सेंसिटिव जोन का नोटिफिकेशन ही नहीं करते थे, पड़ा रहता था मामला। अभी अगर 2014 से और 2026 12 साल में देखेंगे तो उनकी संख्या बढ़कर 391 हो गई है, प्रोटेक्शन एरियाज की संख्या बढ़कर 509 हो गई है, जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनकी संख्या 47 थी वो बढ़कर के 58 हो गई है, जो एलिफेंट रिजर्व हैं उनकी संख्या बढ़कर के 33 हो गई है, जो हमारी एंडेंजर्ड स्पीशीज हैं चाहे एलिफेंट हो, टाइगर हो, लॉयन हो, डॉल्फिन हो, पहली बार डॉल्फिन का एस्टिमेशन किया

0: गया मोर देन 6500 डॉल्फिन का हमने एस्टिमेशन किया है, उसके साथ ही साथ घड़ियाल हो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो, तो ये सारी एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने का, इनके प्रोटेक्शन का, प्रिजर्वेशन का काम हम लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ ही साथ जो हमारी लोकल ट्राइब्स हैं उनके जो राइट्स हैं उसके लिए भी हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टों के वितरण का कार्य किया गया है। ये इस बात को पूरी तरीके से दर्शाने का काम करते हैं कि हम अपने इकोलॉजी के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
1: आपने डॉल्फिन्स की बात की तो नमामि गंगे मिशन की बात करना जाहिर हो जाता है। तो जब नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी तो उसका मकसद था गंगा को स्वच्छ करना, लेकिन समय के साथ ये बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के एक बहुत बड़े और अहम मॉडल के रूप में उभरा है। हाल ही में अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इसका मेंशन किया था। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे मिशन के तहत देश की पहली डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस द्वारा एक गंगा डॉल्फिन के सफल बचाव किया गया, और उन्होंने इसे आशा की किरण बताया और कहा कि गंगा डॉल्फिन की रक्षा गंगा के पूरे इकोसिस्टम की रक्षा है। तो नदी की स्वच्छता से लेकर उसके बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम के संरक्षण तक की इस यात्रा के बारे में आप क्या कहेंगे, और नमामि गंगे मिशन की सफलता को आप किस तरह देखते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है ये?
0: देखिए, सरकार ने तो अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट भी फाइल किया है कि जो गंगा का जो अपर एरिया है जहाँ ओरिजिनल गंगा बनने की शुरुआत होती है उनकी ट्रिब्यूटरी पे अब कोई फर्दर और कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। हम ये मानते हैं कि गंगा की सेंटिटी, गंगा के जल की शुद्धता, ये तो हमारा लक्ष्य रहा ही है, और इसलिए नमामि गंगे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन को भी हम इसीलिए चला रहे हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि धरती पे भी अपेक्स प्रेडेटर तभी रहता है जब बाकी जो माइक्रो से लेकर के और मैक्रो सब सारा जो सिस्टम नेचर का सुरक्षित होता है, सेम डॉल्फिन के बारे में भी है। और इसलिए हमने डॉल्फिन मित्र बनाने का भी काम किया। सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो एक संस्थान है ICFR, उसने अभी एक पिछले तीन चार साल से एक रिपोर्ट पे हम काम कर रहे हैं कि हमारे नदियों के किनारे जो पेड़ लगाने के विषय हैं उस पर उन्होंने एक पूरी DPR तैयार करी है, और हम नदियों के किनारे भी वृक्षों के संरक्षण को लेकर के काम कर रहे हैं। मैं कुछ दिनों पहले जो पीलीभीत से ऊपर एक जगह है कतरनिया घाट, वहाँ पे सबसे अच्छी डॉल्फिन साइटिंग भी है, और हमारे घड़ियाल के लिए भी मैं गया था। तो ये वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और जो अमृत सरोवर तो प्रधानमंत्री जी के हृदय के बड़ा नज़दीक है, अगर आप एटलस भी देखेंगे तो जो छोटे सरोवर हैं उनकी संख्या में वृद्धि हुई है, लेकिन बड़े सरोवर भी, जो बड़ी झीलें भी हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए हमको रामसर साइट का दर्जा दिला रहे हैं। और 2014 में जहां देश में 24 रामसर साइट्स थी, अब उनकी संख्या बढ़कर 100 हो गई।
1: मंत्री जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया था एक पेड़ माँ के नाम अभियान, आपने भी बात की, और वो आज एक जन आंदोलन बन गया है, इसे भी हम सब जानते हैं। तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस अभियान के तहत 140 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। बेशक ये संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम इसे सिर्फ संख्या के नजरिए से ना देखें तो जन भागीदारी, एफॉरेस्टेशन और पर्यावरण जागरूकता के संदर्भ में इसके प्रभाव को आप कैसे देखते हैं?
0: मैं हमेशा अपने अधिकारियों को कहता हूँ कि देखिए, जो हरित क्षेत्र का विस्तार है ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये पैशन का विषय है
1: जी।
0: और ये नेचर के साथ आपके कंपैशन का विषय है। अगर आपके साथ नेचर के साथ अगर आपका भाव होगा तो आप लगाओगे। पेड़ लगाना ये फोटो खिंचाने के लिए नहीं होना चाहिए, पेड़ लगाना ये प्रकृति को बचाने के लिए होना चाहिए। और एक पेड़ माँ के नाम अभियान जब प्रधानमंत्री जी ने शुरू भी किया था तो प्रधानमंत्री जी का एक संदेश था और जिसको हम लोगों तक पहुंचाते हैं कि हमारे पे दो लोगों का बहुत एहसान है, एक हमारी माँ का जिसने हमें जन्म दिया, और दूसरा धरती माँ का जिसने हमारा भरण पोषण किया। और इसके प्रति कृतज्ञता अर्पित करने का यही तरीका है कि हम वहाँ पर एक पेड़ कम से कम माँ के नाम लगाएं। देखिए, आप बहुत बड़ी किसी भी बड़े ब्रांड की गाड़ी खरीद सकती हैं लेकिन वो गाड़ी ऑक्सीजन नहीं दे सकती। आप 10 मंजिल का मकान बना सकते हैं लेकिन वो चिड़िया के लिए एक दाना नहीं बना सकता, है ना, पक्षियों को छांव नहीं दे सकता। तो पेड़ तो नैसर्गिक रूप से प्रकृति का दिया हुआ उपहार होता है। और मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि केवल पेड़ लगाना मतलब हॉर्टिकल्चर का विषय हो जाता है
1: जी।

0: जब हम वन की बात करते हैं, हम इकोलॉजी की बात करते हैं, तो पेड़ लगाना मतलब वुडलैंड तैयार करना, लेकिन जितना वुडलैंड का महत्व होता है उतना ही वेटलैंड का महत्व होता है पक्षियों के लिए, और उतना ही ग्रासलैंड का महत्व होता है। और ग्रासलैंड का जो हमारा एक बड़ा स्पीशीज था चीता, वो तो भारत से एक्सटिंक्ट हो गया था, तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चीते के भी ट्रांसलोकेशन का कार्य किया है। तो एक पेड़ माँ का नाम अभियान प्रधानमंत्री जी का इस धरती की हरियाली से जुड़ने का अभियान है, और धरती की हरियाली वुडलैंड, ग्रासलैंड और वेटलैंड तीनों बायोडायवर्सिटी के समान रूप से संरक्षण में होगी, और हम तीनों के लिए कार्य कर रहे हैं।
1: भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?

0: अक्सर ऐसा माना जाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण एक दूसरे के विपरीत हैं, दोनों एक साथ नहीं चल सकते हैं। ऐसे में जब हरित विकास भारत की स्ट्रैटेजी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बन गया है, तब सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आर्थिक प्रगति, औद्योगिक विकास और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के बीच संतुलन कैसे सुनिश्चित कर रही है?
1: देखो, विकास तभी समृद्ध होता है जब नेचर समृद्ध होता है। मान लो आप पानी से बिजली बनाते हो
0: जी,
1: पानी नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे? आप कोयले से बिजली बनाते हो, कोयला ही नहीं होगा तो बिजली कहाँ से बनाओगे
0: जी?
1: दुनिया की कौन सी ऐसी दवाई है जिसका लास्ट सोर्स नेचर ना होता हो? आप फैक्ट्री में ब्रेड बना सकते हो लेकिन गेहूं तो पैदा नहीं कर सकते हो। कोई ऐसी फैक्ट्री थोड़ी होती है कि जिसमें गेहूं बनता है। गेहूं से आटा बनता है लेकिन वो तो नेचर से आता है। तो हमारा फूड, हमारा एनर्जी रिसोर्स, हमारी औषधि, ये तो नेचर से आती है। तो नेचर सुरक्षित और संरक्षित होगी तो विकास भी होगा
0: जी।
1: आप एक बात बताइए
0: जी,
1: कि जैसे आप सड़क बना रहे हैं या आप मकान बना रहे हैं, तो मकान में जो भी चीज लगा रहे हैं आप, दरवाजा है तो लकड़ी तो नेचर से आती है, ये कहाँ से आती है
0: जी।
1: तो विकास भी तभी होगा जब हम संसाधनों का बुद्धिमता तरीके से उपयोग करेंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है
0: जी?
1: कि कितना लंबे समय तक आप धरती को से खोद खोद कर केवल खनिज का उपयोग करोगे? कभी तो ऐसा समय आएगा कि इस खनिज का पुनर्उपयोग करने का काम आप करोगे। तो मेरा मानना है, जिसको आजकल कहते हैं नेचर बेस्ड सॉल्यूशन
0: जी,
1: नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, नेचर बेस्ड लाइफस्टाइल और नेचर के साथ विकास करने का काम हम लोग करेंगे। और इसलिए इकोलॉजी और इकोनॉमी ये एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है
0: जी। हम बात कर रहे थे शुरू में नेट जीरो एमिशंस की, तो जो भारत ने वर्ष 2070 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य तक लाने की, यानी कि नेट जीरो एमिशंस के लक्ष्य सहित कई महत्वाकांक्षी क्लाइमेट गोल्स को निर्धारित किया है खुद के लिए, सो इस दिशा में अब तक कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल हुई हैं और आगे के क्या हमारे लक्ष्य हैं?
1: देखो, जो रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी क्षमता है ये नेट जीरो की है
0: जी।
1: जो ग्रीन सिटीज की बात है ये नेट जीरो की है। जो मेट्रो का विस्तार है ये नेट जीरो के लिए है। जो ईवी का विस्तार है वो नेट जीरो के लिए है। जो ग्रीन हाइड्रोजन नए एनर्जी रिसोर्स को ढूंढ रहा है वो नेट जीरो के लिए है। जो बायोफ्यूल अलायंस कर रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। जो सोलार की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं वो नेट जीरो के लिए है। नेट जीरो का अर्थ है कि हम एक ऐसे अर्थव्यवस्था के मुकाम पे पहुंचे जो कार्बन एमिशन और कार्बन उत्सर्जन कम हो, हमारी जीवन शैली और हमारे विकास का आधार पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली हो। और इसलिए जैसा आपने बताया कि 1477 किलोमीटर वन क्षेत्र बढ़ा है तो वो नेट जीरो के लिए है।
0: पर्यावरण लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सरकार अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, लेकिन इसके साथ ही जो हम जब पर्यावरण की बात करते हैं, उसकी सुरक्षा की बात करते हैं, तो उसमें इंडस्ट्री का, कॉरपोरेट जगत का कितना इंपॉर्टेंट आप एक रोल देखते हैं?
1: अभी हमने ग्रीन क्रेडिट फंड में कॉरपोरेट को लगाया है, उनके जो ESG है वो भी है। कॉरपोरेट जगत में बात होती है, भारत में कॉरपोरेट जगत में एक उत्साह का भाव बना है कि वो ग्रीन ट्रांजिशन की ओर जाए, अपनी इंडस्ट्री को ज्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि विकास ऐसा होना चाहिए जो लंबे समय तक चले और धरती को बचाने के लिए हो। इसलिए कई बार ये कहते हैं ना कि ये ग्रह हमें अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में नहीं मिला है, अपने बच्चों से उधार में मिला है
0: जी।
1: तो ये हरा भरा ग्रह छोड़ के जाए
0: जी।
1: वरना एक दिन, जैसे आप ये कहते हैं ना कि मनुष्य ये सोचता है कि मंगल पे कभी जीवन था, तो ऐसा नहीं हो कि दूसरे ग्रह के लोग कहें कि पृथ्वी पे भी कभी जीवन था।
0: क्योंकि आपने बच्चों की बात की, तो आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि आम नागरिक और आज खासकर की जो देश के युवा हैं, जो देश का भविष्य है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस अभियान में क्या योगदान दे सकते हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है?
1: पहला तो एक पेड़ माँ के नाम अभियान से जुड़े, और दूसरा प्रधानमंत्री जी ने मिशन लाइफ में जो आयाम दिए हैं, सेव फूड, सेव वाटर, सेव एनर्जी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बैन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, हेल्दी लाइफ स्टाइल, ऐसे विषयों पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, इसको अपनी जीवन पद्धति पे अपनाएं। तो मिशन लाइफ को अपना जीवन का आधार बनाएं, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं और ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास में

0: अपना योगदान करें।
1: मंत्री जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए और पर्यावरण के क्षेत्र में पिछले 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुई उपलब्धियों के बारे में और लक्ष्यों के बारे में बातचीत की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आकाशवाणी में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ विशेष साक्षात्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।

ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। मीडियम वेव 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:38 और 45 सेकेंड हुए हैं। अब हमारी आज की दूसरी और अंतिम सभा संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपकी सेवा में भी उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।